नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 13 अक्टूबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही न्यूज ऑन EIR ऐप के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं, समाचार कुछ ही पलों में अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से

0: कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदनवार में सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि बुद्धिमान काम करने के पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

जीवन की लालसा, इच्छाएं और अतृप्ति का भाव मन को हर ओर से घेरे तो केवल प्रभु चरणों का दर्श ही मन को सही दिशा देता है।

प्रभु चरणों का प्रेम एक भंवरे सा मन को गुंजायमान रखता है, संसार का कोलाहल पार्श्व में खोता जाता है।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुनेगा आज सुनिए 340वां भाग। 6:45 से संगीत सरिता में श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं 13वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम का समय 7:30 और 8 से सुनिए समाचार प्रभात। त्रिवेणी 8:15 से सुन सकते हैं। सुबह 8:30 से चित्रलोक, 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार किशोर कुमार पर। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत सेहत नामा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिए। इस कार्यक्रम में सुनिए इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।

11 बजे से रंग तरंग हिंदी में समाचार, 12 बजे से और 12:05 से यादों की महफिल। सुरीला सफर कार्यक्रम का समय है 12:01 का। 12:02 से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण, 12:15 से 12:00 सदाबहार नकमे कार्यक्रम 12:30 से सुन सकते हैं और 3 बजे से सखी सहेली।

शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज सुनिए अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत की दूसरी कड़ी। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से सुनिए तराने नए पुराने। 6 बजे का समय है हिंदी में समाचार का और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन।

शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं 13वां भाग। आमंत्रित कलाकार हैं पद्मश्री, गायक एवं संगीतकार शेखर सेन। शाम 7 बजे फौजी साथियों की सेवा में कार्यक्रम जयमाला। इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस सुनिए शाम 7:45 से। रिश्ते प्यार के ये नाटिका सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन विष्णु भाटिया का, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या, आपके लिए ये कार्यक्रम 9 बजे से। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता अशोक कुमार पर। 10 बजे से छाया गीत, 10:30 से ढलती जाए रात। और 11 बजे से सुनिए रंग तरंग का पुनः प्रसारण। झरोखा के अंतर्गत आप सुन रहे थे आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस आज 340वां भाग।

श्री राम की सेना के चुने हुए योद्धा बारी बारी से रावण से युद्ध कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग में रावण के साथ विभीषण और हनुमान के युद्ध का वर्णन है। रावण को विभीषण पर शक्तिवान छोड़ते हुए देख श्री राम ने उन्हें पीछे हटाकर उसे अपनी छाती पर ले लिया। क्षण भर को उन्हें मूर्छित होता देख विभीषण ने दुगने क्रोध के साथ गदा प्रहार से रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके दसों मुखों से रक्त प्रवाहित होने लगा। दोनों भाई फिर मल्ल युद्ध में भिड़ गए। विभीषण को थकते देखकर हनुमान बीच में आ कूदे। उन्होंने रावण के रथ, घोड़ों तथा

सारथी सबका संहार कर दिया। लेकिन मायावी रावण ने तब अन्य युक्ति अपनाई। दोनों वीर पृथ्वी से आकाश तक एक दूसरे से गुंथ गए।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं शेखर दादा आप अपनी रचना संसार के कुछ मोती हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। अपनी कुछ रचना का जिक्र कीजिए और कोई रचना आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
2: मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे HMV ने साइन तो किया था।

0: गजल गाने के लिए, पर मेरी एक भी गजल रिकॉर्ड नहीं हुई, और मेरे करीब 280 एल्बम्स भजन और इस तरह के, रामायण और भगवत गीता इस तरह के 280 एल्बम्स हो चुके हैं, और अमूमन अधिकांश गायक गायिकाओं ने मेरे लिए भजन गाए हैं, पर सबसे अधिक जो काम हुआ है वो मेरा अनुराधा पौडवाल जी के साथ, 100 से भी अधिक सीडीज उनके साथ मैंने किए हैं, नितिन मुखी जी के साथ 5 सीडीज का काम किया,
1: जी
0: उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी, ऐसे बहुत सारे गायक गायिकाओं के साथ मैंने किया है, और मैं दरअसल ये चाहता था कि जो मेरे मन का हो और जो मैं अपनी मर्जी से कर सकूं वही काम मैं करूं,
1: जी
0: तो उसमें मुझे लगा कि अगर मैं प्राइवेट एल्बम करूंगा वहीं पर वो संभावना बन सकती है कि मैं अपने मन की रचनाएं रिकॉर्ड करूं, कंपोज करूं, क्योंकि जब आप फिल्मों के लिए काम करते हैं तो आपको दूसरे के ऑर्डर पे काम करना पड़ता है
1: जी
0: कि भाई
1: जी
0: कहानी ये है, डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया, ये सब। तो फिल्म का भूत तो मेरा पहले 1 साल में ही उतर गया,
1: जी
0: मैंने कहा ये मेरे मतलब की लाइन नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है, पर मुझे लगा कि मैं प्राइवेट एल्बम्स का काम करूं, तो वो मेरे जीवन का एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। और मैं आपको आज सुनाना चाह रहा हूं मीराबाई का एक भजन,
1: जी
0: जो मीरा नाम के एल्बम से हमने रिलीज भी किया था, और वो गाया था अनुराधा पौडवाल जी ने,
1: जी
0: और उसमें जो स्वर रचना थी वो कलावती और जनसनमोहिनी के आसपास मैंने रखी थी।
1: जी
0: दरअसल ये एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आप रचना बनाते हैं ना तब राग ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि राग जो होता है स्वर प्रधान होता है, भजन या गजल या गीत वो शब्द प्रधान होता है, तो जहां शब्द प्रधान होगा वहां पर स्वर थोड़े पीछे आ जाते हैं। ये अनुराधा जी की आवाज में भी आप सुनाइएगा, पर मैं पहले गाता हूँ क्योंकि
1: जी
0: मेरी बहुत प्रिय रचना है।
1: जी जी जरूर सुनाया।

0: इस रचना के बाद शेखर दादा बताइए हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या सुनवा रहे हैं।
1: हमारे यहाँ माँ के भजन जो है वो थोड़े जयकारा
0: कीर्तन के
1: शेरा वालीदा और
0: हैं।
1: उस तरह के कि माँ तू आजा तेरे लिए हलवा बनाया है या माँ ने टेलीफोन किया है, इस तरह के गाने होते हैं। पर इसके बिल्कुल विपरीत बंगाल में जो श्यामा संगीत की परंपरा है उसमें माँ के लिए आप वैसे ही गाने गाते हैं जैसे आप अपनी माँ को गाकर सुना रहे
0: क्या
1: हैं।
0: बात है।
1: और ये भी एक बड़ी विलक्षण बात है कि केवल केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही देवी का रूप पूजा जाता है और माना जाता है। इसके अलावा पूरे संसार की किसी भी संस्कृति या किसी भी धर्म या किसी भी सभ्यता में माँ को वो स्थान नहीं मिला है
0: जी
1: जो हमारे यहाँ है। तो एक बार मुझे कहा गया कि भाई आप बनाइए। मैंने कहा भाई देखिए आपके यहाँ जिस तरह के भजन बनते हैं इस समय उस तरह के भजन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर अगर आप कहें कि जैसे बंगला में बनते हैं उस ऐसा कुछ बनाइए तो मैंने कहा उसका मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो उस समय सारे जो भजन बने वो बहुत ही अद्भुत बने माँ के लिए।
0: जी
1: तो मैं आपको उसमें से एक सुनाता हूँ और
0: जी
1: ये मुझे केवल एक दिन में मैंने 10 भजन लिखे स्वरबद्ध किए और
0: ओ
1: अगले दिन उसको रिकॉर्ड कर दिया
0: क्या बात है।
1: और ये शक्ति नाम से या माँ काली के भजन के नाम से ये रिलीज हुआ। इसमें मेरा भाव था कि मैं माँ की अगर अर्चना करता हूँ मैं माँ के आंखों में कितना स्थान रखता हूँ, बहुत
0: जी
1: थोड़ी
0: जी
1: सी जगह मेरी होगी
0: जी बड़ी
1: कि
0: बारीक
1: सभी तो
0: बात।
1: माँ के भक्त हैं सभी माँ के संतानें हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि जैसे नैनों में ज्योति, आंखों में जो ज्योति होती बहुत छोटे से हिस्से में होती है,
0: जी,
1: सीप में मोती, बहुत बड़ा सीप होता है मोती छोटे से
0: छोटा
1: स्थान पे,
0: सा,
1: वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती
0: क्या
1: है। मुझे
0: बात है।
1: ज्यादा नहीं
0: वाह
1: चाहिए,
0: वाह बहुत
1: मुझे
0: बढ़िया।
1: मालूम है कि और भी संतानें हैं
0: हाँ
1: उनको भी आप स्थान दीजिए
0: जी
1: पर थोड़ी सी जगह मुझे दीजिए, ये
0: क्या
1: भाव
0: बात
1: है उसमें।
0: जी, सुनाएंगे।

0: वाह, बहुत अद्भुत। शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसके आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और आज की ये अंतिम कड़ी है। शेखर दादा, हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप वादा कीजिए कि अगली बार जब आएंगे विविध भारती के स्टूडियो में, तो अपनी रचनाओं के बारे में बातें करेंगे, अपने रचना संसार को आप यहाँ पर समाहित करेंगे।
1: सबसे पहले तो मेरा बहुत सौभाग्य

0: कि विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए जो मैं और मेरी पत्नी नित्य सुनते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ही हमारा प्रिय कार्यक्रम है। और सुबह उठ करके मेरी पत्नी विविध भारती हर दिन लगा देती हैं।
1: क्या बात है।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार कुछ न कुछ मिलता है
1: जी जी,
0: जो दूसरे किसी कार्यक्रम में नहीं हो पाता, वो संगीत सरिता में मुझे हमेशा लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो अपने श्रोताओं को भी मैं कहूंगा कि आप और अधिक गंभीरता से संगीत सरिता सुने, क्योंकि इतने सारे लोगों को लेकर विविध भारती आता है और ये बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने संस्कृति को जाने, अपनी सभ्यता को जाने, अपने महान कलाकारों को जाने, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। तो आप सभी श्रोताओं को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ और विविध भारती ने ये अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत आभार। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और तबले पर साथ दिया आशीष बिश्वास जी ने। आपने बहुत ही कुशलता से संगत की और हम सबको बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पर आए। और हारमोनियम पर संगत स्वयं शेखर सेन दादा ने किया। और अब हम सभी श्रोताओं से ले रहे हैं अनुमति। आप सभी को नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज हमने सुनी इस श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन, तबला संगत आशीष बिश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। संगीत सरिता की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर अपने कमेंट से हमें अपने विचार साझा कीजिएगा। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं आज है अभिनेता अशोक कुमार की जन्म जयंती और फिल्मकार गायक अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि। तो इन्हीं से संबंधित गीत आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। आओ चली, भागो चली, जागो चली, आओ आओ आओ आओ। ये कैसे चले, लाओ पैसे चले। आहा, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ।

0: जाओ सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
1: मेरे पास पैसा नहीं है।
0: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ। जा पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो।
2: नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
1: क्या डाले गए?
2: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक भीवर का जाल, एक लहसुन निकालू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
1: क्या हुआ?
2: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन कालू, एक भीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
1: मगर नानी क्या कर रही थी?
2: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
1: कितनी गहरी?
2: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15 दूना, 30, 45, 64, 75, 96, 90, 70, 75, 80, 20, नंबर 25, गले में रस्सा।
3: अशोक कुमार और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से ये गीत। गुलजार ने इसे लिखा, वसंत देसाई का संगीत।

0: झूला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अशोक कुमार, रहमत बानो और अरुण कुमार की आवाजों में। कवि प्रदीप ने इसे लिखा, सरस्वती देवी का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज इस कार्यक्रम में अभिनेता अशोक कुमार और फिल्मकार किशोर कुमार के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: टी कैट, कैट माने बिल्ली।
2: आर ए टी रैट, रैट माने चूहा।
1: सी ए टी कैट, कैट माने चूहा। अरे

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: M-A-D, mad. Mad माने पागल, B-O-Y, boy.

दिल्ली का ठग फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज फिल्मकार, गायक, अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उनकी आवाज और उनकी फिल्म से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: मेरे बाप का।
1: बहार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मुनीम जी फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता गायक फिल्मकार किशोर कुमार की आवाज से सजे गीत उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं उन्हें।

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में अपना पन फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और

0: रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजें खट्टा मीठा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
3: ना, बोलो, बोलो।
2: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और आज है गायक अभिनेता फिल्मकार किशोर कुमार की याद का दिन।

0: किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज जानी दुश्मन फिल्म के गीत में आपने सुनी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और इस कार्यक्रम में याद कर रहे हैं किशोर कुमार को।

जमीन आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जख्मी फिल्म से ये गीत। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, गौहर कानपुरी के बोल, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में जख्मी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। गौहर कानपुरी ने इसे लिखा, बप्पी लाहिरी ने संगीत से सजाया। और इसके साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी।

0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
2: तो शुरू करें।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित चार आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर ए शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत

0: सदैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
0: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहाँ अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश्री की रिपोर्ट।
2: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसी ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन।

0: गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका, 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग, नव भारत टाइम्स की खबर है। पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी लेकर हाजिर हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। मुस्कान चेहरे पर सजी वो खूबसूरती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान हमारा पूरा दिन बेहतर बना सकती है, खासकर जब ये मुस्कान किसी ऐसे शख्स की हो जो हमारे लिए बहुत खास हो। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। शायद इसीलिए किसी की मुस्कुराहट को देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं। रिश्तों में भी मुस्कान की अपनी एक खास जगह है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक सच्ची मुस्कान कर जाती है।

किसी खास इंसान की मुस्कान की बात ही कुछ और होती है। हम चाहें कितने भी परेशान क्यों ना हो, उसकी एक मुस्कान चेहरे पर खुशी ले आती है। कभी कभी तो उस मुस्कान में इतना अपनापन भरा होता है कि बिना कुछ कहे भी दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार में शायद इसी एहसास की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। सामने वाला हमारे साथ हो या दूर, उसकी मुस्कान की याद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और जब कोई पूछता है कि आखिर इतनी खुशी की क्या वजह है, तो दिल बस उसी शख्स का नाम लेता है।

मुस्कुराने की कोई एक वजह नहीं होती। जिंदगी में खुशियों के बड़े मौकों के साथ साथ छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जिन्हें महसूस करना जरूरी है। सुबह की पहली किरण, किसी अपने की आवाज, पसंदीदा गीत, दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बीच भी खुशियों के छोटे छोटे पल तलाशना हमारे हाथ में है। इसलिए जब भी मौका मिले, दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ये खुशियां बांटिए। आखिर जिंदगी है तो इसे गुनगुनाइए और मुस्कुराइए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

खेले हम जी जान से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सिने सिंगर्स एसोसिएशन कोरस ग्रुप की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, सोहेल सेन का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार, सुमित कुमार और विशाल ददलानी की आवाजों में बचना ए हसीनो फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसका मूल गीत लिखा और रैप वाला जो लिरिक्स है वो लिखा है विशाल ददलानी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

सोना मोहापात्रा की आवाज में आप सुन रहे थे फुकरे फिल्म से ये गीत, जो कि एक लोकगीत है जिसे अडेप्ट किया मुन्ना धीमन ने राम संपत का संगीत। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के ठीक बाद 9:30 बजे यानी 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार किशोर कुमार पर, और 10 बजे से आप सुन सकते हैं सेहतनामा का पुनः प्रसारण, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। और अभी वक्त है चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का।

विशाल दल्लाली, नक्स अजीज और प्रीतम की आवाजों में बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत आपने सुना। मयूर पुरी ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। और क्या आप भी सेल्फी लेते हैं? अगर हाँ तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि सेल्फी लेने के कारण आप खुद को ज्यादा देखते हैं और खुद को ज्यादा स्वीकार भी करने लगते हैं। लेकिन अगर सेल्फी लेने के बाद आप उस सेल्फी को देखकर खुद में मीन मेक निकालते हैं तो असली परेशानी यहां शुरू होती है। कैसी परेशानी भी बताएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है परेशानी जानने की। अभी तो आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाजों में कपूर एंड सन्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अभिरुचि चंद का लिखा ये गीत अमाल मलिक ने संगीत से सजाया।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हमने बात की थी एक परेशानी की। वो परेशानी ये नहीं थी कि सेल्फी ली जाती है बार बार, बल्कि वो परेशानी ये थी कि सेल्फी लेने के बाद खुद को देखकर हम इतना मीन मेक निकालते हैं खुद में। कई बार ऐसा कहा जाता है कि सेल्फी जो लेते हैं वो बड़े आत्ममुग्ध होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन ये उतनी बड़ी परेशानी नहीं है। क्योंकि परेशानी तो असली ये है कि हम अपनी हर बात में जब आलोचना करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमारे बारे में क्या कहता है इस पर हमारा दिमाग उतना ध्यान नहीं देता जितना कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं उसका असर हम पर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को देखकर ही खुद की कमियों को बार बार बार बार कहते रहते हैं। तो कहीं आपके अंदर भी तो ये आदत नहीं कि आप अपनी कमी लगातार निकालते रहते हैं, लगातार अपने बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं खुद की? अगर है तो कोई बात नहीं, ये आदत भी सुधारी जा सकती है।

ta, ta dum da dum da da dum ta.

0: तनिष्का सांघवी और साथियों की आवाज में हिंदी मीडियम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, कुमार के बोल, सचिन जिगर का संगीत।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बात कर रहे हैं खुद की कमी खामी और निकालने की जो बुरी आदत होती है, खुद की बुराई करने की आदत होती है, ये क्यों होती है एक इंसान में? उसे लगता है कि अपने अंदर हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन लगातार अगर हम अपने साथ ऐसा करते हैं, लगातार खुद की बुराई करते रहते हैं, खुद में मीन मेक निकालते रहते हैं, तो हम अपनी कोई मदद नहीं कर रहे होते, हम अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद को हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रहे होते हैं और खुद को हम दबा रहे होते हैं, तो इससे हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो अगर जब भी हमारे मन में, क्योंकि एक आदत है तो इतनी जल्दी तो ये आदत जा नहीं सकती, अगर हम कहें कि आज के बाद से हम अपनी बुराई नहीं करेंगे तो ये आदत भी जा नहीं सकती तुरंत। तो जब भी अपने मन में कोई ऐसी बात आए कि भाई देखो ये मैं तो अच्छे नहीं दिख रहा हूँ, या देखो मेरी तो यही आदत है, या तो मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, मैं हमेशा देर से आता हूँ, इस तरह की जो बुरी बातें हम अपने बारे में बोलते रहते हैं, कमी निकालते रहते हैं, तो ऐसा कोई भी विचार जब हमारे मन में आए तो उसे बस नहीं बोलेंगे, मत सोचिए, क्योंकि आपने सोच तो लिया है तो असर तो आप पर होने ही वाला है। तो उन कमियों को दूर करने का कोई तरीका तो होगा आपकी नजर में, कि अगर देर से जाता हूं तो आप सोचेंगे कि नहीं आज मुझे जल्दी जाना है, तो इस तरह का कोई जो एक तरीका हो, कोई जिससे उन कमियों को दूर कर सकते हैं, वो आप खुद को बताएं। तो अगर आप ये खुद के बारे में बोलने लगेंगे तो इससे आप खुद को नेगेटिविटी नहीं देंगे बल्कि सकारात्मक विचार देंगे और बदलाव भी इसी तरह से सकारात्मक होगा। और एक काम आप कर सकते हैं कि रोजाना आईने के सामने खड़े होकर के कम से कम अपने बारे में 3 अच्छी बातें तो बोलिए ही, यानी कि अपनी तारीफ कीजिए। भाई अपनी तारीफ में कैसी शर्म।

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत के साथ रफ्तार और साथियों की आवाजें दंगल फिल्म के इस गीत में। और अगर आपके मन में भी दंगल मचा हुआ है कि आप अपनी क्या तारीफ करेंगे और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी तारीफ में आप क्या कहेंगे, तो कोई बात नहीं, ये गाना आपके लिए।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आप अपनी तारीफ कीजिए, तब तक हम आते हैं एक अंतराल लेकर।

0: विशाल ददलानी की आवाज में शेफ फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। अंकुर तिवारी ने इसे लिखा, रघु दीक्षित का संगीत।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

हृदय गट्टानी और की आवाज में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत बैंजो फिल्म के इस गीत में। और जैसे कि हमने बात की कि हम अपनी खुद की बुराइयां ना करें, अपनी तारीफ करें और जो कमियां हमें खुद में दिखती हैं उन्हें स्वीकार कीजिए, देखिए, लेकिन जहां वाकई कमी हो उसे ही मानिए और स्वीकार कीजिए। और सिर्फ मानने और स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खुद को अगर हम बदल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। तो रोज खुद को एक एक कदम आगे बढ़ाइए, सकारात्मकता की सीढ़ी पर चढ़ाइए और खुद को प्रेरित कीजिए आगे बढ़ने के लिए, और ये करते हुए आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

नमस्कार श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो यह है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, नौ दो ग्यारह और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: बात आज एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत।

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।
3: जिंदगी का सफर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस रहता है ना तो।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं संदीप जी?
2: मैं रहने वाला प्रयागराज इलाहाबाद, और पढ़ाई मैंने की है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
2: और उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया था, वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख किया।
1: जी जी,
2: यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छा काम होता है इंटेंसिव केयर का। तो वो फिर मैंने वहाँ इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग की।
1: आपने इंटेंसिव केयर को क्यों चुना अपने स्पेशलाइजेशन के लिए?
2: हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ सेवर हो जो।
1: हाँ,
2: और वो केसेस जितने भी हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट है उनका सब एक टीम वर्क होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब इंटेंसिव केयर का डॉक्टर जो रहता है, वो जब यंग होते हैं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो लगता है नहीं यार जान बचानी है कम से। तो वो एक था इंटरेस्टिंग मेरी तरफ से, ऐसा कि भाई चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन आप एक नया चैलेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी भी।
1: बिल्कुल।
2: तो वो है
1: एक चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई मरीज आईसीयू में जाता है तो परिवार में एक तरह से पैनिक हो जाता है कि आईसीयू में जाने का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जान बचने वाली नहीं है। एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इन बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि आईसीयू में जाने का मतलब बहुत पैनिक नहीं है, वहां से लोग लौट कर भी आते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं सर, अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं
1: जी,
2: और जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है। 100 में से 99 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ 90 से ऊपर लोग वापस आते हैं। ये ऑब्वियसली कि आप किसी भी पेशेंट को, उसके सगे संबंधी को बोलेंगे कि भाई इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत है, तो थोड़ा तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है। और इस भ्रम की वजह से भी कि इंटेंसिव केयर यूनिट पर नहीं जाना चाहिए, हमको घर पे ही रख दो या हम वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, ये कभी कभी समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हैं, ये हर फील्ड में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सही समय पे सही जगह पहुंच गए तो आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अब वो भी नहीं है कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लास्ट स्टेज में आईसीयू, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग की, भाई इनके वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो सिर्फ एक क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भी शिफ्ट करते हैं।
1: एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति में, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति ना हो, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए भी किया।
2: आप उस तरफ ना जा पाए, नॉर्मल सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से एक बीच का एक रास्ता बना भी है कि ब्रेक कर दिया हमने।
1: हाँ,
2: एक पेशेंट थोड़ा सा बैड हुआ, उसको हमने इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया और उसको स्टेबलाइज कर दिया, और 80-90% केसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं सर।
1: आपसे बात करते हुए जाने क्यों मुझे कोरोना का समय याद आ गया, क्योंकि आईसीयू की इतनी बातें हुई उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उन्हें तो याद करते हुए भी जरा डर लगता
2: बहुत,
1: है
2: बहुत, बहुत, बहुत
1: वो कितना चैलेंजिंग वक्त था आप लोगों के लिए, जो खासतौर पर आईसीयू स्पेशलिस्ट
2: मेरे ख्याल से जो

0: भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है ना सर, उसके लिए तो मतलब शुरुआत के दौर में था कि कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में। ये था कि भाई कोरोना हुआ और वो नहीं बचेगा, और शुरू में मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, ट्रायल एरर हिट एंड ट्रायल चल रहा था, भाई ये दे दो ये दे दो। तो हमें याद है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जब हमने एक अलग से इसको बनाया, भाई कोरोना केयर यूनिट रहेगा, यहाँ पे अलग से पेशेंट रहेंगे, तो वो बहुत स्केरी था, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था कि हमारा क्या होगा, हमारा मरीज है, बट दुनिया को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ हम जा रहे हैं।
1: हम एक अननोन राक्षस से लड़ रहे हैं।
0: हाँ, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको किया, ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत जान बचाई, बहुत सी नहीं बचे, वो तो उस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से किया उसको, हम लोग उस समय को निकाल पाए।
1: आपके लिए इमोशनली ये कितना मुश्किल होता है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मेडिकल के, जहां जाने बच भी जाती हैं और चली भी जाती हैं,
0: हाँ,
1: तो किसी पेशेंट को खो देना इमोशनली कितना बड़ा झटका होता है आपके लिए, और
0: ये
1: रोजमर्रा की जिंदगी में कितना भारी पड़ता है।
0: हम लोग है तो इंसान ही ना,
1: जी
0: वो पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी। और उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, किसी को सगा संबंधी आप स्थिति में आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत 1-2 साल हमको वही लग जाता है सीखने में कि बात कैसे करनी है, बैड न्यूज कैसे आपको सामने वाले को बताना है, वो टच बनाए रखे हुए, मतलब आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया, अब नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर से, वो आपको कभी रूड नहीं होना है, भाई आप सामान नहीं बेच रहे ना यार, इंसान की जिंदगी का सवाल है, तो बात भी हमारी हो जाए, उनको हम अंधेरे में भी नहीं रखे, वो भी बताना एक जरूरी होता है कि भाई कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनका कुछ इलाज नहीं है, वो न्यूज़ देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोज का चैलेंज है सर वो,
1: जी
0: कि कैसे आप उस चीज को रखें कि अभी है तो है, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते, वो
1: जी
0: बताना तो होता ही है।
1: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। अब बदलते वक्त के साथ भारत में जो आईसीयू फैसिलिटीज हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया है? जब आप पढ़कर निकले थे तब से अब तक भी बहुत
0: बहुत
1: वक्त बीत
0: बहुत
1: गया, तो
0: आसमान जमीन का फर्क हो गया सर, और इसलिए मैं डॉक्टर में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी इग्नोर ना करें, सही बीमारी सही समय पे पकड़ आ गई तो मेडिकल साइंस हमारा इतना तरक्की कर गया है कि आप हर बीमारी में कम से कम एक लाइफ स्टाइल तो आपको अच्छी हम दे ही सकते हैं, भले वो कैंसर का ही मरीज क्यों ना हो, जो जानलेवा बीमारियां हैं, और आजकल खासकर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक अचानक डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी ये रहता है कि भाई जांच क्यों कर रहे हैं आप, दोनों चीजें हैं, मैं मानता हूं कि भाई ओवर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, बट आप अगर हमारी तरफ बैठ के देखेंगे ना, तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये मेरे पास होके जा रहा है, कुछ बच ना जाए यार, यंग है फिट है, एज अ डॉक्टर कुछ,
1: कोई कमी ना रह जाए।
0: हाँ कल को बाद में आप सोचते हैं यार इसका ईसीजी कर लेते भाई, छोटी सी जांच, अक्सर आप देखते होंगे चेस्ट पेन 90% एसिडिटी है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज एसिडिटी रहती है,
1: जी
0: हाँ वो सर वड़ा पाव खा लिया था,
1: जी
0: मैं भी मानता हूं, लेकिन यार वो थोड़ा बेसिक तो चाहिए हमको कि ये चेस्ट पेन है वो एसिडिटी का है या कार्डियक है, ये जो हाथ पांव में कमजोरी है ये स्ट्रोक है या आपके नहीं सोने की वजह से है या ना खाने की वजह से, ये पहचानने के लिए जांच तो जरूरी है, बेसिक ये अवेयरनेस थोड़ा हमको आम पब्लिक तक भी फैलानी है, मतलब तो आपकी पहुंच गांव गांव कोने कोने में है,
1: बिल्कुल,
0: तो ये
1: पूरी
0: बहुत
1: दुनिया में।
0: हाँ, तो बहुत अच्छा माध्यम है ये कि बेसिक करवा लो यार, एक बेसिक जांच, और आजकल तो स्वास्थ्य केंद्र में भी हमारे भारत सरकार की तरफ से तो हर चीजें हैं कि आप बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है, कभी भी कमजोरी लग रही है 4-5 दिन ठीक है, उसके बाद लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी जांच कर लीजिए, हम भी यही चाहते हैं कि वो जांच नॉर्मल हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बिना उसके, ये थोड़ा है अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस आ रही है बट अभी भी बहुत जरूरत है इसमें, खासकर जो इस तरह की जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गया तो हम लगभग लगभग पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आपने एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा उठाया कि हमको शरीर के संकेतों को पहचानना
0: हाँ बिल्कुल
1: और पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर बीमारियों में वो कौन से संकेत हैं जो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ के इग्नोर करते हैं, इस बारे में थोड़ा तफसील से
0: बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए

0: नेचर ना आपको साइन सिम्टम सब देता है, नेचर किसी के साथ ऐसा बेईमानी नहीं करता है। हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो अलग बात है। कोई भी अगर 6-7 दिन, मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो। तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शहर में तो ठीक है, दिल्ली मुंबई में है तो आप हॉस्पिटल्स में आप तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाके डॉक्टर को बताइए जरूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है, भाई नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीजें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है, वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है, और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है, और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो, और विटामिन की कमी है सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है।
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना
0: हाँ
1: सिर्फ।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं, बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के सहारे हम सारी जिंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है वो आंखों में लगता है चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम,
1: जो जरूरी बातें
0: हाँ
1: उनको
0: वो
1: इग्नोर
0: इग्नोर
1: करते हैं
0: करते हैं।
1: जी।
0: दांत में दर्द ठीक है यार, अरे कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना, वो खाने पे डाल देते हैं, ये गलत नहीं है, होता है ऐसा नहीं, 60-70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है, आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे, है ना।
1: डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहां एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये जरूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी जरूरी है और मरीजों के लिए भी जरूरी है।
1: जी
0: तो किशोर दा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये
1: जी
0: जीवन है इस जीवन का, बहुत बेहतरीन।
1: देखिए, मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं।
1: जी।

0: डॉक्टर संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद जरूरी है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं
0: तो किसी भी वक्त
1: किसी भी वक्त।
0: मुस्तैदी से जाना पड़ सकता
1: हाँ,
0: है।
1: कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर,
0: जी जी बिल्कुल
1: बाकी लोग चैन से सोएं तो कोई तो जगेगा।
0: बिल्कुल
1: बट हाँ, फिर भी हम डॉक्टर हैं हम लोग, तो हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आजकल सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर।
0: जी,
1: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना, तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है। दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
0: थायराइड हो,
1: थायराइड हो, इवन कैंसर, कोई भी स्ट्रेस में है उसको कोई भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15 मिनट 20 मिनट निकालिए उस चीज के लिए, कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से,
0: जी
1: वो बहुत जरूरी है सर। मेरे ख्याल से इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार, बाहरी केयर कर लेते हैं।
0: जी, मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी है कि
1: बहुत
0: हम
1: बहुत
0: टेंशन से दूर रहें,
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल।
0: दबावों से दूर रहें।
1: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की,
0: जी
1: उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
0: जी जी
1: आप स्ट्रेस में हैं तो आप कुछ भी एंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा।
0: बिल्कुल
1: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज को एंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का, जो आप हमको ही देने के लिए रखे हैं, मतलब नहीं है ना। आप अपना
0: बिल्कुल
1: एज अ डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें। और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर,
0: जी,
1: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना, दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है सबके लिए, बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं, और डॉक्टर संदीप, मैं ये चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम के ये दिन, जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए
1: बिल्कुल
0: हैं जो
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले
1: हाँ
0: लेते हैं और
1: बिल्कुल
0: आईसीयू तक मामला चला जाता
1: बराबर
0: है,
1: बराबर
0: इस मामले को जरा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियां बताएं।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा, इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ, तो बारिश का तो मौसम का एक अलग मजा है, लेकिन मजा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल
1: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना।

0: और खासकर इसमें बुखार, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीजन में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर। बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें।
1: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता, क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते
0: नहीं नहीं
1: हैं,
0: सर,
1: एसी में होते हैं, पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
0: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और सिम्टम जो है उसकी वो बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
1: जी,
0: आप देखिए ज्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है
1: जी
0: जब हम।
1: एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है
0: हाँ
1: तो
0: हाँ बराबर है।
1: पैरासीटामोल उठा के ले लिया,
0: सही बात
1: है
0: है।
1: ना। तो ये जो चीजें हैं इनसे सावधान कैसे करें लोगों को? इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
0: ये बहुत बड़ी समस्या है सर, खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के लिया है। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है, सुदूरवर्ती वर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए आज के सिनेरियो में। कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा भी है तो आपको एक सही दिशा तो मिल ही जाती है। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, उसका बहुत नुकसान होता है और उसके ही परिणाम है कि आजकल आप देख रहे हैं किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, लीवर की बीमारियां, ये सब ये जो दुरुपयोग है ना किसी भी चीज का आप मिसयूज करेंगे तो ये उसका ही परिणाम है कि आजकल बहुत इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं।
1: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बीते दिनों एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता है तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जो व्यक्ति को आगे के लिए दिक्कत दे सकता
0: मैं
1: है।
0: आपको बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं तो उस वक्त था कि 10 20 25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हैं हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने क्योंकि ये वही है, अब हमने यूज कर करके मिस यूज करके, यूज नहीं करके, हमने मिस यूज करके उसका इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है,
1: कि दवाएं असर ही नहीं
0: असर
1: करती।
0: ही नहीं कर रही है, आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक। हमको भी लिखने से पहले दो बार सोचना पड़ता है हम, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे। ये अभी भी वक्त है सुधर जाए, नहीं तो सिर्फ 1929 में पेनिसिलिन, उसी वक्त पेनिसिलिन आई थी जिसने सारी सृष्टि को बचा लिया था, वो स्थिति फिर आने वाली है ऐसा लगता है। जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो ही स्थिति, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होते तो अभी तक सृष्टि खत्म हो चुकी होती, तो वो स्थिति हम फिर इंसान लोग पैदा ना करें।
1: ये रेजिस्टेंस क्यों होता है? एक आम आदमी को एक आम भाषा में जरा समझाइए।
0: देखिए रेजिस्टेंस का आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वही एंटीबायोटिक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन नहीं है, किसी और का इन्फेक्शन है, दवा कुछ और ले रहे हैं, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेता है कि सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक फिर उस पर काम ही नहीं करती है, उसको आप वक्त दे देते हैं। ये नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए कि आपने जैसे अधमरा सांप ना छोड़ते नहीं है, बाद में आपको वो डसने वाला है, वो बैक्टीरिया का वही हाल है, आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना, तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए, आप किसी
1: जी,
0: स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण में ही कीजिए उसको।
1: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर, केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज ना करें
0: ना करें ना
1: और
0: करें,
1: दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक
0: नहीं
1: आधी अधूरे कोर्स कर
0: बिल्कुल
1: लेने
0: नहीं,
1: से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक
0: बहुत
1: बनता चला
0: बहुत
1: जा रहा
0: बड़ा
1: है।
0: इंसानियत के लिए वॉर से ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया होने वाले हैं जिस तरह से ये हमारे सामने आ रहे हैं चीजें,
1: जी
0: इंटेंसिव केयर यूनिट पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो सब पैन रेजिस्टेंस कि कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, एक काम कर रही है सिर्फ। सपोज आने वाले समय वो भी नहीं काम किया
1: तो कुछ भी काम नहीं
0: तो क्या करेंगे हम?
1: ये
0: एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो।
1: जी डॉक्टर साहब, अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बहुत।
1: तो बाप की पसंद का अगला गाना कौन सा होगा?
0: एक कर्ज फिल्म का ओम शांति ओम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है। ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो जगह आईसीयू, उसकी तरफ चलते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज आता है, मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, अटैक है या कोई और बीमारी है, तो एक आईसीयू में तैनात डॉक्टर क्या प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है उसका?
1: सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होता है कि उसको स्टेबलाइज करना।
0: जी,
1: एक नॉर्मल कि भाई पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, पेशाब ठीक से बन रहा है, इतनी चीजें बेसिक हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहता है कि इसको स्टेबलाइज करें। इसको
0: आप लोग बहुत टेंशन के दौरान काम करते हैं, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि बहुत पैनिक में।
1: वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि पैनिक नहीं होना है,
0: मरीज और उसके साथी भले पैनिक हो,
1: क्योंकि उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है।
0: जी,
1: स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है। जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहां से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहां से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीजें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना, सर आपने बचा लिया
0: जी,
1: तो उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है।
0: और
1: बहुत अच्छा लगता है ऐसा, हमेशा स्ट्रेसफुल नहीं, जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
1: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था और हम लोग उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
0: ओहो, बिल्कुल आप उसी इलाके में थे।
1: उसी में थे, तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा, सर कैसा रहा? कहा, सर उतना दर्द तो गोली से नहीं हो रहा जितना दर्द आप जब गोली निकाल रहे थे तब हो रहा था। हमने कहा, सर आप गोली से नहीं निकाले, सर उसके लिए हम यूज टू हैं। जैसा आपने पूछा पैनिक का, वो जब सामने से तब हमारा डर खत्म हो जाता है। वो लगता है इसको टारगेट है, ये हमारे देश का दुश्मन है, इसको खत्म करना है, तो उस वक्त हमको दर्द नहीं महसूस होता। यहाँ पे फिर हम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी। वो मुझे लगा कि यार, हमने पूछा कि सर आप गोलियों से नहीं डरे, आप ये जरा से टांकों से डर रहे हैं? क्या डर नहीं रहे, लेकिन आपको बड़ा मजेदार एक वाक्या सुनाता हूँ।
0: जी,
1: मैं इंटेंसिव केयर में नाइट ड्यूटी में था और रवि साहब एडमिट थे,
0: संगीतकार रवि की।
1: हाँ हाँ, जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर।
0: जी जी,
1: तो रात का वक्त था और मैं उस वक्त अपने ट्रेनिंग में था, तो 1-2 बजे का वक्त था, तो मैं नोट्स डाल रहा था और जैसे इंडियन लोग थोड़ा हमिंग करते हैं ना, ला ला ला ला ला ला ऐसा करके मैं डाला, तो रवि साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये गाना आपको बहुत पसंद है। कहा, हाँ बहुत अच्छा, क्या कंपोजिशन सर, पहले के कंपोजर क्या कंपोज करते थे, आपको पता है किसने कंपोज किया है? हमने कहा हाँ, एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे रवि साहब, हैं मतलब रवि साहब। आपने मेरा नाम पढ़ा क्या, बोर्ड पे नाम लिखा होता? हमने देखा, देखा हाँ आपका भी सेम नाम है। मैं सेम नहीं, मैं ही रवि साहब हूँ।
0: अरे क्या बात
1: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे, जब रफी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा जब ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके।

0: बड़े जिंदा दिल इंसान थे।
1: कमाल के इंसान, मेरा भी उनसे एक नाता रहा है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुनाया
0: हाँ
1: करते थे।
0: हाँ
1: उनके पास एक से बढ़ के एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते
0: अरे अरे
1: थे।
0: बहुत कमाल के
1: अभी
0: कलाकार थे।
1: जब गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। आपने बताया कि एक कमांडो आए थे, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हो या बर्न विक्टिम्स हो, इस तरह के लोग आते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी
0: अरे
1: होते हैं,
0: अपने
1: उनको
0: एक
1: कैसे संभालते हैं?
0: मैं सफदरजंग के बंस यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
1: ओ
0: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो।
1: जी
0: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे। एक दिल्ली में हम ड्यूटी खत्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे। फिर अचानक फोन बजने लगा, हमारे सर का फोन, तुम लोग कहाँ हो? तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी सर कॉल कर रहे हैं। मैं, क्या हो गया सर? बोले जहां भी हो, जितने भी दोस्त हो, सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहां भी है जो सबको फोन करो कि बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है। मेरे ख्याल से मुझे भी याद नहीं है, बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था वो देख नहीं पाया, डॉक्टर होके वो वहां पे फेंट कर गया।
1: ओहो
0: और किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना विभत्स, वो मेरे मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूं तो मेरे से रोंगटे खड़े जाती है। वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके। और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज है हिंदुस्तान में कि सब लोग, आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना, जिधर से आया वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन हम अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था, वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतरता है।
1: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं।
0: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ अच्छा लगता, मैंने बोलता है जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है, तो बहुत रिवार्डिंग है सर। उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा एक डॉक्टर
1: बिल्कुल,
0: को।
1: आपने ये वादा किया था कि रवि जी से जुड़ी घटना सुनाने के बाद कि अब उनका कोई गाना सुना जाएगा, तो कौन सा गाना सुना जाए?
0: ऐ मेरे जोहरा जो भी सुनते हैं सर।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा, अब मुंबई में आप अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं और आईसीयू यूनिट में लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नया दौर है, इसने आईसीयू यूनिट को किस तरह से बदला है और आपके काम करने की प्रणाली को किस तरह से बदला है?
1: टेक्नोलॉजी का तो सर बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है, बहुत बहुत फायदा हुआ है। अब काफी एडवांस हो गए हैं हम लोग, मतलब हर फील्ड में, रेडियोलॉजी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, वेंटिलेटर्स की क्वालिटी हो, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। इवन हम स्ट्रोक का हम वाकया आपको बताएं कि एक हम जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, एक बैंक के कर्मचारी थे और वो कुछ साइन कर रहे थे और अचानक वो हाथ से पेन गिर गया उनके, तो उनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा। हर आदमी एक पहली बार में कैसे सोच लेगा कि वो स्ट्रोक है, लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ही था वो कार्यालय उनका, तुरंत वो लेके आया और उनका वो पूरा राइट साइड पूरा काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि जो वक्त की कीमत,
0: बिल्कुल,
1: तो सही समय पे वो आ गए सर और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। अगर वो सही समय पे नहीं आते सर तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता
0: जी।
1: तो ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
0: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम सुन रही है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
1: देखिए आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का दो चीज में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खड़ा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
0: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ में
1: साथ वाले वो उनको
0: पास पड़ोस के लोग हैं,
1: हाँ हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जब हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर।
0: तुरंत
1: वो
0: पहले मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ें,
1: जिस चीज के एक्सपर्ट के पास जाएं, इसके लिए बनाया गया। और अब मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी कर दी है, आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें
0: बजाय इसके कि नुस्खे अपनाने,
1: हाँ,
0: की
1: नुस्खे वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
0: झाग वाग निकल रहा है,
1: हाँ, वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये मोटा मोटा समझाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि भाई
0: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता है ना कि ये हार्ट अटैक है, तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाए?
1: देखिए जो सबको पता है चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है। जो भी डायबिटीज से सफर कर रहा है ना, तो वो बीच बीच में अपनी जांच करते रहे, अगर उसको पसीना आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लेकिन उसको टिपिकल हो सकता है डायबिटीज पेशेंट को वो टिपिकल चेस्ट पेन ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है जो भी डायबिटीज सफर कर रहे हैं लोग उनके लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीजों को कभी टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड

0: राइट पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है। और यूजली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं रह गया अभी। अभी बीमारियां काफी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये अलार्मिंग साइन है। हार्ट से जुड़ी ये अलार्मिंग साइन, उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं,
1: जी
0: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज अलार्मिंग है। आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक, जो भी डॉक्टर रहे जो इससे जुड़ा हुआ है, उसे संपर्क करना चाहिए।
1: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
0: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंग्यू माउथ
1: टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है,
0: टेढ़ा, और आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो
1: विरूपता आ
0: मतलब
1: रही है,
0: विरूपता आ रही है, सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
1: तुरंत समझ जाना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: कहीं भी सिमेट्री जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आंखों दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है
1: इन
0: डॉक्टर के
1: दोनों
0: पास।
1: परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
0: देखिए जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम खराब करते हैं, फिर फोन किया, उससे बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था, तो ऐसे नहीं, नहीं बाबा, आसपास पहले वहां पहुंच जाए आप एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना, वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल पर, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको, आप अनजान शहर में हैं और एक पुलिस वाला जो आप रास्ता भटक गए उससे पूछे, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है, आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई, उस पर मत, ठीक है भगवान करे वही हो, मैं भी चाहता हूँ, डॉक्टर भी चाहते, भगवान ही नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी एबनॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, और यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो कौन सा गाना होगा?
0: यहाँ पे हम रफी साहब का एक गाना सुनेंगे,
1: ठीक है,
0: आज मौसम बड़ा बेईमान,
1: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ, डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है, और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता सफलता उसने जो, आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं, उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है, बट आपके माध्यम से भी हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा,
1: मैं दिल्ली में था और मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बस मुंबई चलते हैं, मैं भी गा फिर लेता हूँ। वो मजाक मिला, चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूँ ही
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ
0: जी जी
1: हाँ
0: जी
1: और वो गाने लिखता भी था, कॉलेज में भी बहुत अच्छा, हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा,
1: तो पहले वो हर जैसे यंग बच्चे के होते ना, रॉक स्टार बनना है, बस
0: हाँ।
1: गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना। और वहाँ से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था। और हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
0: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया
1: क्या
0: क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है, बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहां का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना है कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं। अक्सर मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया, बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइम बिंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है।

0: है कि हर आदमी देखना चाहता है कि भाई किस अवस्था में मेरा मरीज है, वो उसके भले के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे को आग नहीं छूने देती है ना।
1: लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि
0: हाँ हाँ
1: डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे
0: निभा
1: हैं
0: रहे हैं, और उसके
1: और
0: भलाई
1: आईसीयू
0: के
1: में
0: लिए
1: खास तरह का बर्ताव किया
0: बताओ
1: जाए
0: किया जाए।
1: और जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए,
0: हाँ, और ये
1: इंतजार किया जाए।
0: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूंगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट, कभी कभी ये देखिए हम इंसान ही हैं,
1: जी,
0: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बोलेंगे शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें हुई और आपने कुछ बहुत जरूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
1: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
5: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
4: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
5: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
4: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
6: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
7: रंग तरंग
6: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग और आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूँ नेहा

आगरकर देसाई स्वीकार कीजिए नमस्कार। श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं। किशोर कुमार की आवाज भी ऐसी ही थी, जिसमें शरारत थी, शोक ही थी, रोमांस था और जुदाई का दर्द भी। वे गाते थे तो लगता था जैसे हर इंसान की अपनी कहानी को सुर मिल गए हो, है ना? आज उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं उस बेमिसाल फनकार को, जिसने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा के संगीत को एक अलग पहचान दी। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

हो झुम झुम झुम झुम झुम रो पकड़ घूमो बन के घूम रो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल

झुमरू फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, बोल और संगीत किशोर कुमार का। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गरबा गीत।

शिवांग माथुर और श्रद्धा श्री की आवाजों में अभी आपने सुना ये गरबा गीत। इसे लिखा ऋतिका ब्रह्म भट्ट ने और संगीत था शिवांग माथुर का।

ये गजल अभी आपने सुनी उर्दू मॉडर्न इस एल्बम से। अशोक खोसला की आवाज थी और इसे लिखा डॉक्टर राही मासूम रजा ने। जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: कभी तो नजर मिलाओ इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में। रियाज उर रहमान सागर ने इसे लिखा, अदनान सामी का संगीत।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद

0: अगले ही दिन कॉल आ गया TVF से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में पंडित भरत व्यास का लिखा ये भजन, जिसे संगीतबद्ध किया है बाबू सिंह ने।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना चांद का टुकड़ा, इस फिल्म का ये गीत। इसे संगीतबद्ध किया महेश किशोर ने। साथियों, आपको बता दें कि आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे किशोर कुमार की अलग अलग अदाओं में गायकी के कुछ गीत। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे यानी कि विविध भारती के साथ।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम का गीत सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाजों में। आवाज में गीत और संगीत ललित सेन का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं जय बजरंगबली इस एल्बम का ये भजन, शबाब सबरी की आवाज। मनीष व्यास ने इसे लिखा है, अभिजीत गढ़वे का संगीत।

इस भजन के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है ललित का और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है

आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेरर, पूनाराम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदू ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियां। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। या जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओं, 19वीं

शताब्दी में फास्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी, और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया, और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओ अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा

0: बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
1: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
0: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको,
4: फेंको जनाब।
1: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
6: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
7: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
7: बहादुर सैनिक हो तुम।
1: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: मे आई कम इन सर?
6: यस, कम इन।
9: सर,
6: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर,
6: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
9: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
6: हाँ हाँ, कहो।
9: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
6: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
9: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
6: गो अहेड यंग मैन।
9: सर।
1: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965

0: तट को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
4: जी जनाब।
5: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
6: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को कवर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
6: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गए हैं सर।
2: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
0: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
0: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र

साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन किशोर दा ने अपनी आवाज से इसे बेहद खूबसूरत बना दिया। कभी पहली मोहब्बत की झिझक, कभी किसी का इंतजार, तो कभी दिल की अनकही बातें, उनके रोमांटिक गीत हर एहसास को अपना सा बना देते हैं।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर कहानी का अंत खुशियों से हो ये जरूरी नहीं। किशोरदा ने अपनी आवाज में बिछड़ने की कसक, अधूरी मोहब्बत और तन्हाई के दर्द को कुछ इस तरह पिरोया कि हर गीत दिल की कहानी लगने लगता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ नगमे जो अनगहे जज्बातों को आवाज देते हैं।

अमर प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। इंदिवर की रचना है ये और श्यामल मित्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: बर्बादी की तरफ है समोड़ा।
1: आंधी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार ने इसे शब्दबद्ध किया है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर बस आंखें बंद करने और उनमें खो जाने का मन करता है। किशोरदा की आवाज में एक ऐसा अपनापन और ठहराव था जो मन की हलचल को धीमा कर देता है। तो आइए अब सुनते हैं ये ऐसा ही एक गीत जो दिल को सुकून और मन को राहत देता है। घर फिल्म का ये गीत है, आवाज किशोर कुमार की, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो साथियों, आज के इस संगीतमय सफर में हमने किशोर कुमार की आवाज के कई रंग महसूस किए। कहीं मस्ती थी, कहीं मोहब्बत, कहीं दर्द और कहीं दिल को छू लेने वाला सुकून। यही तो खासियत थी किशोरदा की। वे हर एहसास को अपना बना लेते थे और फिर उसे हमारे दिलों तक पहुंचा देते थे। उनकी आवाज आज हमारे बीच भले ही पहले की तरह मौजूद ना हो, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किशोरदा को सुरों भरा नमन। और आज के इस कार्यक्रम से अब नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार करें नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज का दिन हिंदी सिनेमा की दो अनमोल शख्सियतों की याद दिलाता है। आज अशोक कुमार जी की जयंती है, जिन्होंने अपने सहज अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। वहीं किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि हमें उनकी आवाज के उस जादू की याद दिलाती है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इन्हीं यादों के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो कभी पटरियों पर दौड़ता है तो कभी जिंदगी के रास्तों पर चलता है। साथियों, इबारत आपने फेसबुक पर पढ़ ही ली होगी और हमारे सभी श्रोता साथी फेसबुक पर हमसे कमेंट

0: द्वारा जुड़ भी गए होंगे। यदि कोई छूट गया है तो आइए उनके लिए एक बार इबारत फिर पढ़ देते हैं। कहते हैं जिंदगी भी एक रेलगाड़ी के सफर जैसी है, जहां कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में मिलते हैं और कुछ किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। कभी सफर सुहाना होता है तो कभी मुश्किलों की सुरंगें सामने आती हैं, लेकिन जैसे हर सुरंग के बाद रोशनी आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर आती है। हम अक्सर मंजिल की चिंता में सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। याद रखिए, हर मुसाफिर की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन सफर में मिली यादें हमेशा साथ रहती हैं। इसलिए जिंदगी की इस रेलगाड़ी में मंजिल तक पहुंचने की जल्दी मत कीजिए। सफर को भी मुस्कुराकर जीना सीखिए, क्योंकि खूबसूरत यादें अक्सर रास्तों में ही बनती हैं। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये इस कार्यक्रम का आज का पहला गीत, अशोक कुमार की आवाज में। आशीर्वाद फिल्म से ये गीत है, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

भप भप। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

छुड़ाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुढ़ा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बारी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गाँव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुप्पल डिंडीगल डिंडीगल कुप्पल मतलब पटम दिल्ली पटम दिल्ली पटम मतलब पटम उंगोल नदी गोल नदी गोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक

तो आप सभी ने इस गीत में आया हुआ वो शब्द तो पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, वो शब्द है रेलगाड़ी। अशोक कुमार का गाया ये गीत था। एक साथी ने लिखा है, आज ट्रेन के सफर की बात है तो जिंदगी हमेशा सफर पर ही रहती है। कभी सुरीला सफर बन जाती है, कभी खट्टा तो कभी मीठा। आज मैं ट्रेन से नहीं गाड़ी से सफर कर रही हूँ, इसलिए आज प्रोग्राम नहीं सुन पाऊंगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जिस सफर पर हैं वहां पर हमारा जो विविध भारतीय

है न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप दिन रात लगातार कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, तो आप वहां पर सुन सकती हैं। तो कार्यक्रम को मिस मत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। शब्द पहचानिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इस गीत का वो शब्द कौन सा है। कालिया फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, आज अभी ये जो गीत बजा इसका शब्द था साथ। एक साथी ने लिखा है, फिल्म आशीर्वाद का प्रसिद्ध गाना रेलगाड़ी भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक और अनोखा गीत है, जिसे दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि ने गाया था। इसे भारतीय सिनेमा का पहला रैप गाना माना जाता है, जिसमें बिना किसी भारी संगीत के रेलवे स्टेशनों के नामों और ग्रामीण भारत की छटा को बेहद लयबद्ध अंदाज में पिरोया गया है। इस मासूम और ऊर्जावान गीत को हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी ने लिखा है, किशोरदा आप भी तो जिंदगी के इस सफर के ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी देह से भले ही दूर चले गए मगर अपनी आवाज के रूप में हर दिल में ठहर गए। वक्त की रेलगाड़ी आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदलती रही, कितने ही स्टेशन पीछे छूट गए, लेकिन आपके गीतों का कारवा आज भी उसी शिद्दत से हमारे साथ चल रहा है। आपकी आवाज सुनकर लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना फिर लौट आया हो, जैसे यादों की किसी पुराने स्टेशन पर जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत और पहचानिएगा इस गीत का वो कौन सा शब्द है जो हमारी आज की इबारत में शामिल है। फिल्म का नाम है राम बलराम। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। बोल है आनंद बख्शी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, इससे पहले जो गीत बजा उसमें शब्द था रास्ता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक साथ ही लिखते हैं, सफर बैलगाड़ी का हो या हवाई जहाज का या जिंदगी का, हिचकोले तो लगते ही हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं। इसलिए सुहाने सफर का आनंद भी ले तो जीवन के झटके भी हंसते हंसते ले। एक साथ ही लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी खूबसूरत सफर पर होते हैं तो ऐसी ऐसी मीठी मधुर और मधुर अनुभूति होती है जिन्हें हम कभी भी भूलना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि सफर कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सफर पर हमें बहुत अच्छे बातूनी लोग मिल जाते हैं या फिर हम जैसी सोच रखते हैं उस तरह की सोच रखने वाले लोग मिल जाते हैं तो बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर सफर कहां गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लगता है ये सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आपको बताना है इस शब्द में छुपा, क्षमा कीजिए, इस गीत में छुपा वो शब्द।

बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, शब्द था स्टेशन, जो इस गीत में शामिल था और हमारी इबारत में भी। एक साथी ने लिखा है, यादगार सफर का आनंद लिया जब ट्रेन गुजर रही थी सुरंग से, वो भी सबसे लंबी, करीब 14 किलोमीटर लंबाई से गुजरना हुआ। अगस्त 2026 में जब वंदे भारत ट्रेन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन की ओर वापसी में मेरी धर्मपत्नी और मैंने सफर किया था। बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन लिए, रास्ते में चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज से भी ट्रेन गुजर रही थी। कई सुरंगों और ब्रिजेस से ट्रेन गुजर रही थी जिनको देखकर हम भी आनंदित हो रहे थे। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं श्रोताओं, जो हमारी जहन में बस जाती हैं, हमें याद हो जाता है पल पल की कैसे गुजरा था और कितना खूबसूरत था। चलिए इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

अंदाज फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। साथियों, एक साथी लिख रहे हैं कि रेलगाड़ी का सफर बेहद रोमांचक, आरामदायक और यादगार अनुभव माना जाता है। खिड़की के पास बैठकर बाहर बदलते नजारे, खेत खलिहान, पहाड़, नदियां और छोटे छोटे स्टेशंस को देखना मन को सुकून देता है। जी हां, ये तो एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास है जिसे जब तक खुद अनुभव ना किया जाए तब तक उसमें कुछ आनंद ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने। एक साथ ही लिखते हैं, जीवन को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक रेलगाड़ी के सफर से बखूबी समझा जा सकता है। हम सभी इस संसार रूपी स्टेशन पर आते हैं, जीवन की गाड़ी में सवार होते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। ये यात्रा केवल एक दूरी तय करना नहीं बल्कि अनुभवों का एक विशाल संग्रह है। और आप सभी ने यह भी बिल्कुल सही पहचाना है, इस गीत में शब्द था सुहाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। शब्द रचना शैलेंद्र की, शंकर जयकिशन की धुन।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक?
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।

0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: तो इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें शब्द था रोशनी। साथियों, एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली नेहा जी और सभी गुणी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। किशोर दा हमारे ही शहर खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुंबई में उनके निधन के बाद उनकी इच्छानुसार उन्हें खंडवा लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। अब ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा अवसर था जो आप उस शहर के थे और इसलिए इसका आप इसमें शामिल हो सकें, और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम किसी ऐसी महान हस्ती की यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और किशोर कुमार जी के भी कुछ जो उनके साक्षात्कार हुए, उनकी बातों में हमें कई जगह पता चलता है कि उन्हें अपने शहर खंडवा से बेहद प्रेम था और उनकी हर बात में ये बात झलकती थी कि वे वापस खंडवा आना चाहते थे। आइए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें किया है एक साथी ने, लिखा है, मेरा सबसे लंबा सफर था जब बेटे की बारात लेकर कटक से अल्मोड़ा जाना था। राजधानी एक्सप्रेस से कटक से दिल्ली करीब 24 घंटा, फिर 12 घंटे बस द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा। हम 35 बाराती खूब मौज मस्ती करते गए और वापस उसी रास्ते आए। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी, जिंदगी के इस सफर में मेरे बचपन से आज तक जो विश्वसनीय साथी रहा है वो है विविध भारती मुंबई, जिसके प्रोग्राम्स जो मैं रेडियो पर सुनते हुए अपने जीवन के सफर को सुरीला बनाता रहा हूं और आगे भी जितनी सांसें मिली हैं तब तक बनाता रहूंगा। जी हां बिल्कुल, तो आप सुनते रहिए विविध भारती। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत तलाक फिल्म से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें। प्रदीप ने इसे लिखा है, सी चंद्र का संगीत। शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।

आप सभी ने शब्द बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था किरण। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर एक खूबसूरत नदी की तरह है जो कई मोड़ों और उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है। इस रास्ते में कई लोग लहरों की तरह मिलते हैं और कुछ यादें बनकर पीछे छूट जाते हैं। कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं, तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है, लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।

0: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा एज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए। पर आज भी याद है, आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं। तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत जरूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूँ। तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झांक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

याद शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। एक साथ ही लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत है, इसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारा हौसला परखती हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को जीने का सही मतलब सिखाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का ये सफर वाकई बहुत ही अजीब है, बंद मुट्ठी आए थे, खुले हाथ जाना है, जो धन मान सम्मान कमाया वो छोड़कर एक दिन चले जाना है, न साथ लाए थे न साथ आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफी है, यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है।

लिख रहे हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है। कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी लेकर हाजिर हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। मुस्कान चेहरे पर सजी वो खूबसूरती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान हमारा पूरा दिन बेहतर बना सकती है, खासकर जब ये मुस्कान किसी ऐसे शख्स की हो जो हमारे लिए बहुत खास हो। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। शायद इसीलिए किसी की मुस्कुराहट को देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं। रिश्तों में भी मुस्कान की अपनी एक खास जगह है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक सच्ची मुस्कान कर जाती है।

किसी खास इंसान की मुस्कान की बात ही कुछ और होती है। हम चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, उसकी एक मुस्कान चेहरे पर खुशी ले आती है। कभी कभी तो उस मुस्कान में इतना अपनापन भरा होता है कि बिना कुछ कहे भी दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार में शायद इसी एहसास की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। सामने वाला हमारे साथ हो या दूर, उसकी मुस्कान की याद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और जब कोई पूछता है कि आखिर इतनी खुशी की क्या वजह है, तो दिल बस उसी शख्स का नाम लेता है।

0: जाना।
1: मुस्कुराने की कोई एक वजह नहीं होती, जिंदगी में खुशियों के बड़े मौकों के साथ साथ छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जिन्हें महसूस करना जरूरी है। सुबह की पहली किरण, किसी अपने की आवाज, पसंदीदा गीत, दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बीच भी खुशियों के छोटे छोटे पल तलाशना हमारे हाथ में है। इसलिए जब भी मौका मिले, दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ये खुशियां बांटिए। आखिर जिंदगी है तो इसे गुनगुनाइए और मुस्कुराइए।

0: जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना गागा गागा ए जा।
1: आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

आपने ट्यून किया है विविध भारती, देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों

0: में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन लें, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्व

0: पूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई
2: है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज सोडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है अपना सबसे पसंदीदा चैनल, मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत।
2: बंसिया बजाई श्यामा सुध बिस राई
3: ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा।

होती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। हाँ।

0: दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म उड़न खटोला से, आवाज लता मंगेशकर की थी। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में नई दिल्ली फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र की रचना है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: पर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदा बहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री 420। इस फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारो।
1: सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं एक झलक। मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत, गीता दत्त और साथियों की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है मंजरी जी? खूब गरबा दांडिया खेल करा रही हैं ऐसा लग रहा है, मतलब रात को।
2: जी बिल्कुल, जश्न ही ऐसा है कि त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में तो शुरू हो गई है सब जगह पे डांडिया खेलना, गरबा खेलना।
1: और जुनून सा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, अरे हमें तो नहीं आता है और हमें तो पैरों में दिक्कत है, तकलीफ है, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो
2: 9 दिन आते हैं
1: सखियों और सखाओं के साथ वो मैदान में उतरती हैं तो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, फिर जुनून छा जाता है, फिर तो समय का भी ख्याल नहीं रहता है। इसका स्वरूप थोड़ा बदल रहा है ना, बल्कि जो पहले था गरबा दांडिया का जो स्वरूप डांस का तरीका था, अब उसमें बहुत सारी मिलावट भी हो गई है। तो हमारे श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो बताएं अपनी बातें।
2: बिल्कुल, और मुहावरों की दुनिया में अपना उल्लू सीधा करना, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने संदेश भेजे हैं और भी बातें करेंगे वो।
1: और मंजरी जी, माँ की अलमारी में बहुत कुछ छिपा होता है ना। हम याद होगा बचपन में कि जब माँ बड़ा सा बक्सा खोलकर बैठती थी तो हम सब घेर के बैठ जाते थे, भाई बहन पूरे परिवार के सदस्य, और देखते थे कि इसमें क्या है, उनके पुराने पुराने कुछ गहने जेवर और कुछ

0: सारी चीजें, कुछ छोटा सा पाउच, कुछ पर्स, और उसमें न जाने क्या क्या रहता था, और पुराने कपड़े निकाल के देखना, फिर धूप दिखाना रख के बड़े से चारपाई पर,
1: चारपाई पे
0: तो ये सब बड़ी अजीब सी बातें थी और अब जैसे खत्म हो रही है, लेकिन माँ की अलमारी में एक कुछ और भी छुपा होता था।
1: बिल्कुल, उनकी यादें, बहुत सारे एल्बम होते थे, और जो आपने बोला ना पोटली होती थी, दुर्जनिया होती थी, और एक काजल लगाने वाली चांदी की होती थी, लंबी सी डंडी होती
0: चांदी
1: थी,
0: की सुपारी भी
1: हाँ,
0: होती थी,
1: चांदी की सुपारी,
0: पायल, अंगूठी,
1: बिछिया तो कितनी सारी निकलती थी उसमें, मतलब वो
0: लेकिन
1: टूटी फूटी भी, साबुत भी
0: उन्हीं सबके बीच जो छूटा रहता था उनका सपना,
1: बिल्कुल
0: उनका अधूरा सपना, क्योंकि एक जमाना था जब माँ के हिस्से में सिर्फ त्याग और बलिदान आता था, कि वो त्याग की मूर्ति जो होती थी वो माँ सबसे अच्छी माँ कहलाती थी।
1: सही बात
0: है ना,
1: जी।
0: कि कितना कुछ सब पूरे परिवार के लिए करना, लेकिन खुद के लिए
1: आपने
0: कुछ नहीं
1: बिल्कुल
0: करना।
1: यादों को एकदम ताजा कर दिया है कि हम उस दौर में चले गए, उनके अलमारी तक पहुंच गए
0: तो आपके साथ साथ, मतलब हम सब के
1: हमारे
0: साथ
1: साथ
0: साथ, हमारे
1: साथ
0: श्रोता भी यादों की अलमारी खोले और माँ के जो अधूरे सपने, माँ की अलमारी में छिपे उनके अधूरे सपने, इस बारे में हमारे श्रोता टिप्पणी करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और सखी विशेष में हम बात करने वाले हैं महिला उद्यमी अंकिता गावा के बारे में, जो सोशल समोसा और फीबी की संस्थापक भी हैं। और आज क्योंकि शरदीय नवरात्र का पर्व है, तो हमारे सभी साथियों ने बधाइयां भी भेजी हैं, और आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, लोग हवन करते हैं, अच्छे श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, देवी की आराधना करते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं।
0: सुनते हैं ये।

नवदुर्गा फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और खास बात यह है कि चित्रगुप्त के स्वर में था। हम संगीतकार के रूप में चित्रगुप्त को जानते हैं, बहुत कम श्रोता जानते हैं कि उन्होंने गाया भी है, तो ये उन्हीं के स्वर में था। रमेश सी पांडे का गीत था।

0: और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: क्या बात है। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष में महिला उद्यमी अंकिता गाबा के बारे में। और जिसके आज के समय में महिलाएं न केवल स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं बल्कि कंपनी भी संभाल रही है ममता जी, और बल्कि हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देकर उनका नेतृत्व भी कर रही है। और आज एक ऐसी महिला की सफलता और मेहनत की कहानी लेकर हम आए हैं, और जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि इससे ज्यादा स्टार्टअप की नींव रखी और उन्हें सफल भी बनाया। अंकिता गाबा जो एक इंटरनेट उद्यमी और सफल बिजनेस वुमेन है।
0: ये एक ऐसा नाम है मंजरी जी जिन्हें इंटरनेट उद्यमी का खिताब भी मिल चुका है। उन्होंने सोशल समोसा और
1: सुपर माउस
0: फीवी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नींव रखी। और 4 अप्रैल 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी अंकिता गाबा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आया करती थी। वे अपने जीवन में कुछ अलग और नया करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने विल्सन कॉलेज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया और बाद में उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री भी हासिल की।
1: बिल्कुल। और पढ़ाई के दौरान ही साल 2007 में अंकिता गाबा ने भारतीय सोशल मीडिया एजेंसी सुपर माउस की नींव रखी, जिसके बाद साल 2010 तक इसके सीईओ के तौर पर काम किया। इसके साथ ही अंकिता ने साल 2008 में इंडस्ट्री में भी करियर की शुरुआत की और उन्होंने टी सीरीज के साथ ही कई प्रसिद्ध हस्तियों के लिए पीआर मैनेजमेंट का काम भी किया इन्होंने।
0: और 2011 में उन्होंने अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल समोसा की नींव रखी। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं और ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया विज्ञापन मार्केटिंग अभियानों और केस स्टडीज से जुड़े आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं।
1: और साल 2015 में इस पोर्टल को प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की कंपनी को बेच दिया गया था। इस समय तक ये कंपनी 3 से 4 करोड़ की लगभग बन चुकी थी और इसके बाद साल 2015 में गेट एवेंजेलाइज की को फाउंडर बनी और एक साल बाद उन्होंने 2016 में आइजेनेरियो में पार्टनर एंड बिजनेस हेड के रूप में भी काम की शुरुआत की। यहां लगभग 2 साल तक काम करने के बाद ओरो वेल्थ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी और उसके बाद मनी फ्रेंड की मार्केटिंग हेड और महिला बनी। वेबसाइट की कंटेंट एंड कम्युनिटी हेड के रूप में भी आपने काम किया।
0: और 2023 में अंकिता गाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर फीवी की स्थापना की। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। इस पोर्टल को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें समर्पित किया गया है।
1: जी। और आज अंकिता गाबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ कर दम पर एक नहीं बल्कि कई स्टार्टअप की शुरुआत करके उन्होंने उसे सफल बनाया। और अंकिता गाबा के पुरस्कार उपलब्धियों के बात करें तो सोशल समोसा वेबसाइट को वेब समिट 2013 के टॉप 10 स्टार्टअप में जगह मिल चुकी है और एक्सचेंज 4 मीडिया द्वारा आईडीएमए 2013 के लिए सोशल समोसा को टॉप 5 डिजिटल स्टार्टअप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 2013 में उन्हें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है
0: और वैश्विक शीर्ष 100 सोशल मीडिया एजेंसियां और सलाहकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और अंकिता गाबा सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने एक्सपीरियंस और नए नए आइडियाज साझा करती हैं और केवल स्टार्टअप्स की ही शुरुआत नहीं की बल्कि कई लोगों को वो नौकरी भी दे चुकी हैं इसके माध्यम से। उनकी सफलता ये सीख देती है कि एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया के दम पर कैसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज अंकिता गाबा कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं। और अब सुनवाते हैं एक गाना।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर। फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक,
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट

0: ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेंद्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने अपने श्रोताओं को। और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दांडिया का स्वरूप बदल रहा, तो उसमें अपने उद्गार लिखे, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा डांडिया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट रेट ज्यादा होता है।
3: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं, तो खर्चा भी बहुत तेजी से होता है।
2: दोस्ती भी यहाँ पर बहुत परवान चढ़ती है, खास तौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
3: बिल्कुल,
2: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहाँ पर बहुत ज्यादा गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
3: बिल्कुल, उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही, तो ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि पहले के जमाने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए। पहले चनिया चोले और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो है पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब मतलब कहना चाहिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीजें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीजें निकल आई हैं, डिजाइनर चीजें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियां उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
2: पूरा बाजार भरा होता है
3: बिल्कुल,
2: इस समय बाजार में जाए तो वही लहंगा चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन लें।
3: बिल्कुल,
2: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती है कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका है वगैरह वगैरह।
3: और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती है, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी हो जाता है, लेकिन फैशन है पहनना तो सब पहनते।
2: इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती
3: जी
2: और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे,
3: बिल्कुल
2: ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला, मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूं तो लगता है कि गरबा के साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूम धड़ाका ही रह गया है, जीवन में आने वाले खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की ये परंपरा बहुत पुरानी है। ये हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है जहां खुशियां होती हैं और अपनों के साथ। गरबा नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है, अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा पॉप सब कुछ
3: सब चीज मिक्स हो गया है। बिल्कुल,
2: और बहुत तेज संगीत, अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें।
3: बिल्कुल, और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, गरबा और डांडिया का ये बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी संस्कृति आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरो

0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए, वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही है। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है भी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर
1: जी। और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया, इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इसके इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नवी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ। और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा
1: जी। और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTR की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जज भी रही।
0: और इन्होंने 2008 से 2014 तक UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया। और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते ही

0: मंजरी जी, फिर याद है कि माँ की अलमारी में कुछ अधूरे सपने भी छुपे होंगे? कभी टटोलने की, ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल, बहुत की, क्योंकि अक्सर
0: कि
1: जब
0: सिर्फ वो अंगूठी और जेवर लेके पहनने की कोशिश
1: नहीं,
0: की?
1: मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी, तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के, घूंघट काट के डोलती थी कमरे
0: और माँ की साड़ी
1: में
0: पहनने का भी एक अलग
1: जी।
0: सुख होता
1: बिल्कुल
0: था।
1: बिल्कुल,
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी, तो उसको दोहरा करके
1: दोहरा करके
0: या
1: साड़ी
0: फिर खुद लपेट के साड़ी
1: पहनते
0: पहननी
1: थे
0: नहीं आती थी, तो लपेट के आईने के सामने देखना और
1: जी।
0: अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार
1: बिल्कुल,
0: होती थी
1: और
0: वैसे
1: माँ
0: वैसे
1: की
0: तैयार
1: माथे की
0: होना।
1: बिंदी निकाल के अपनी लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था
0: तो लेकिन
1: जी
0: उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे
1: जी
0: थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहां पहुंच भी नहीं सकते थे कि
1: नहीं
0: उनके
1: नहीं
0: भीतर, उनके मन
1: बिल्कुल
0: में क्या चल रहा होता है, वो सब के बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है।
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने, समेटने के लिए। तो
0: बिल्कुल। और वहां माँ की अलमारी खोलते हैं, वहां जो उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहां कपड़े और पुरानी साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी, और उनकी जिंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे, जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी अपने बचपन की यादें, कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ
1: बिल्कुल
0: के, हम सबके माँ के, और लगभग सबकी माएं एक जैसी होती थी उस समय।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनकी गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे, तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे। और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी, जिससे वो खास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी। तो इस तरह की यादें होती हैं कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचा कर रखी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटी छोटी चीजें, वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीजें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद कि माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुनती थी, और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान की पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था। उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा। अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं, और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है, तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हमें, हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि
1: जी
0: आप भी बनाओ, और वो ऊन पूरा उसका एक गुम्फा बन जाता था,
1: हाँ,
0: संभलता नहीं था।
1: और कई बार तो
0: और
1: फिसल जाए, अगर गोला
0: बिल्कुल
1: बना भी रहे तो छोटे छोटे
0: हाँ, तो
1: हाथों से
0: कहाँ
1: फिसल गया तो
0: दूर
1: दूर
0: तक
1: तक
0: चल गया
1: चला
0: वो
1: गया,
0: धागा,
1: फिर वो
0: धागे के पीछे पीछे
1: फिर मान लो बड़ा
0: भागता
1: उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम
0: हाँ।
1: रहने दो, तो
0: तो
1: लेकिन
0: और उस
1: बड़ा
0: गोले
1: मजा
0: में
1: आता था।
0: एक खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह के, जैसे एक सुपारी का आकार
1: हाँ
0: या फिर संतरे का आकार,
1: नहीं,
0: सेब
1: उसको
0: का आकार बनता
1: अंगूठे
0: था।
1: और छंगुनिया में ऐसे करके तिकल्ला नहीं होता है, जैसे उस तरह से वो लपेटा जाता था, तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा, तो वो भी
0: अब
1: बड़ा
0: हमारे
1: मजेदार
0: श्रोता
1: है
0: देख नहीं सकते, नहीं
1: जी।
0: तो हम ये जो अभी आपने
1: अब किया
0: एक्शन करके
1: एक्शन
0: दिखाई है
1: किया
0: ना, ये दिखा सकते थे कि मंजरी जी बाकायदा वो हाथ
1: हिला
0: ऐसे हिला के दिखा
1: करके,
0: रहे
1: मेरे
0: हैं
1: हमारे श्रोता बहुत समझदार है, वो सब जान गए कि तिकल्ला
0: हम।
1: बोला है, तो वो समझ गए होंगे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी में सिर्फ साड़ियां ही नहीं, उसके उनके अधूरे सपने भी तह करके रखे होते थे, जो उन्होंने शायद विवाह के पहले खुद के लिए संजोए हों। एक तह में वो लाल जोड़ा जो उसने उन्होंने अपनी विवाह के बाद कभी खुलकर पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी पर चूल्हे चौके की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला, और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य

0: को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता, माँ तुम्हारा सपना क्या था। बहुत ही मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने जमाने की माँ के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। सामाजिक वैचारिक अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूर्त बन जाती थी, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक माताएं ऐसी नहीं है। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी करती नजर आ रही है। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा। अब कहने का ये मतलब नहीं है कि माँ की जो अच्छाइयां थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए,
0: जी उनको तो रखना ही अपने पास। और हमारे साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ कपड़ों या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच ना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती हैं और बच्चों की खुशी, पति की जरूरतें और घर की जिम्मेदारियां उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती हैं और उनकी अलमारी की हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखें माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रख के, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ की उस अलमारी में दिख जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागजों के बीच रसीद भी मिल जाती है, जो चीज़ें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा हुआ है।
1: और वो प्रिंट करने का जमाना भी था कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अब एक गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

0: भाई, माँ की अलमारी में जो छुपे उनके अधूरे सपने थे, इसी तरह चांद सितारों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, कुदरत के माध्यम से पूरे होते थे। वो
1: बिल्कुल
0: अपने सपनों को इन्हीं तरीके से, कभी चांद की कहानी, कभी कोई कहानी सुनाकर अपने सपने पूरे कर लेते थे। तो सपन कहानियों के माध्यम से उनके सपने मुकम्मल हो जाया
1: बिल्कुल।
0: करते
1: और
0: थे।
1: ममता जी, कई घरों में उनके पास अलमारियां होती थी, माँ की दीवार वाली अलमारी होती थी, कई बार वैसी लकड़ी की पुरानी जो नक्काशीदार अलमारियां होती थी, और कई बार उनके बक्से या कोठरी में बहुत सारी चीजें होती थी, इस तरह से भी
0: अब
1: रखते थी वो लोग।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की अलमारी में पुरानी फोटो, डायरी, कॉपी और बहुत सारी यादगार चीजें रखी हुई थी। उन कॉपियों में उन्हें कुकिंग टिप्स, फिल्मों के मनपसंद गाने लिखे हुए होते
1: क्या
0: थे।
1: बात है,
0: और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही है मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब मांझा लपेटा
1: जी
0: करते थे। भाई ये तो हमने भी ये काम किया है
1: हाँ, मांझा लपेटना भी
0: कि
1: तिकल्ला जैसा
0: हाँ वो
1: बनाते थे
0: पतंग उड़ा रहे हैं
1: जी।
0: और मांझा पकड़ो आप,
1: हाँ
0: संभालो, और उंगली कट जाती थी।
1: हाँ जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था।

0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माताजी ने एक बार अलमारी में एक पोटली निकाली थी। हम तीनों भाई बहन उसको बड़े अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और हमारे जन्म से पहले के और बहुत रेयर अलभ्य थे कुछ सिक्के और कुछ तांबे के, कोई हॉल वाले तो कोई पुराने गोल, मतलब एक गोल छेद वाला सिक्का और पुराने गोल नहीं होते थे, और राजा महाराजा के मुख्य उसमें छापे बने हुए थे। वे सिक्के उनके नहीं हमारे सपने पूरा करने के लिए रखे होंगे, मतलब वो सिक्के।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी सेंट बनाया करते थे, मेरी मम्मी की बड़ी बड़ी लोहे के संदूक में से आज भी उनकी खाली छोटी छोटी शीशियों से उनकी खुशबू संदूक में से आती है जब भी वो संदूक खोले जाते हैं, जबकि वो सेंट नाना जी ने आज से कम 70-75 सालों पहले बनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में से कोई एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन इसे अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और जो आपने बताया कि सिक्के, तो इस तरह की बातें। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों की माँ की अलमारी कहाँ हुआ करती थी भाई, हमने तो माँ की काठ की पेटी या फिर बक्सा देखा था जिसे वही छू सकता था जो बच्चा उनके समीप रहते हुए उनका प्रिय होता था, और मैं उन बच्चों में नहीं आ पाया था। और बिल्कुल ताला बंद होता था उस बक्से में और चाबी कहीं छुपा के रखी।
0: इसीलिए तो मैंने बोला ना कि सब चीजें सबके यहाँ नहीं होती थी।
1: हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद है, माँ के अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुना करती थी, और हम स्वेटर की बातें कर चुके हैं।
0: बिल्कुल, और जब स्वेटर बिनती थी तो हमने देखा ही था कि किस तरह से वो बिना करते थे। और माँ की बहुत सारी चीजें भी होती थी घर गृहस्थी की, जिन्हें हम सोच सकते हैं कि वो भी कभी कभी उसमें चीजें दिख जाती थी उनके बक्से में रखी हुई संभाल करके।
1: अब हम मुहावरों की बातें कर लेते हैं। मंजरी जी, तो बताइए आपको कितने मुहावरे याद हैं? आज जो मुहावरा हमने दिया है वो याद है कि नहीं?
0: हाँ उल्लू सीधा करना। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में, अन्य पूजा स्थलों में जहाँ श्रद्धालुओं में भक्ति भावना होनी चाहिए, अत्यंत भीड़ भाड़ में भी कुछ लोग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का देते हुए पहले दर्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि भक्ति भावना के विपरीत है। और इस तरह की बातें हमारे बहुत साथियों ने लिख करके भेजी हैं। तो हम
1: अच्छा मंजरी जी, आप तो मुहावरों की बातें बता रही हैं और शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये माँ की अलमारी की बात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, उसमें से कपड़े सपने निकलते ही आ रहे हैं। अब हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है, अभी कमेंट लिखा है, हमें लगता है कि इस विषय पर बातें करना हमारी सखियों को बहुत मन भाया है। लिखा है कि अलमारी में उनकी साड़ियां इतने करीने से मलमल के कपड़े में लपेटी हुई रखी रहती हैं, जैसे कितनी अनमोल धरोहर है उनकी। साड़ियों में तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। एक किनारे में उनकी छोटी सी पैकेट बना रहता है, छोटा सा पैकेट बना रहता है जिसमें उनकी पुरानी तस्वीर, पुराने एल्बम और न जाने क्या क्या सहेजा हुआ रखा रहता है। काफी सारी डायरी जो उनको लिखने का शौक है, कुछ कुछ लिखती रहती है, वो भी उनकी अलमारी में सजी रहती है। पेन, पेंसिल, रबर, स्केल सब कुछ एक पेंसिल बॉक्स में करके रखा हुआ है। कभी उनको पेंसिल चाहिए तो वो भी वर्क पहली भरने के लिए, और कभी गलत हुआ तो रबर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, वो सब संभाल के अपने पास रखती हैं। क्या बात है भाई, हमें लगता है कि जो माँ की अलमारी की यादें हैं वो अंतहीन है। अब एक हमारी सखी ने लिखा है कि मम्मी की अलमारी और यादें शब्द नहीं है बयां करने के लिए, अब तो हमारे पास भी जैसे शब्द खत्म होने को हैं। और डायरी और कॉपी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनके अलमारी में, उनके बक्से में एक डायरी होती थी, और कुछ डायरी में ये भी लिखा होता था कि किसको कितना दिया गया,
0: खर्चे का हिसाब,
1: खर्च का हिसाब, और तोहफे के रूप में जैसे शादी विवाह में शगुन के तौर पर देते हैं, तो फलाने को इतना रुपया दिया गया और उनको इतना रुपया दिया जाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में किसी मेले में जाती थी तो वो भी डायरी में दिखता था कि यहाँ पे ये पानी बताशे, दही बड़ा, चटनी, आलू की टिक्की खाई और इतने पैसे ले गए थे, इतने पैसे बचे, मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी भी वो लिख के रखती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उनकी यादों को साझा करते हैं, ताजा करते हैं।
1: अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों में बात करती थी।
0: बिल्कुल, जैसे कुछ काम करने का मन नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ अपना बोल दिया उन्होंने, अपनी मुहावरे कहा थे।
1: तो और आज का विषय भी मुहावरा है
0: जी।
1: तो मुहावरे में हमने रखा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने आप

0: अपना काम निकाल के आगे
1: जी,
0: बढ़ जाएं।
1: जी।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ है अपना काम सिद्ध कर लेना। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिंदगी में जो अपना काम सीधा करके आगे निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया अपना उल्लू सीधा करना, भाई इस नेक कार्य में तो प्रायः सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा करते रहना कोई बुरी बात नहीं, बशर्ते उससे किसी का दिल ना दुखे, लिखते हैं हमारे साथी। और एक लिखते हैं कि इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ, अच्छा ये चीज तो मैंने पढ़ी है कि दर्शन करने जाते हैं ये वाली बात। और एक लिखते हैं कि उल्लू सीधा करने वाले मुहावरे पर ये गीत फिट बैठता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपना काम निकल गया फायदा हो गया, फिर कौन तू कौन मैं, सावधान ऐसे लोगों से जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। कई बार हो भी जाता है तो बड़ा मन दुखता है कि कैसी लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है जो सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में खड़े होते हैं, उनका मतलब निकल गया तो आपको पूछेंगे भी नहीं, पलटकर आपको देखेंगे भी नहीं। मुसीबत के समय तो आप ये उम्मीद ही मत करिए कि वो आपका साथ देंगे। तो अगर आप एक बार धोखा खा जाएं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना लें, कि इस तरह
0: पर ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपना मतलब सिद्ध करके आगे बढ़ गए और सामने वाले की मदद ना करें। और मंजरी जी, आज आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसकी सतर्कता की ओर ध्यान दिलाना इसका उद्देश्य है।
1: बिल्कुल। और हमें घर, स्कूल और कार्यालयों में सुरक्षा के उपायों को जानकारी देनी चाहिए, रखनी भी चाहिए। और आपातकालीन जो नंबर होते हैं उनको लिखकर जरूर आप रखिए, कभी भी मुसीबत पड़े तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। सरकार और आम लोगों को मिलकर आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। जागरूकता और सही तैयारी से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिवस का संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आपदा के लिए पहले से तैयार रहें।
0: और अब सुनते हैं ये गाना।

0: बतियाएं या गाना सुनवाएं।
1: जी,
0: लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: सखी सहरी कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। यह है दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, अब बात करते हैं उस सीरीज की जहाँ से आपको नाम मिला विकास का, इस किरदार का। तो ये पंचायत के साथ जुड़ना कैसे हुआ, क्योंकि शायद दिलचस्प बात यह है कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली इसका ऑडिशन नहीं दिया था या यूं ही हो गया, कुछ तो मजेदार किस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ। पंचायत के साथ कैसे जुड़े आप?
2: देखिए, जब मुंबई में ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ मेरा, तो जैसा मैंने कहा कि रोज सुबह, कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं मुंबई आ गया हूं। सोया हुआ हूं, नींद खुली, मैंने कहा अरे मैं मुंबई में हूं, यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे मुंबई जाना था, बचपन से ही सपना देखा था मैंने। इस कदर दीवानगी थी मुंबई आने का कि अगर मैं किसी ट्रेन में देख लूं कि पटना टू बांद्रा, मुझे लगता था कि जाकर के उस बॉगी को एक बार प्रणाम कर लें,
1: अच्छा
2: उसको छू लें, क्योंकि ये मुंबई जा रहा है। और जब मैं मुंबई आ गया तो रात में कभी चौंक के उठ जाता था कि सच में मैं मुंबई आ गया, मैं मुंबई में हूं अभी, ये यकीन नहीं होता था मुझे। और जब मुझे ये लगता कि जब तुम मुंबई आ गए हो तो तुम सोए हुए क्यों हो भाई, उठो ना, जाओ ना ऑडिशन देने के लिए, करो ना वो काम जो तुम चाहते हो। तो बहुत ही सुबह उठ के थोड़ा गले के लिए कुछ रियाज कर लेता था, चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आया था मैं,
1: बिल्कुल,
2: और वही चावल दाल, कभी चना मूंग खा के, या सत्तू, सत्तू मेरा बहुत ही गो टू फूड है, अभी भी यकीन माने मैं सत्तू पी के आया हूँ।
1: अच्छा जी।
2: तो उस टाइम में भी ये सब सत्तू या चावल दाल खा के मैं निकल जाता था ऑडिशन के लिए
1: जी।
2: और कई बार मुंबई की तो आप जानते ही हैं उमस, इधर तो आप गर्मी भी ज्यादा होने लगी है, बट ये सब चीज फर्क नहीं पड़ता था, ना तो उस समय सनस्क्रीन था, ना तो कुछ था, बस जुनून था जिसकी वजह से पूरा शरीर चमक रहा था, है ना?
1: बिल्कुल, आपकी बातों में झलक रहा है।
2: हाँ जी। और मैं निकलता जहां मुझे मिल जाए पानी पीने का, पसीने सुखाने का, वो सब चीज मैं कर लेता था। ऑडिशन जब भी मैं कहीं जाऊं, और दिन में अगर एक भी ऑडिशन हो जाए तो ऐसा लगता था आज का दिन सफल हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि जब सामने कैमरा होता था तो मुझे लगता मैं क्या कर दूं। कई बार स्क्रिप्ट हम घर से अपना कुछ मोनोलॉग तैयार करके ले जाते थे और सामने रिकॉर्ड करने वाला अगर उसको मजा आ रहा है तो हम उसी में इम्प्रोवाइज करने लगते थे।
1: बिल्कुल,
2: किसी तरह इसको मैं इम्प्रेस कर दूं अपने एक्ट से। ये फितूर, ये दीवानगी, ये पागलपन मेरे सर पे सवार हो गया था और ये चलता रहा मैम। बट उस समय एक चीज मेरे ध्यान में था कि ऑडिशन दो

0: और भूल जाऊं। क्यों? क्योंकि यहां लोड बढ़ जाता था दिमाग पे कि भाई मैंने बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। तो अपन ऑडिशन दे दे के भूल जाते थे।
1: तो पंचायत का ऑडिशन भी आपने दे के भूल गए या किस तरह से यहां तक?
0: पंचायत का ऑडिशन में ये हुआ कि तब तक 1.5 साल हो चुके थे मुंबई में।
1: अच्छा,
0: 1.5 साल। और मेरे कुछ दोस्त, मेरे नहीं मतलब मेरे रूममेट के एक दोस्त, वो उनकी महफिल जमती थी मेरे घर पे। तो अंकित मैं फ्लैटमेट हुआ करता था
1: जी।
0: फ्लैटमेट क्या, हम लोग समझिए कि रैन बसेरा ही था वो। एक साथ 6-7-8 लोग रह रहे हैं।
1: अच्छा।
0: और कमाल की बात ये थी कि 7-8 लोगों के लिए मैं ही रोटी बेलता था।
1: अच्छा, रोटी का काम आपको सौंपा गया था?
0: नहीं नहीं सौंपा क्या गया था, कोई कुछ करते ही नहीं थे।
1: अच्छा।
0: और मुझे ये था कि इस समय पे मुझे बाहर जाना है, ऑडिशन देना है, समय पे सो जाना है। तो वो सब इंतजार करते रहते थे कि चंदन आएगा तो खाने को मिलेगा। तो उन सब के लिए मैं रोटी बनाता, और बाद में फिर मैं टिक्कर बनाने लगा।
1: अच्छा,
0: टिक्कर जो रोटी का बहुत मोटा रूप।
1: अच्छा, छोटा और मोटा रूप। छोटा और मोटा रूप।
0: हाँ जी।
1: अच्छा।
0: बहुत मोटा मोटा मैं, चूंकि मुझे बड़ा मुश्किल हो गया था वो
1: जी।
0: मतलब 1 घंटे तक रोटी बेलना, तो मैं
1: जी,
0: बहुत
1: जी,
0: मोटा
1: जी।
0: मोटा बनाने लगा। खैर, तो हाँ महफिल जमती और फिर लोग आते हैं। तो उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया लतिन। तो उन्होंने कहा कि यार चंदन तुम कल आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने कहा अरे वाह बहुत सही, इतने साल से आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कास्टिंग वे में। तो उसने बुलाया, अगले दिन हम पहुंच गए वहां। कमाल की बात ये थी कि पंचायत सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे, सिर्फ 2 कैरेक्टर बचा हुआ था। एक एक दिन का वो काम था, एक इलेक्ट्रीशियन का और एक दूल्हे का। बोला देख दूल्हा तो तू लग नहीं रहा, इलेक्ट्रीशियन बन जा, उसका ऑडिशन है। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोला ये करके थोड़ा सा तैयारी कर लो और आ जा।
1: जी।
0: मैंने कहा ठीक है, 2 बार पढ़ा और फिर मैंने वो ऑडिशन देके फिर वही बातें भूल जाओ। भूल गया फिर अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी घूम घूम के कि यस, ऐसा दरवाजा नॉक करता था कि भाई सर कुछ है क्या मेरे लिए, कुछ है क्या मेरे लिए, ये फिर शुरू हो गया मेरा। उस समय चंदन चंदन कुमार जो हमारे पंचायत के राइटर है और दीपक मिश्रा जो हमारे पंचायत के डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि यार इस लड़के से अपन कुछ और करवाते हैं, बहुत सही लग रहा है। तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था।
1: अच्छा।
0: तो उनके मन में आया क्यों ना हम विकास एक बार ट्राई करें इससे। तो आया विकास का ऑडिशन मेरे पास। मुझे लगा कि यार ये क्या ही मतलब, कहाँ मैं 1 डे 2 डे करता हूँ, इन्होंने पैरेलल लीड कैरेक्टर मुझे ऑफर कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है, रोज भटकेंगे फिर से। और मैं एकदम कफन बांध के आया था अगले 20-25-30 सालों के लिए।
1: अच्छा।
0: ये नहीं कि मुझे फट से काम, नहीं, बहुत समय बुढ़ापा तक वो सोच के आया था मैं। बट आ गया पंचायत का ऑडिशन और अगले दिन चला गया ऑडिशन के लिए, दिया
1: शुरू
0: ऑडिशन।
1: किया जाए।
0: हाँ दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया TVF से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो रामनगर में उनका ऑफिस आ गया मैं मिलने के लिए। यकीन मानिए मुझे उस समय तक मैं TVF जानता भी नहीं था, कुछ
1: अच्छा।
0: वीडियो मैंने जरूर देखे थे बट जानता नहीं था मैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है।
1: क्या बात है,
0: तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: क्या बात है, क्या बात है। इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ जी।
1: इसी बात पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: अरे वाह, मैं इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल शुरू किया था ना तो अक्सर फिल्म का एक गाना बहुत उस समय, आजकल तो वायरल कहते हैं, उस समय तो लोकप्रिय कहा करते थे।
1: पॉपुलर,
0: हाँ जी हाँ
1: बहुत
0: जी।
1: पॉपुलर।
0: तो एक बार आजा आजा अक्सर फिल्म का गाना है,
1: जी,
0: इमरान हाशमी
1: सुनवाते
0: उनका
1: हैं गीत,
0: दौर था ये।
1: सुनवाते हैं गीत,
0: हाँ जी हाँ
1: बिल्कुल।
0: जी।

0: पंचायत की बात चलिए तो हम आते हैं कि आपके किरदार पर, उस किरदार के लिए कुछ तैयारी की आपने, जैसे मैनरिज्म कुछ है उसके, उसकी बोली किस तरह से बोलेगा, इसके पीछे कुछ तैयारी हुई, वर्कशॉप हुई, किस तरह से ये क्योंकि बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार है, जिस
1: बिल्कुल
0: हिसाब से वो स्लो बड़े आराम से इत्मीनान से बोलता है चलता है, तो वो तैयारी कैसी हुई?
1: जी। तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो जैसा वो थिएटर में मुझे बताया गया था कि जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वो कैरेक्टर एक समय के बाद खुद से बोलने लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं
0: जी
1: ऐसा हूँ। तो पंचायत का जो विकास है वो स्क्रिप्ट से मैंने उठाया, मतलब
0: अच्छा
1: उसको जितना मैं पढ़ा, मतलब बहुत पढ़ा मैंने
0: जी
1: कि अगर ये प्रधान जी से इस तरह से बात कर रहा है, ये प्रहलाद चा से ऐसी बातें कर रहा, या सचिव से ऐसी बातें कर रहा, तो ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, ये सब कुछ आप जब बार बार बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। इस एक स्क्रिप्ट में अगर आप बार बार पढ़ो तो उसमें सब कुछ रहता है, आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती,
0: बस उसमें रमना और बसना होता है स्क्रिप्ट
1: बस।
0: में।
1: तो समझिए कि विकास को इतना, मैं चूंकि वो पहला प्रोजेक्ट था
0: जी

0: तो मैं किसी तरह से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहता था,
1: जी
0: तो उसको बहुत पढ़ा मैंने। जैसे कई बार होता है ना कि जो बुक आपका बहुत पसंदीदा होता है, आप इतना पढ़ जाते हो कि उसके पेज थोड़े से मटमैले हो जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: हर जगह फिंगरप्रिंट होता है,
1: बिल्कुल
0: गंदे से हो जाते हैं हर जगह। तो मेरा स्क्रिप्ट भी इसी तरह से हो गया था।
1: जी
0: कहीं भी मुझे अगर 5-10 मिनट का भी समय मिलता, मैं एक दो पेज पढ़ लेता।
1: अच्छा
0: इतनी दीवानगी थी मुझे अपने स्क्रिप्ट को लेकर के। तो एक तो दिमाग में ये भी था मैम कि अपन एक्टिंग नहीं करेंगे कहीं भी जितना। अच्छा, ये मेरा ना मतलब अभिनय को लेकर के मेरा अप्रोच भी हमेशा से रहा है
1: जी
0: कि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा हेयर मेकअप करके अभी तैयार है तो अभी मुझे एक्टिंग करनी है। मैं जैसा हूं या जैसा मेरा कैरेक्टर है अपन उसी तरह से करेंगे। क्यों हम कैमरा लगते ही ये दिखाने लगते हैं कि देखो अब हम एक्टिंग करेंगे, अब तैयार हो जाओ हमें देखने के लिए। मुझे इससे परहेज शुरू से था। मुझे नहीं पता कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन हाँ, मुझे बुरी एक्टिंग क्या होती है इस बात की समझ बहुत पहले हो गई थी।
1: और मुझे लगता है वो समझ होना बहुत जरूरी है
0: बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं उनसे बचता था। और ये था कि क्या करना है ये तो एक्सप्लोर करो, ये बहुत महासागर है, ये पूरा खुला आकाश है, क्या करना है आप ढूंढो, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले उस
1: पहले
0: पर
1: पता होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए
0: पता होना चाहिए। तो विकास के साथ भी ऐसा ही किया मैंने।
1: जी
0: अपने गांव में जिस तरह से मैं देखता था कि लोग जिस तरह से खड़े होकर के, 5 लोग अगर पुलिया पे खड़े हैं या बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो कितना अगर बहुत इन्वॉल्व है, उस तरह की बातें हो रही हैं, तो उनका हाथ पांव कैसे रहता है, एनर्जी कैसी होती है। मेरी ये पूरी कोशिश रही। आप देखना किसी भी फ्रेम में आपको नहीं लगेगा कि ये लड़का अलग किसी दूसरे शहर का है या ये लड़का विकास इस गांव का नहीं है। तो इन सब पे मेरा बहुत ही मैं चाहता था कि घुस जाऊं। जैसे आप कोई शर्ट पहन लेते हो, कोई कोट पहन लेते हो और वो आपका हो जाता है, उसी तरह से विकास को मैंने पहन लिया।
1: बिल्कुल, और
0: अब
1: वो दिखता भी है। और इसके एक दो सीन है
0: जी
1: जिसकी मैं बात करना चाहूं, जैसे एक था जिसमें विकास वो बाइक पे बैठता है और पूरा पूरा पलंग उठा के सर पर और चल
0: हाँ
1: देता है। तो
0: जी,
1: इस
0: हाँ
1: तरह
0: जी।
1: के जो सीन है ये कहीं इम्प्रोवाइज्ड है या स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे पहले से?
0: नहीं, ये जो बेसिकली जो खाट जो हम सर पे उठाते हैं, ये
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: स्क्रिप्ट में लिखा था।
1: अच्छा
0: लेकिन पंचायत में एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे क्रिएटर्स जो हैं दीपक सर, अरुणाव सर और चंदन सर जो राइटर हैं, ये अपने एक्टर को बड़ा खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अभी मतलब शुरू से ही उन्होंने कहा है कि देख ये यूनिवर्स है, हमने अपने सारे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में उतार दिया है। मैं ये इंसिडेंट या ये इवेंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है, बट ये होगा कैसे? आपको उस मोमेंट में, उस स्पेस में, उस एम्बियंस में जो समझ में आ रहा है आप करो। यही वजह है कि पंचायत में जितने कैरेक्टर हैं कई बार वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत चीज निकाल के ले आते हैं, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स को समझें। अगर आप नहीं समझोगे ना, तो ऐसा लगेगा एयर ड्रॉप किया हुआ ये कैरेक्टर है,
1: जी
0: सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा है, सिर्फ वो लाइंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये छूट, ये लिबर्टी हमारे क्रिएटर्स ने हम लोगों को दिया है। और मुझे भी इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप जो हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ सोचा है इस सीन को कि ऐसा रखेंगे, उनके अतिरिक्त आप कुछ कर देते हो, उनसे आगे कुछ बढ़ा देते हो अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को, तो यकीन मानिए जब आप होटल जाते हो वापस, अपने फ्रेश होकर के नहा के अपने बेड पे आते हो, तो बड़ी खुशी मिलती है आपको कि वाह मैंने इस
1: वो
0: सीन में,
1: संतोष मिलता है
0: यस
1: कि आज क्या किया।
0: आज बड़ा अच्छा सीन किया
1: जी
0: मैंने।
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल
0: बहुत ही खुशी खुशी आपको नींद आ जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म बजता है, फिर आप वही जुनून, वही पागलपन आपको काम आता है।
1: तो सेट पे कैसा माहौल है आपके को एक्टर से, ऑफ स्क्रीन भी कैसा माहौल है, किनके साथ मिलना जुलना तो लगा रहता होगा?
0: देखिए, एक तो बहुत यह है कि लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग मिलते जुलते हैं, पर्दे पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुंबई बिल्कुल उल्टा है, किसी के पास भी समय नहीं है। और कई बार डर भी लगता है कि भाई कोई कहीं जाऊं पता नहीं क्या होगा, उसकी प्राइवेसी है, उसका क्या है। तो सेट पे तो हम लोग सब बहुत मिलजुल के, सब लोग, और ये सभी अभी इतने 8-9 साल का अनुभव है मेरा,
1: जी
0: सेट पे हम लोग जितनी केमिस्ट्री, और सिर्फ मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी प्रोजेक्ट में यही होता है कि
1: जी
0: हम लोग सेट पे बहुत अच्छे रहते हैं। और जैसे ही हमारा पैकअप होता है, हम सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं।

0: ना। और ये कई बार सही भी होता है, कई बार मुझे गलत भी लगता है, बट ठीक है, मैं भी इस धारा में बह रहा हूँ। किसी के पास समय नहीं होता कि वो मिले, पुराने दिनों को याद करे, सिर्फ
1: कभी
0: काम।
1: कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर फिर से उनसे मुलाकात हो, फिर वो एक मिलना अलग हो जाता है।
0: एक तो हम लोग का जो भी एक्टर होते हैं
1: जी
0: उनका बहुत रिसीविंग नेचर होता है।
1: जी
0: मान लो कि अगर आपकी एनर्जी मुझसे नहीं भी मिल रही है, आप बहुत अलग ख्यालात के हैं, मैं अलग हूं, बट जब हमारा सीन होता है तो हमें अपनी एनर्जी को मैच करके और उस वक्त को बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को करना होता
1: जी जी
0: है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: तो लोग लगा, अरे यार क्या है, बहुत बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन लोगों में। तो ये हमारा जॉब का एक सबसे पहला ये स्टेप है ये।
1: अच्छा, पंचायत के बाद क्या फर्क आया है जब आप अभी वापस गांव जाते हैं मिलने जुलने परिवार से, दोस्तों से, पहले के चंदन में और अभी वो जिस तरह से बिहेव करते हैं या मिलते जुलते हैं, कुछ फर्क है दोस्तों के बीच या बाहर के लोगों के बीच?
0: देखिए, उनके नजर उनका नजरिया बदला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे ऐसा लगता भी है,
1: हाँ
0: बट मैं तो बिल्कुल भी अंदर से नहीं बदला हूं। मैं
1: अच्छा
0: जैसा था वैसा ही हूं, पहले भी इसी तरह से मैं सोचता था, इतना ही कूल और कॉन्फिडेंस में रहता था जितना आज है। और कभी मुझे अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था मेरे लाइफ में,
1: जी
0: तो कई बार आश्चर्य नहीं होता मुझे कि अरे।
1: लेकिन बाहर जो बाकी लोग मिलते हैं उनकी मेहमान नवाजी में कुछ फर्क आया?
0: बिल्कुल, कई बार तो उनको लगता है कि भाई ये चंदन तो आप, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोस्त लोग अजीब बिहेव करते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, उनको लगता है कि अरे इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बैठाओ, इसके लिए थोड़ा
1: कुछ
0: पहले
1: कुछ
0: चंदन
1: बुरा
0: को।
1: लग
0: हाँ,
1: जाएगा।
0: तो मुझे लगता है ओ हेलो, मैं वही चंदन हूँ भाई, ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहे हो, जैसा पहले थे वैसे ही रहो। तो लोगों का नजरिया बदला है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी, जैसा मैं पहले था
1: अच्छा
0: आज भी वैसे ही हूँ। घर जाऊं या कहीं भी जाऊं,
1: जी
0: मैं वही कहा कि ये मेरा जॉब है अभिनय करना। लोगों को लगता है कि अरे ये तो पर्दे पे आ रहा है ये सब चीजें, बट ये मेरा जॉब है। और बहुत ही संजीदा और गंभीरता के साथ, जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर अपने काम करते हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम लोग भी काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे बहुत बेहतर हैं या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। हाँ, बट कई बार होता है कि कैमरा देख करके लोगों को थोड़ा सा रोमांच फील होता है। मैं समझ सकता हूँ कि वो अगर ऐसा सोचते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा एक जॉब है, मैं बस एक जॉब कर रहा हूँ। मुझसे बेहतर काम जो सरहद पे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो
1: बिल्कुल
0: इंजीनियर हैं, वो या जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उनका योगदान समाज में मुझसे कहीं ज़्यादा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। सुनवाते आपके पसंद का ये गीत
0: बिल्कुल सुनेंगे हम,
1: जरूर बताएं,
0: हर घड़ी बदल रही है
1: रूप
0: रूप
1: जिंदगी,
0: जिंदगी की,
1: बिल्कुल सुनवाते हैं
0: है
1: गीत।
0: ना।

0: अभी हम बात करते हैं गुलमोहर
1: ओ
0: की।
1: वाह,
0: गुलमोहर में आपने काम किया और उसमें मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया, शर्मिला टैगोर जी भी स्क्रीन पर थी आपके साथ। उससे जुड़े कुछ खास अनुभव किससे आप सुनाना
1: यस यस
0: चाहें,
1: यस,
0: कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा अनुभव रहा?
1: बिल्कुल। गुलमोहर मेरे फिल्मी करियर के लिए एक ऐसा है फिल्म जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। हालांकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया था तो मैंने मना ही कर दिया था।
0: अच्छा, क्यों?
1: हाँ, क्योंकि कैरेक्टर मुझे सही नहीं लग रहा था, यार मैं इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं करूँगा। बट हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल चिटेला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो एक बार मुझसे मिलो, करना ना करना बात की बात है, पहले एक बार मिलो। मैं मिला और मुझे ये था कि अगर मैं जाऊँगा तो ये तो मना ही लेंगे, बट
0: जी।
1: मैं बहुत जिद्दी रहूँगा अपने जिद पे कि भाई मुझे नहीं करना। और गया बांद्रा में उनके ऑफिस, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करना चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैं ये गेट कीपर इस तरह का कैरेक्टर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो लोग मुझे इसी तरह के कैरेक्टर देते रहेंगे,
0: टाइप कास्ट कर
1: टाइप
0: देंगे।
1: कास्ट कर देंगे, और अपन बहुत अंदर भरा हुआ है मामला, तो फंसना नहीं है किसी एक कैरेक्टर में। उन्होंने कहा कि देख चंदन करना तो तुम्हें ही है ये कैरेक्टर, हाँ बोलो ना बोलो, अब तुम ये बताओ कि इस कैरेक्टर को और कैसे, तू क्या क्या नहीं चाहता है इसमें,
0: जी
1: और इसमें हम और क्या कर सकते हैं। एक नया लड़का उस फिल्म में, इतने दिग्गज लोग, मनोज वाजपेयी सर, शर्मिला टैगोर, तलत अजीज, अमोल पालेकर, वहां पे मेरे जैसे

0: लड़का एक बोल रहा है कि सुनो, मैं पूरे फिल्म में कभी कुछ जो कॉस्ट्यूम है ना, वो वर्दी वाला गेटकीपर का, वो नहीं पहनूंगा। पूरे फिल्म में कुछ काम नहीं करूंगा मैं, कुछ उठाना हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो करोगे क्या?
1: हाँ
0: मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा। मैं एक ऐसा लड़का जो गांव देहात से आया है दिल्ली में, और इस शहर में वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है। तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते हैं, राहुल कमाल का, बहुत कमाल के इंसान। वो मेरे हर बात को मानते चले गए। उन्होंने बोला बस मैं यही चाह रहा हूँ, यही करो।
1: अच्छा
0: और पता नहीं क्यों मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली, और मैंने वो फिल्म किया। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गुलमोहर में हूँ, क्योंकि पता नहीं इतने दिग्गज लोग के साथ फिर दोबारा कब काम करूंगा।
1: बिल्कुल.
0: और जैसे शर्मिला मैम, मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था इस एक्शन, तो एक ऐसा
1: हाँ, एक
0: सीन
1: सीन
0: था
1: में.
0: वहाँ पर,
1: जी
0: कुछ झड़प था, आपसी झड़प, उसमें मेरा को एक्टर, उन्होंने मुझे पैर पे मार दिया था, तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। और मनोज सर को लाके मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ,
1: अच्छा
0: जबकि मैं दर्द के मारे
1: जी
0: तड़प रहा था। तो एक पॉइंट के बाद जब मैं अपना लाइंस नहीं दिया उनको, तो वो आए और उनको लगा सच में ये कुछ तकलीफ में है, दर्द में है। और आकर उन्होंने फिर मुझे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस ला के मुझे भेजा गया हॉस्पिटल। बट मुझे याद है कि शर्मिला मैम का जब रैपअप हो रहा था लास्ट डे उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे चंदन को बुलाओ, चंदन को बुला। और उन्होंने केक कट करके वो एक छोटे से प्लेट में रख करके मेरा वेट कर रही थी कि
1: अच्छा
0: मैं चंदन को खिलाऊंगी पहले, आई डोंट नो। और मुझे था कि भाई बड़े लोग हैं, अपना केक कट हो रहा है, मैं उधर कहीं स्पॉट बॉय लोग के साथ कहीं बैठ के अपना बैठा था। तो प्रोडक्शन भागा भागा, अरे सर आपको तो ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा भाई, शर्मिला मैम। तो जब मैं वहां गया तो मैम ने वो प्लेट मुझे दी, अपने हाथों से खिलाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब
1: जिन्हें
0: ये,
1: पर्दे पे बचपन से
0: हाँ
1: देखा
0: जी
1: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या बात है.
0: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी,
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल.
0: मैं उनके साथ काम किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
1: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी आपने स्क्रीन
0: हाँ
1: शेयर
0: जी
1: किया
0: हाँ जी हाँ
1: है,
0: जी
1: उनसे क्या कुछ, कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा
0: एक तो
1: किस्सा.
0: हाँ, मुझे एक एक एक सीन याद आ रहा है कि मैं और शांति, एक सीन चल रहा था, वो किचन में थी और फिर वो मेरे पास आती हैं। तो मनोज सर, सीन चल रहा था, मनोज सर वहीं पे चेयर लगा करके बाहर बैठ गए। उस दिन उनका सीन भी नहीं था, तो मुझे लगा यार क्यों बैठे हुए हैं ये, भाई मैं नया एक्टर हूँ, मैं मतलब इनसिक्योर हो जाऊंगा मैं, मतलब मुझे डर लग रहा था उनको देख के, कि
1: जी
0: मैं जिनको भाई जो इतने कमाल के एक्टर हैं उनके सामने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं प्लीज आप चले जाओ, मेरे मन में ये चल रहा था।
1: अच्छा
0: और किसी तरह वो सीन बहुत अच्छा हो गया। और फिर जब सीन खत्म हुआ तो सर आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू कहाँ से है? मैंने कहा सर मैं तो बिहार से हूँ। अरे बहुत सही, या थिएटर करते हो? मैंने कहा जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और उन्होंने ऐसे पीठ पे एक बार ऐसे थपथपा के वो चले गए। फिर तो हमारा पहला उनसे जो हम कह सकते हैं मुलाकात, इस तरह से हुआ मनोज सर के साथ मेरा। जी
1: यहाँ पर आपकी पसंद का गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप?
0: इस वक्त मैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहता हूँ।

0: इतनी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ।
1: हाँ जी,
0: और अब आते हैं हम चंपारण मटन करके
1: क्या बात
0: एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: है। FTI की फिल्म है ये,
0: हाँ
1: रंजन इसके डायरेक्टर हैं, और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बज्जिका में बनी है। लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी, मैथिली है ना, लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ऐसा
0: जी।
1: नहीं है। भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक कहावत है बिहार में कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे बानी, है ना, मतलब
0: तीन
1: हर,
0: कोस पे भाषा
1: हाँ जी हाँ जी
0: बोली बदलती
1: हाँ
0: है।
1: जी। और बज्जिका मेरी मातृभाषा है, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे घर में आज भी जब अगर आपके सामने मेरा फोन आ जाए तो मैं अपनी माता जी से, पिताजी से बज्जिका में ही बात करूंगा।
0: अच्छा,
1: तो इस भाषा में अगर मुझे मिले फिल्म करने के लिए तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और ये FTI की फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म इन लोगों ने बनाई। हालांकि मैं उस समय लगातार शूट चल रहा था तो 15 दिन का एक गैप था, मैंने कहा इस बीच ये फिल्म हम शूट करेंगे, स्टूडेंट फिल्म है, मजे मजे में मैं चला गया था। चूंकि एक आदत होती है ना कि आप OTT के लिए काम कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो, और अचानक से एक स्टूडेंट फिल्म करने के लिए चले जाते हो जहाँ पे बहुत सारी चीज, ना आपको होटल अच्छा मिलेगा, ना वैनिटी मिलेगी
0: एक
1: कोई,
0: अलग तरह का अनुभव।
1: हाँ जी। बट मैं FTI इसलिए चला गया था इस फिल्म को करने के लिए, उसके दो कारण थे। पहला कि थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेक चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ उसे मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे कुछ मजे करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि FTI में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था, मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं, तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाएं, क्योंकि मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था कंटेंट राइटर, तो मैं सोचा कि यहाँ पर भी राइटिंग करके यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए।

0: जाएगा और फिर मैं पूरे दिन एक्टिंग वाले स्टूडेंट के साथ बैठा रहूंगा, उन्हीं के क्लास में बैठा रहूंगा, थोड़ी भगा देंगे क्लासरूम से, बैठूंगा वही एक्टिंग सीखता रहूंगा। बट उस समय मेरा वेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछी तो अच्छा ही हुआ क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं, तो बेहतर है कि, तो ये दो कारण थे। और बड़ी अच्छी फिल्म उन लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से बहुत प्यार से हमने ये शूट किया और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने। बट ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि ये
1: अच्छा
0: फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाएगी और फाइनल राउंड से बाहर हो जाएगी। कहाँ, हम लोग गांव देहात में छोटे छोटे नाटक करते थे, ऑस्कर के लिए हमारी फिल्म नॉमिनेट हो जाएगी ये किसने सोचा था।
1: बिल्कुल
0: बट ठीक है, विधाता को जो मंजूर है अपन उस पथ पे चल रहे हैं।
1: हाँ, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म गई है।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ ही आरजे बस्तर
0: हाँ
1: फिल्म,
0: जी, हाँ
1: उसके बारे में भी कुछ बताए, वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई है।
0: बिल्कुल,
1: एक तरफ ये पंचायत जो मासेस के लिए
0: हाँ
1: है, और
0: जी,
1: एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दोनों में काम करने का फर्क कितना है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है मैम ये। मैं इस तरह की फिल्म इसलिए करता हूं ना, इससे मुझे सुकून और बहुत शांति मिलती है,
1: अच्छा
0: बहुत प्यार मिलता है। आरजे बस्तर, मैं बस्तर में गया शूट करने के लिए, एकदम बिहर जंगल में, चारों तरफ धान की खेती है, और बस्तर बहुत खूबसूरत जगह। जितना भी हम लोग बाहर सुनते हैं कि बस्तर में ये, बस्तर में पूरा बस्तर लाल रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई भय नहीं, बहुत ही सपोर्टिव लोग और बहुत प्यारे लोग। मैं पहली बार जीवन में आदिवासी भाइयों से मिला, इतना खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है कि जान निकाल के रख देंगे आपके स्वागत के लिए।
1: अच्छा
0: तो जब आरजे बस्तर में शूट कर रहा था, तो एक तो कहानी बड़ी अच्छी, मनीष मानिकपुरी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर, वो आदिवासी लड़की की कहानी है जो रायपुर में काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, और उसको एक लड़की से प्यार है, और अपने प्यार के खातिर वो किस तरह से किस हद तक जाता है। और चूंकि आदिवासी में ना, वहाँ महिलाओं पुरुष में कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो सब एक समान है, तो वहाँ की महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, सारे घर में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वही लेती हैं। तो इस फिल्म में भी यही है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका ये है। अच्छा, उनको भी आरजे बनना है
1: अच्छा
0: और मैं पीछे पीछे हूँ, उनका कंधा थामे हूँ कि आपको जो बनना है बनो, मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। और अपने मोहब्बत के लिए उसका जो कैरेक्टर है रमेश, वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। बहुत बहुत प्यारी कहानी।
1: चलिए, यहां पर आपके पसंद का एक गीत हम सुनवा देंगे अपने श्रोताओं को।
0: हाँ जी, हाँ जी।

0: अभी हाल फिलहाल आपकी फिल्म आई गांधारी और आखिरी राइड,
1: हाँ जी हाँ
0: ये कुछ
1: जी
0: अलग हटके रोल है जो अब तक आपने किया है,
1: हाँ जी
0: क्या अलग है, कैसा अनुभव रहा?
1: गांधारी तो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैंने इनको इनका काम जोरम में देख रखा है, और जैसा मैं चाहता था वैसी फिल्म बनी नहीं। और गांधारी करने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, है ना, तो मुझे लगा एक बेबी स्टेप है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए।
0: एक कदम है वो बस.
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो इसीलिए मैंने वो फिल्म करी। बट ठीक है, हमारा काम सिर्फ अभिनय करना होता है, जैसे ही हमारा रैपअप होता है खत्म हो जाता है सब कुछ कट के बाद, है ना। बाकी ये फिल्म एडिट टेबल पे फिर से फाइनल बनती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं। मेरे हिसाब से गांधारी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और आखिरी राइड वो भी बहुत मेरे दिल के करीब वाली फिल्म है, इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी है इसकी, और अनुराग कश्यप सर ने इनको इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे याद है कि ये फिल्म भी मैं कहीं और, मेरा शूट था पहाड़ पे किसी और दूसरे फिल्म को लेकर के, लेकिन डेट नहीं मैनेज हो रहा था, मतलब क्लैश हो रहा है डेट, तो मैंने उस फिल्म को छोड़ के आखिरी राइड करना पसंद किया जिसमें बिल्कुल भी बजट नहीं था, बट मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे अपने पसंद का काम कर सकता हूँ, मेरे लिए अब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी कहानी इंपॉर्टेंट है।
0: अपनी पसंद रख सकते हैं अब आप काम
1: बिल्कुल
0: में.
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल.
1: या
0: और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप के मन में है कि ये तो मुझे करना है, इस तरह का अगर कुछ किरदार है चाहते हैं? नेगेटिव शेड तो आपने कहा कि नेगेटिव, कोई ऐसा आइडल कि इस तरह का किरदार तो मुझे पर्दे पे उतारना है जब कभी मौका मिले.
1: बिल्कुल ऐसे तो बतौर अभिनेता अभी तो मतलब तो मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत नया हूँ, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर करने हैं, बहुत सारे चीज़ों को जानना है समझना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ने एक बहुत गंभीर अभिनेता है जो आना बाकी है।
0: सीरियस रोल.
1: हाँ जी हाँ जी चूंकि कॉमेडी हो या बाकी चीज़ें हो वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संजीदा है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डिनरो और अल पचिनो की फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, इसमें चोर और पुलिस की कहानी है, और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं
0: जी.
1: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूँ कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने इस करियर में। इतनी ही स्क्रिप्ट को जज्ब करके, एक एक लाइन को महसूस करके, उस गंभीरता के साथ मैं अपने कैरेक्टर को करूं, मैं ऐसा चाहता हूं।
0: हम भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद का किरदार, कैरेक्टर, रोल आपको मिले, संजीदा रोल भी
1: बस
0: मिले, और हम उसमें भी आपको देखें.
1: बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को हमेशा सरप्राइज करता रहूंगा।

0: बिल्कुल। जाते जाते हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक छोटे जगह से आए हैं और यहाँ पर आके आपने अपना मकाम बनाया है। तो जो उभरते कलाकार आते हैं, दो तरह के होते हैं। कई बार प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभिनय में ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है नहीं, पूरी शिद्दत से आते हैं लेकिन थक हार भी जाते हैं, वापस लौट भी जाते हैं। तो आपके ख्याल से आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, यहाँ पर टिके रहना, अपना मकाम बनाना, क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहली बात कि दूसरों की बात आप ना सुने। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके अंदर एक बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, आप मुंबई चले जाओ या इस फील्ड में जाओ, मत सुनो किसी की बात। आप अपने आप से पूछो, क्या वो एक्स फैक्टर है आपके पास? क्या वो हुक पॉइंट है आपके पास जिसकी वजह से आप मुंबई में रह सकते हो या इस फील्ड में पूरी जिंदगी अपने आप को दे सकते हो? ये बहुत जरूरी है खुद से पूछना। दूसरे की बातों पे बिल्कुल भी आप मत जाइए। एक बात और कि कभी भी ग्लैमर और मुंबई में ये पैसा, शोहरत, नाम, ये सब देख कर मत आइए। ये आर्ट है। अगर अपने आप को इस आर्ट में समर्पित कर सकते हो तो आओ। बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो गलती यही करते हैं, उनको चाहिए ग्लैमर, उनको चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, बट वो आर्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, और वो अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं मुंबई में। एक ऐसा ये एज है, ऐसा समय जिस वक्त आपको आपके घर वालों के लिए देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बजाय आप यहां पे अपना समय एक तरह से बर्बाद ही करें, क्योंकि आपने देखा नहीं खुद को, जाना समझा नहीं,
0: जी
1: है ना। और मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी है कि दोस्त, सफलता असफलता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना। और मुझे ये लगता है कि देख, जिंदगी एक ही मिली है। जिंदगी है तो ये सारे गोल हैं, सारे एम हैं, आपके जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने आप को जानिए, समझिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर सच में आपके अंदर ये काबिलियत है कि कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुंबई या जहां कहीं भी हो इस फील्ड में आ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट की बड़ी भारी कमी है मुंबई में।
0: बिल्कुल
1: आपका आना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट आए, चाहे वो किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, पेंटर हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, जो भी हो।
0: जी।
1: अगर आप कमाल के हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत जरूरत है।
0: ये बहुत ही सुंदर सलाह दी आपने। और चंदन जी, आपने अपने एक्टिंग का सफर तो हमारे साथ साझा किया ही, साथ ही निजी अनुभव और बड़ी ईमानदारी से वो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है, जो हमें बहुत अच्छी लगी है। और पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें बहुत ही वो प्यारी प्यारी सलाह मिली है आपकी
1: जी
0: तरफ से। आपके जो भी भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी बातचीत के लिए।
1: शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ,
0: क्या कहना
1: और
0: चाहेंगे?
1: यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे विविध भारती के ऑफिस में बुलाया है। और यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि बरसों का एक देखा हुआ, एक बालमन में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, विविध भारती के इन दीवारों को देख करके, इन माइक, ये लाइट, ये सब कुछ देख करके। आपको शायद यकीन ना हो कि जब 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो सीधे मैं घर आता था, अपना रेडियो सेट उठाता था, सखी सहेली सुनता था, उसके बाद पिटारा, और फिर रात्रि सेवा में मैं जब जयमाला से शुरू करता था तो गुलदस्ता होते हुए फिर गजल वाले प्रोग्राम, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग जाती थीं और कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे दादा, कभी मेरी बहन आकर के बंद करते थे रेडियो, या कई बार सुबह तक वो रेडियो चलता रहता था।
0: जी
1: मुझे याद है कि मैं रेडियो से इस कदर स्नेह रखता था बचपन में कि मेरे गली में, आंगन के बगल में गली था, अमरुद का पेड़ हुआ करता था, उसमें मैं कई बार उस अमरूद के पेड़ पे अपने ट्रांजिस्टर को लेकर के चढ़ जाता था, और ऊपर ही कहीं पेड़ के तने में बांध करके रेडियो चल रहा होता था और मैं अमरूद वही नमक लेके खाता रहता था,
0: क्या बात
1: है
0: है।
1: ना। तो रेडियो इस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी सूट पे जाता हूँ या किचन में होता हूँ या घर में, कहीं भी रेडियो मेरे घर के किसी न किसी एक कोने में बज रहा होता है।

0: रेडियो मुझे लगता है मेरा बचपन का दोस्त है,
1: बिल्कुल
0: एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है।
1: बिल्कुल, हमेशा साथ ही बनकर,
0: बिल्कुल,
1: क्या बात
0: रेडियो
1: है,
0: सिर्फ इस देश की धड़कन ही नहीं है, ये मेरा भी धड़कन है।
1: क्या बात है, बहुत
0: यस,
1: बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।

ये थी जानी मानी अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के

दिन भर की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बाद यही शाम दोस्तों के साथ बीते तो थकान भी मुस्कान में बदल जाती है। दोस्तों की हंसी, पुरानी यादें, बेफिक्र बातें और एक दूसरे का साथ जीवन को नई ऊर्जा से भर देता है। ऐसी शाम केवल समय बिताने का माध्यम नहीं होती बल्कि रिश्तों को और गहरा बनाने का अवसर बन जाती है। सच्चे दोस्त जीवन की हर खुशी को दोगुना और हर गम को आधा कर देते हैं। सच तो यह है दोस्तों कि जहां अपनापन, विश्वास और दोस्ती की महक हो वहां हर शाम यादगार बन जाती है और जीवन खूबसूरत लगने लगता है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। आज मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री।

तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ जीवन जितना सुंदर है उतना ही अनिश्चित भी। कभी अचानक आई बाढ़, कभी भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन या फिर सूखा, ये आपदाएं न केवल हमारे घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि कई परिवारों की खुशियां और जीवन भर की मेहनत भी छीन लेती हैं। और ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या हम आपदा आने के बाद ही जागेंगे या उससे पहले ही खुद को सुरक्षित बनाने की तैयारी करेंगे। दोस्तों, प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को आपदाओं के खतरों के प्रति जागरूक करना और साथ ही साथ यह समझाना भी है कि सही जानकारी, समय पर तैयारी और सामूहिक प्रयासों से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि आपदा को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, भूकंप के समय सुरक्षित स्थान पर जाना, बाढ़ की चेतावनी मिलते ही सतर्क हो जाना, आपातकालीन नंबरों की जानकारी रखना और घर में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, इन तमाम छोटी छोटी बातें बड़े संकट के समय जीवन रक्षक साबित हो सकती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, की नदियों के प्राकृतिक रास्तों पर अतिक्रमण रोकना बेहद जरूरी है। पेड़ लगाएं, जल निकासी की व्यवस्था को सुधारें और पर्यावरण को संरक्षित करें, ये सभी आपदा के जोखिम को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज के समय में जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कहीं अत्यधिक बारिश के बाढ़ आ रही है तो कहीं लंबे समय तक बारिश न होने से सूखे की स्थिति बन रही है। और ऐसे में सरकार के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लें, अफवाहों से बचें और सही सूचना दूसरों तक पहुंचाएं, लेकिन साथ ही इसकी सत्यता जांच कर, क्योंकि ये सभी हमारी नागरिक जिम्मेदारी है।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक।

0: Every style.
1: Only on AIR Obra.
2: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: दोस्तों, कार्यक्रम में अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। दोस्तों, इस क्षेत्र में युवा अपने गांव, मोहल्ले और स्कूलों में जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं और साथ ही साथ आपातकालीन अभ्यास में भाग ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बुजुर्गों, बच्चों और साथ ही साथ दिव्यांगजनों की सहायता कर सकते हैं। आपदा के समय केवल अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी सच्ची मानवता है। तो दोस्तों, आइए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम संकल्प लें कि आपदा को केवल एक प्राकृतिक घटना समझकर नजरअंदाज नहीं करेंगे बल्कि उससे निपटने की तैयारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि समझदारी इसी में है कि संकट आने पर घबराने के बजाय हम तैयार रहें। याद रखिए, आपदा को हमेशा रोकना संभव नहीं लेकिन जागरूकता, तैयारी और एकजुटता से उसके नुकसान को कम करना जरूर संभव है।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। दोस्तों कभी कभी हम समाज में बड़े बदलाव की कल्पना तो करते हैं, लेकिन मन ही मन यह सोचकर रुक जाते हैं कि आखिर अकेला व्यक्ति क्या ही कर सकता है। व्यवस्था बदलना, लोगों की सोच बदलना, समाज में बुराइयां मिटाना या देश को बेहतर बनाना, ये सब तो बहुत बड़े काम हैं, लेकिन सच यही है कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही होकर गुजरती है। जिस तरह एक एक बूंद मिलकर नदी बनती है, उसी तरह हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां मिलकर एक बेहतर समाज की नींव रखती है। दोस्तों जरा अपने आसपास नजर डालिए, घर में पानी और बिजली की बचत करना, परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना, बच्चों की बात ध्यान से सुनना और घर के कामों में हाथ बटाना, ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं से एक संवेदनशील और

जिम्मेदार परिवार बनता है। जब परिवार में सम्मान, सहयोग और बराबरी का माहौल होता है तो वही संस्कार आगे चलकर समाज का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी छोटी सी पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ने में मदद करना, किताबें साझा करना या किसी विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ाना उसके भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसी तरह कार्य स्थल पर ईमानदारी से काम करना, सहकर्मियों का सम्मान करना और अपने अधिकारों के साथ दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखना एक बेहतर कार्य संस्कृति तैयार करता है। दोस्तों, सामाजिक जीवन में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना, कचरा सही जगह डालना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, जरूरतमंद की मदद करना और जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करना, ये सभी जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। बदलाव केवल भाषण देने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सही व्यवहार को अपनाते हैं। दोस्तों, आज डिजिटल दुनिया में भी हमारी जिम्मेदारियां कम नहीं है। किसी खबर को बिना आगे जांचे बिना न बढ़ाना, सोशल मीडिया पर किसी का अपमान न करना, दूसरों की निजता का सम्मान करना और झूठी सूचनाओं से बचना भी सामाजिक जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी एक गलत पोस्ट किसी के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती है, जबकि हमारी एक सकारात्मक पहल किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। बातों को अभी देते हैं थोड़ा सा विराम और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
4: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।
7: वेलकम बैक दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। हमें कोशिश करके एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके ना के बराबर करें और कोशिश करें

कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें और आसपास स्वच्छता बनाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों के प्रति ये जो सौगात है हम उन्हें स्वच्छता के साथ सौंप सकें। इसी तरह बाजार में ईमानदारी, राजनीति में जवाबदेही, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और समाज में महिलाओं की गरिमा तथा समान अवसरों का समर्थन करना भी सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह भी है कि जिम्मेदारी केवल दूसरों को समझाने का नाम नहीं बल्कि खुद उदाहरण बनने का नाम है। हम जिस बदलाव की अपेक्षा समाज से करते हैं उसकी शुरुआत अपने व्यवहार से करें, क्योंकि समाज कोई अलग इकाई नहीं है, समाज हम सबसे मिलकर बनता है। तो कोशिश खुद से शुरू करनी चाहिए। याद रखिए, बदलाव के लिए हर बार किसी बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं होती। कभी किसी की मदद के लिए बढ़ा हाथ, कभी सच के पक्ष में उठी आवाज और कभी अपनी गलती सुधारने का साहस भी बदलाव की शुरुआत बन जाता है। जब हर व्यक्ति अपनी छोटी सी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने लगेगा, तब एक बेहतर, संवेदनशील और समाज समावेशी समाज अपने आप आकार लेने लगेगा। बातों को देते हैं अब विराम और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में चलते चलते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें, जिसका अर्थ है कि बड़ी सफलता और सम्मान पाने के लिए पहले कड़ी मेहनत पूरे लगन के साथ करनी होती है। तो चलिए अब इसी विचार के साथ अपनी रेडियो साथी रानी राष्ट्रीय को कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घरनी।

सब बहिन लोगन के राम राम और संगे संगे जय माता दी। और बतावें बहिन लोगन का हाल समाचार बाप सब लोगन का। उम्मीद बा कि आप सब लोगन स्वस्थ और मस्त हुई हैं। बहिन देखे शारदीय नवरात्रन के पावन पर्व के में चारों ओर माई के भक्ति के रंग चढ़ल बा। कहीं कलश स्थापना होत बा तो कहीं माई के जागरण में भक्ति के रस बरसाता, कहीं दान दक्षिणा दिहल जात बा तो कहीं कन्या लोगन के पूजन के तैयारी होत बा। हर केहू अपन अपन तरीका से जगदम्बा मैया के प्रसन्न करे में लागल बा। बाकी एगो बात हमने के दिल में से जरूर समझे के चाहिए, जे माई के नौ रूप के पूजा करेला वो बेटी के सम्मान भी करे। काहे कि बेटी खाली एगो रिश्ता नहीं है, घर के सबसे अनमोल एहसास है। बेटी के मुस्कुरा के घर आंगन में खुशियन के फुलवारी खिल जाला। बेटी के पायल के छनछन से घर के कोना कोना गूंज उठेला। ओकर मीठ बोल और खिलखिलाहट से हर दुख दर्द दूर भाग जाला। ऊ बाबूजी के लाडली, माई के सहेली और भाई के दुलारी हैं। घर के हर छोट बड़ खुशी में उनकर मौजूदगी चार चांद लगा देवला। बहन बेटी अपन स्नेह से टूटल मन के भी जोड़ देवलिन। ओकरा बिना घर के दुलार त रहेला, बकित रौनक अधूरा लागेला। बेटी के सपना के पंख दी, ओकरा आगे बढ़े के अवसर दी। और काहे कि बेटी के सफलता से पूरा परिवार के माथा गर्व से ऊंचा हो जाला। बेटी के पायल के छन छन से घर के कोना कोना गूंज उठेला। नवरातन में जब हमनी नन्ही की कन्या के गोड़ धोके पूजीला तो ओ घरी ई संकल्प भी ली कि ओकर सम्मान जीवन भर करब। खाली अष्टमी नवमी के दिन नहीं, हर दिन ओकरा अधिकार के रक्षा करब। बेटा बेटी में भेदभाव के दीवार अब हमनी के ही गिरावे के पड़ी। बेटी के पढ़ाई, सुरक्षा और आत्मविश्वास का पूरा ध्यान देवे के पड़ी। ओकरा के बोझ ना अपन परिवार के शक्ति समझे के है। हम लोगन के है जे घर में बेटी के इज्जत होला ओहिजा देखा संस्कार के दीप जरत रहेला। और आज समाज बेटी के आगे बढ़ावला, ओ समाज के भविष्य उज्जवल होला। आई ए नवरातन में माई दुर्गा से एगो अरदास करी कि हर बेटी के जिंदगी में सुख, सम्मान, सुरक्षा और सफलता का उजियार होके। हर माई बाप के अपन बेटी पर भरोसा और ओकरा सपना पे ना झुके। हर घर में बेटी का जन्म पर खुशियन के बाजा बाजे। और कौनो बेटी के सपना गरीबी, भेदभाव बा डर से ना टूटे। हर बेटी अपन मेहनत से अपन परिवार और देश के नाम रोशन करे। और जय माता दी के जयकारा के साथ बेटी के सम्मान के संकल्प उठाई। और कहें कि बेटी देखा घर का रौनक है और देश का उज्जवल भविष्य। यही बात पे हम तक कहा ना कि जब बेटी इनका बात हम लोग करते हैं तो एक देवी माई की गीत से अपने कार्यक्रम का शुरुआत हम लोग शुरू करल जाए। तो संजू सिंह बहन के द्वारा गावल एक थे देवी गीत है, तो बिना देर के लिए आवे इनकर गीत सुनल जाए।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 05445।

0: 1977100, मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
2: वही लोगन देखे कितना बढ़िया हम लोगन गीत सुनल गईल, और गीत सुने के बाद अब फिर आवे बात बत कही करल जाए। वही लोगन देखे आज पूरा दुनिया में तरह तरह के संकट आपदा का चुनौती बनल बा। कहीं बाढ़ के कहर बा तो कहीं भूकंप, तो कहीं तूफान के मार बा, कहीं सूखा से लोग परेशान बा, तो कहीं आग या दुर्घटना के डर बा। ऐसा समय में आपदा से बचे के तैयारी बहुत जरूरी होके के चाहिए। ऐसे भारतवर्ष में त्यौहार के उमंग और खुशियन के माहौल देखे के मिल रहल बा। गांव गांव शहर शहर लोग भक्ति प्रेम या आपसी भाईचारा में जुटल बा। शारदीय नवरात्र का माई दुर्गा के जयकारा के से वातावरण गूंज रहल बा। लोग माई के आशीर्वाद के साथ सुख शांति या सुरक्षा के कामना भी कर रहल बा। आज पूरा दुनिया में देखे तरह तरह का संकट आपदा का चुनौती बनल बा। कहीं बाढ़ के कहर बा तो कहीं भूकंप के, तो कहीं तूफान के मार बा। कहीं सूखा से लोग परेशान बा, तो कहीं आग दुर्घटना के डर बा। ऐसा समय पे आपदा से बचे का तैयारी बहुत जरूरी होके के चाहिए। और हम तो कहब ना कि हमनी के विश्वास बा कि माई दुर्गा के कृपा से मन में हिम्मत और भरोसा हम लोगों के होए के चाहिए। और देखा माई के आशीर्वाद हमनी के कठिन घड़ी में हौसला देवला। बाकी प्राकृतिक आपदा से बचे खातिर समझदारी और तैयारी भी बहुत जरूरी होखेला। खाली प्रार्थना ना, सही जानकारी और सही समय पर कदम उठावल भी बहुत जरूरी होखेला। बाढ़ के चेतावनी मिले तो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए के चाहिए। भूकंप आवे तो मजबूत मेज के नीचे झुक के अपन सिर के बचाई। आग लगे तो घबराई मत, सुरक्षित रास्ता से बाहर निकले। हमन के याद रखें कि रखे के चाहिए कि सतर्कता और तैयारी के कई गो अनमोल जिंदगी बचावल जा सकेला। अब देखें आज के दिन यानी कि 13 अक्टूबर के मनावल जाए वाला अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हमनी के आपदा के खतरा घटावे और जन जीवन के बचावे के संदेश देला। इस दिवस हमने के सिखावे ला कि आप जोन आपदा आवे से पहले तैयार रहे के चाहे। घर के सदस्यन के आप जोन आपातकालीन योजना के जानकारी जरूर रखे के चाहे। जरूरी कागजात, दवाई, पानी, टार्च और प्राथमिक उपचार के सामान भी रखें। बच्चा, बुजुर्ग या दिव्यांग लोगों के सुरक्षा पर खास ध्यान देवे के चाहे। अफवाह और भरोसा अफवाह जोन फैला ला ऊपर हम लोगों के बिल्कुल भी भरोसा नहीं करे के चाहे। प्रशासन के अधिकारिक सूचना पर ध्यान दें और काहे कि जागरूक समाज ही आपदा के नुकसान कम करे में सक्षम होला। आई यह पावन नवरात्र में भक्ति के साथ सुरक्षा के संकल्प भी लें। आपन परिवार, पड़ोसी और समाज के आपदा से बचे का उपाय बताएं। प्रकृति के सम्मान करें और पर्यावरण के रक्षा में आपन योगदान दें। नदी नाला के रास्ता में कचरा मत फेंकें और अजल निकासी के साफ रखें। आपदा के घड़ी में एक दूसरा के मदद करें और मानवता के धर्म निभाएं। माई दुर्गा से प्रार्थना बा कि हर घर में सुख शांति और सुरक्षा बनल रहे। भारतवर्ष के हर नागरिक जागरूक सतर्क आपदा से निपटे खातिर तैयार रहे। जय माता दी, सुरक्षित जीवन, सजग समाज और आपदा मुक्त भविष्य की ओर बढ़िए। यही बात के साथ हम तो कहब कि अपने कार्यक्रम का हम लोगों आगे जानकारी की ओर बढ़ल जाए। और आज अपने कार्यक्रम में जानकारी हम लोगों लेके जुटल गई बा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण हेतु जागरूकता। योगेंद्र बहादुर जी हवा जवन की उनसे मुनई भैया के भेंट मुलाकात भेल बा। हम तो कहत है ना कि बिना देर के लिए आवे इनकर जानकारी सुनल जाए।
3: आज 13 अक्टूबर और आज के दिन विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस मनावल जाला। ये अवसर पर जिला मुख्यालय सोनभद्र पर हमार मुलाकात श्री योगेंद्र बहादुर सिंह साहब से होएगा। और आज आपसे हम लोगन जानब कि विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस का है और एकरे संबंध में जो विविध जानकारी बा ओके हम लोग हासिल करब। ये बतावें कि विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस का संबंध का है।
4: ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में
3: जी
4: विभिन्न देशों ने जो एक प्रयास अपने अपने देशों में किया
3: जी
4: आपदा को कम करने के लिए, उस आपदा कम करने के जो प्रयास किए गए उसको पूरे विश्व में एक जैसे एक देश अगर कोई आपदा कम करने का प्रयास करता है तो उसको दूसरा देश भी फॉलो करे और उससे अपने देश में आपदा को कम करने का प्रयास करे। इन चीजों को लेकर के एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक दिवस निर्धारित किया इसके लिए 13 अक्टूबर, और उसमें लोगों में एक जागरूकता पैदा होती है। जैसे एक देश कोई अच्छा

0: है तो दूसरा देश भेड़ा लेकर के अपने देश में भी उस तरह से आपदनीकरण का कार्य करता है। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ही 13 अक्टूबर 30 वर्षों से आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में घोषित कर रखा है।
1: अच्छा, ये आपदा न्यूनीकरण बदे जोनी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनावल जाता, एक थोड़ा सा इतिहास बताइए आप।
0: देखिए, इसमें इतिहास के बारे में मैं बताऊं कि अक्टूबर में दूसरे बुधवार को
1: जी
0: आपदा का प्रभाव कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि हर दूसरे बुधवार को, अक्टूबर के दूसरे बुधवार को
1: जी
0: हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो आपदा को कम करने के लिए करेंगे, और इस बात का एक निर्णय लिया था। बाद में धीरे धीरे एक क्लॉज संशोधन किया गया 13 अक्टूबर को
1: जी
0: 13 अक्टूबर को उन्होंने संशोधन किया राष्ट्र महासभा ने, जिसको आप जानते हैं UNO होता है
1: जी,
0: जो पूरे विश्व में लोगों को जागृत करने के लिए और सारी चीजों के लिए नियंत्रित करने के लिए, उसमें आपदा भी एक चीज है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक बड़ा महत्व है। तो उस महासभा ने 13 अक्टूबर को विश्व आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। वास्तव में जो पहले प्रयास दूसरे बुधवार को चलता था, फिर दूसरा बुधवार अपने में एक निश्चित दिन नहीं है और इसे 13 अक्टूबर ही नियत कर लिया जाए, 30 साल पहले निर्णय लिया गया था
1: जी,
0: उसको फिर अब से तब से हम मनाते चले आ रहे हैं।
1: बिल्कुल। और अपने सोनभद्र में आपदा न्यूनीकरण बदे कौन कौन ऐसा काम होता?
0: देखिए, हमारे यहाँ जो आपदाएं हैं, सबसे बड़ी जो आपदा, सबसे महत्वपूर्ण आपदा है वो आकाशीय विद्युत। आकाशीय विद्युत से हम जान हमारे यहाँ के लोग गवाते हैं, और साथ साथ सर्पदंश भी काफी मात्रा में प्रचलित है
1: जी।
0: सूखा तो एक सामान्य समस्या ही है इस जनपद की, कि अगर पानी थोड़ा कम बरसा तो निश्चित रूप से सूखा आ जाता है। बाकी और भी आपदाएं हैं, अग्निकांड है, अतिवृष्टि है, और ये चीजें तो अपनी समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन ये तीन आपदाएं इस जनपद की मुख्य है: आकाशीय बिजली, सर्पदंश, सर्प अक्सर काट लेते हैं, जंगल झाड़ी बहुत है, और सूखा। सूखा भी सामान्य रूप से अगर ऊपर का जो इलाका है यहाँ पानी कम पाया जाता है, और जैसे ही बरसात कुछ कम होती है हमारे सभी बेल और सारी चीजें सूखने लगते हैं और पानी कम हो जाता है। इसके लिए तीनों चीजों पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आकाशीय बिजली में तो हमने ये देखा कि कहाँ सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं
1: जी जी।
0: उसके हिसाब से पेड़ गांव का निर्देश किया गया, पेड़ में काफी लोग मर जाते थे, पेड़ का पता नहीं भौगोलिक स्थिति जो भी हो, गांव पेड़ ब्रावल तहसील में पड़ता है
1: जी।
0: तो उसमें लाइटनिंग अरेस्टर वहां लगाया गया पर हाई क्षमता का, और तब से पेड़ में घटनाएं बहुत ही कम हो गई है। आकाश साथ साथ सर्पदंश के बारे में भी लोगों को अलर्ट करने के लिए और नॉट टू क्या करें क्या ना करें, इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। आकाशीय बिजली में एक काम और हमने किया कि एक ऐप बनाया, और ऐप बना करके सारे प्रधानों में ये वितरित किया कि इस ऐप के माध्यम से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का लोगों में प्रचार प्रसार हो। ऐप जो है उसमें लाइट की सुविधा, दामिनी ऐप जो है उसमें उसके माध्यम से, दामिनी ऐप के माध्यम से, कि जैसे वो जब पीला रहता है तो थोड़ा समय रहता है 20-25 मिनट गिरने का, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं और अपने घरों की तरफ, अपने बंद जगहों की तरफ भागने लगते हैं। उसमें लाल जब होता है तो लोग तेजी से, मतलब ये होता है कि 10-5 मिनट में ही गिरने वाला है, तो लोग तेजी से अपने स्थान की ओर बढ़ जाते हैं। तो पीला पहले होता है फिर लाल होता है, तो इससे ये आदमी पहले पकड़ लेता है और अपने नजदीक की जगह पे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है।
1: बिल्कुल। सूखा वदे का काम होता अपने जनपद में?
0: देखिए, सूखा भी हमारे जनपद की बड़ी विकट समस्या रही है, और विगत 2-3 साल पहले तो काफी सूखा आया था
1: जी, जी।
0: काफी उसमें बांटना भी पड़ा था, लोगों को खाद्यान्न वगैरह भी बांटने पड़े थे। इधर 2 वर्षों में, 1.5-2 वर्षों में हम लोगों ने एक टंका राजस्थान में ली थी, क्योंकि राजस्थान भी कम पानी का प्रदेश है, तो राजस्थान से एक शिफ्ट किया गया टंका, टंका निर्माण का हम लोगों ने वो किया। और इसमें मनरेगा, जो मनरेगा आप लोगों को पता ही है, मनरेगा के जो माध्यम से टंका का निर्माण कराते हैं, तो मनरेगा के माध्यम से हम अपने 8 ब्लॉकों में 293 टंका का निर्माण कराए। और साथ साथ ही हमारे पास जो एक, चूंकि माइंस का ये जिला है, खनन का जिला है, तो खनन में भी जो पट्टेदार वगैरह होते हैं वो पैसा एक हिस्सा देते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, जिला खनिज निधि
1: जी,
0: उसमें जो पैसा आता है उससे भी हमने 127 कुल 420 टंके निर्माण कराए। टंका बड़ी अच्छी चीज है, टंका में हम किसी भी जो एक गहरा बना करके और उसके ऊपर सीमेंट की चादर लगा देते हैं, और उसमें

0: जो नेचुरल पानी जब बरसता है तो वो पानी रिस रिस के अंदर चला जाता है, उससे उस क्षेत्र है उसको हम पानी जो वाटर रिचार्ज इसको कहते हैं, जमीन के अंदर रिचार्ज सिस्टम डेवलप होता है और वो पानी जब पानी घट जाता है तो वो पानी पीने का भी काम आता है, क्योंकि वो एकदम साफ पानी उसके अंदर जाता है। टंका ठीक एक तरह का बेल ही है, कुआं ही है, लेकिन वो कुआं कुछ स्पेशल रणनीत से बनाया जाता है, पक्का होता है चारों तरफ उसके अंदर भी, और जो पानी जाता है वो भी वो इस तरह से सफाई से अंदर जाता है कि वो एकदम अपने धरती को रिचार्ज करता ही है, साथ ही साथ वो पीने का भी काम आता है।
1: जौन अपने जनपद को लोग भाया और जौन ई आपदा हर समय आवत रहा है तो एक बदे जागरूकता कैसे फैलावल जाए?
0: देखिए, जागरूकता फैलाने में मैंने अभी बताया कि जैसे हम लोग दामिनी ऐप का प्रचार करने के लिए सारे प्रधानों को एक अलग एक ऐप हमने डेवलप किया और उस ऐप के माध्यम से सारे प्रधानों को जोड़ दिया। सारे प्रधानों के माध्यम से चूंकि अब सबके पास जो है एंड्रॉइड सेट है, एंड्रॉइड सेट में लोग अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के माध्यम से वो जो चीजें जानना है उनको कि जैसे किस रंग पे कितनी दूर से आप भागते हैं, मतलब कितना समय लगेगा, 20 मिनट 25 मिनट लगेगा, तो इस तरह से अपना आदमी जल्दी से जल्दी अपने नजदीक के स्थान पर ना और दूसरे के अपने घर पहुंच पाता है तो किसी नजदीक के दूसरे के घर में ही समय ले लेता है और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। जागरूक करने के लिए सभी प्रधानों को हम दामिनी ऐप, जो सबसे बड़ी समस्या तो दामिनी ऐप है। बाकी सूखा के प्रति जागरूक करने में तो हमें यह है कि पानी का कम लोग प्रयोग करें, पानी जो है मतलब सुविधा जितनी अपनी व्यवस्था है, जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें, ज्यादा पानी बर्बाद न करें, तो वो पानी हमारे जमीन के अंदर पड़ा रहेगा तो वो रिचार्ज होता रहेगा और बाकी पानी की कमी नहीं होगी। पानी की कमी से ही सूखा आता है, तो पानी की कमी बचाने के लिए भी हम लोगों ने जागरूकता फैलाने का काम।
1: आज आपसे मुलाकात भइल और इतना बढ़िया जानकारी का बात भइल और जौन ये विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस बा ये अवसर पर आप जानकारी दे लें, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
2: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
5: पहले लोगन देखें कितना बढ़िया जानकारी हम लोगन सुनल जात रहल कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण हेतु जागरूकता ए विषय पर योगेंद्र बहादुर सिंह जी से मुनई भैया के भेंट मुलाकात रहल, बहुत बढ़िया जानकारी रहल, भैया के देवल जे धन्यवाद। लेकिन अब माता के नवरात्रि देवी गीत के साथ संजू सिंह बहन तैयार हैं तो हम लोगन भी देर काहे सुने में, तो चले सुनल जाए।

वही लोगन देखा कितना बढ़िया संजू सिंह अपन गीत सुनौली ना देवी गीत। तो भी संजू सिंह बहन की भी देवल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तब समापन की ओर हम लोगन के कार्यक्रम बढ़त बा, लेकिन चला चलावत आप सब बहन लोगन से एक बात और कहल जाए। बहन लोगन, आप लोगन अपने चेहरा के सुंदर बनावे खातिर आज के नया नया दौर में लोग ब्यूटी पार्लर की तरफ भागला, लेकिन हम लोगन के रसोई में ही ऐसा बहुत चीज़ बा जैसे एक के इस्तेमाल करके अपन चेहरा के अपने बाल के हम लोगन बढ़िया बनावल जा सकेला। चेहरा के देखा साफ सुथरा करे बदे, जैसे चेहरा पे चमक लाए बदे दही बेसन से आप लोगन अपन चेहरा साफ बेदाग कर सकेलन। प्रयोग करे के तरीका है कि एक चम्मच बेसन में एक चम्मच दही और एक चुटकी हल्दी मिला के 15 मिनट तक अपने चेहरा पे लगाए। अगर ऐसा करिए तो आपके चेहरा में जौन थोड़ा बहुत दाग धब्बा रहला वो साफ हो जाए। साथ में देखें बाल अगर आपका झड़त है तो हफ्ता में 2 बार रात में नारियल का तेल गर्म करके जड़ में लगावे से और मालिश करे से भी अपन आपका बाल झड़े से रुकी। और यही बातें के संगे हम तो कहब कि अपन कार्यक्रम यही समेटल जाए। अपने गुलाबो बहन की दें इजाजत, तो सब बहन लोगन के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घटनी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में यानी कि शाम के 6 बजे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।

0: समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 बरिस पूरा कर लेले हमें। उनकर जतरा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र आ लगतारे अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रहली हो। सेवा सुशासन के केंद्र में रख के सरकार बरिस 2047 ले विकसित भारत बनावे बदे लगता रहे कार कर रही हो। समेकित विकास आ सामाजिक सशक्तिकरण की कोशिश लोगिन के जिंदगी में बदलाव ले आ रहल बा। आज वे खास श्रृंखला में चर्चा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश के बढ़त कदम का।
2: 21 दिसंबर 2021 को शुरू हुए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को स्वदेशी स्तर पर विकसित करना था, जिसमें निर्माण पैकेजिंग डिजाइन शामिल थे। इसके संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज की जरूरत मानते हुए कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है।
3: हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है, यानी विकसित भारत के नए टेक हब देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं।
2: गौतम बुद्ध नगर की उद्यमी खुशबू सिंह ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को बल मिला है।
4: स्थानीय स्तर पर चिप्स और उपकरणों का निर्माण होने से उद्यमी को महंगे आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे सप्लाई चेन और भी तेज बनेगी।
2: सेमीकॉन इंडिया के तहत 1.6 लाख करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली में प्रदेश के 68,000 प्रहरियन के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने। यह मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री गांव के प्रहरियन के मानदेय में बढ़ोतरी का घोषणा कैले। वहां के गांव के प्रहरियन आ उनके परिवारन बदे कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का घोषणा कैले।
5: इन ग्राम प्रहरियों को हम लोग एक उनको और उनके परिवार को कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। कैशलेस का मतलब आप जानते हैं ना, यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष ग्राम प्रहरी और उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य के लिए एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी कि कोई अगर बीमार हो गया है तो परिवार के लोगों को फ्री में उपचार की व्यवस्था 5 लाख रुपए की उसको या उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर उनको प्राप्त हो जाएगा।
1: शारदीय नवरात्र के तीसर का दिन ने आज माई दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप को आराधना कैल जा रहा बा। विंध्याचल का माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर, बलरामपुर जिला का देवी पाटन शक्तिपीठ आ वाराणसी के चौक चित्र घंटा गली के भगवती मंदिर के सतही प्रदेश भर के शक्तिपीठन आ देवी मंदिरन में अजुओ भिनही से श्रद्धालु दर्शन पूजन कई रहल हमें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल आ इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी कई देले बा। एगो रिपोर्ट।
6: बोर्ड के सचिव की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं एक साथ 5 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को समाप्त होंगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ होकर 11:45 तक चलेगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 5:15 तक चलेगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारियन के बीच 2,000 रुपया से बेसी के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बादे लागू कैल जाए। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA एगो सोशल मीडिया पोस्ट में बतौलस की यूपीआई आ सेवा संचालन समिति त्योहारी मौसम के ध्यान में रखत आज ये निर्णय लेले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको जानकारी देते आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण और शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा किसानवाणी। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 6:10 पर कार्यक्रम होगा

0: ग्राम जगत। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार से। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा सबरस। सुगम संगीत ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं, रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। आपकी बात ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। और आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।
1: विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मतगणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद रखें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, आइए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार राजेश कुमार, पुत्र भोला, निवासी ग्राम पिंडारी, थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, जो दिनांक 15/5/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, हुलिया सांवला रंग, लंबा चेहरा, इखरा, मजबूत जिस्म, पहनावा सफेद व भूरे रंग की चेकदार जर्सी, नीले रंग का पैंट और लाल हवाई चप्पल। श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार गुंजा कुमारी, पुत्री आलेश कुमार, निवासी ग्राम निमियाटाण, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, ये दिनांक 6/9/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 21 वर्ष, लंबाई 5 फीट, हुलिया गोरा रंग, लंबा चेहरा, इखरा, मजबूत जिस्म, आंख, कान, नाक औसत, पहनावा सफेद रंग का सूट सलवार। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है एफएम 102.7 पर। शाम के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। मुराओ भैया
1: आपों के राम राम भैया। पंचेती की डुगडुगी बजल
0: बिल्कुल। और देखा हमान के पंचेती के ई चर्चा जरूरी बा कि दैनिक कार्य और व्यवहार खातिर जिन बा जागरूकता कितना जरूरी होला।
1: बिल्कुल
0: देखा इसमें मौसम परिवर्तन के दौर चल रहा है भैया।
1: हाँ।
0: जौना के असर जिन बा जनजीवन पर साफ देखे के मिल रहा
1: एकदम एकदम।
0: कुछ समय पहले देखा लगातार बरखा भइला से जिन बा कई जगह

0: जनजीवन जनब एकदम अस्त व्यस्त हो गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था भैया। और आज के जो भाग दौड़ भर जीवन हुए, और ओकरे साथ साथ भैया देखा ये भी देखे कि मिला लगा कि जोन बाकी जब बरखा बुनी भइल रहले तो ये देखे कि मिला लगा कि कई जगह भैया देखा गंदगी जमा पानी भी रहला,
0: बिल्कुल
1: तो ऐसने जोन भी मच्छर मक्खी जल भराव से जोन बाकी पनपेलन ओकरा से कई तरह की बीमारी जोन बाकी होखेला, जैसे डेंगू हो गई, मलेरिया हो गई, डायरिया हो गई, और संचारी रोग फैले के भी संभावना रहला। ऐसने में हमनी के भैया देखा काम करे के चाहिए कि अपने आसपास के जोन भी
0: जगह
1: गंदगी वाला
0: साफ,
1: जगह हुए
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ओकर साफ सफाई करे के चाहिए, और जोन भी सार्वजनिक जगह हुए ओकर भी साफ सफाई नियमित करत रहे के चाहिए
0: बिल्कुल
1: भैया।
0: बिल्कुल। देखा भैया, और देखा आज के भागम भाग जोन जिंदगी बा, शरीर तो थकिए जात बा लेकिन मन भी जोन बा कई बेर एकदम खिन्न और परेशान हो जाला।
1: बिल्कुल
0: देखा इसमें त्योहार का समय चलत बा, नवरात्र बा, और ये मौसम में मन में भक्ति, आस्था और उमंग के संचार तो कुछ हद तक मानसिक शांति जरूर देला,
1: हाँ भैया
0: लेकिन देखा खाली पूजा पाठ से नहीं बल्कि अपना शरीर के भी देखभाल कैल उतने जरूरी बा।
1: बिल्कुल सही कहा हुआ चलो भैया। ऐसे में हम लोगन के रोज सवेरे उठ के भैया देखा टहले के चाहिए, ओकरे साथ साथ हल्का फुल्का व्यायाम हम लोगन के करे के चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: और ताजा हवा में कुछ देर बितावे के चाहिए, और खान पान पर ध्यान देवे के चाहिए। अपने खान पान में भैया देखा हरी साग सब्जी के और पौष्टिक भोजन के शामिल करे के चाहिए, और पर्याप्त पानी पियत रहे के चाहिए, काम के बीच बीच में थोड़ा बहुत आराम हम लोगन के करत रहे के चाहिए, और भरपूर नींद भैया देखा लेवे के चाहिए, और याद रखे के चाहिए कि जब शरीर स्वस्थ रहे तभी भैया देखा मन प्रसन्न रहे, और जिंदगी में हर चुनौती के सामना करे की हिम्मत तभी बढ़ी भैया।
0: बिल्कुल सही बात कहते हैं मोरा भैया। और ऐसे में देखा योग जोन बा खाली शरीर के कसरत नहीं है बल्कि मन के एकाग्र करे और विचार के सकारात्मक बनावे का एगो बढ़िया माध्यम हो।
1: बिल्कुल
0: और रोजाना कुछ समय योग खातिर निकालल अपने शरीर के सक्रिय रखें और दिन भर के थकान से राहत पावे में मददगार हो सकेला।
1: बिल्कुल
0: ऐसे देखा त्योहार के उमंग और संगे संगे जनवा योग का आदत बनावल जाए तो स्वस्थ जीवन की ओर अपन कदम बढ़ावल जा सकेला।
1: बिल्कुल सही कहा हुआ अचलु भैया। कहल भी गेल हुए कि भैया देखा करे योग और रहे निरोग,
0: निरोग
1: निश्चित
0: बिल्कुल।
1: रूप से भैया देखा हम लोगन के तनाव से मुक्त रह के हुए, तो हम लोगन के शांत जगह पर बैठ के भैया देखा ध्यान कैले के जरूरत हुए, और नियमित योग और जोन बाकी हम लोगन करत रहे चाहिए, और मन शांति और एकाग्रता के भैया देखा भावनात्मक संतुलन बनावे में भैया देखा मदद मिला है एकरा से, और योग से पहले अपन शारीरिक क्षमता पर भी ध्यान देवे के चाहिए भैया कि कौन से आसन हम लोगन के करे के चाहिए, और जल्दीबाजी में कोई ऐसा भैया देखा आसन या योग न अपनावे हम लोगन जरा से शारीरिक हानि हो सके
0: हानि
1: भैया।
0: हो सके, बिल्कुल सही कहते हो। और कोनो पुरान बीमारी हो भैया ना तो शरीर, या जैसे शरीर में दर्द हो, कई बार देखा आजकल बुढ़ौतियन का जो जमाना बा उनमें देखा कई लोग ऑपरेशन वाला शरीर बा, तो
1: बिल्कुल
0: उसे जो बा अपन शारीरिक परेशानी बचा करके तब योग करें और विशेषज्ञ भैया लोगों के सलाह जरूर लें। और
1: बिल्कुल
0: हम मान के इहो याद रखे के चाहिए कि देखा स्वस्थ रहे खातिर महंगा साधन से अधिक जरूरी बा नियमित तौर पे अभ्यास करें, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच ये अपने अंदर रखे के पड़ी। और देखा हमन के रोज कुछ समय जनबा योग के देवे के चाहिए, तन के मजबूत बनावे और मन के प्रसन्न रखे के ही चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा हुआ चलो भैया। और इसने भैया देखा रोग मुक्त भैया देखा हम लोगों के रह के हुए, तो निश्चित रूप से भैया देखा लगातार हम लोगों के अपन योग और व्यायाम शामिल करे के चाहिए, और देखा आज हम इन के भैया देखा जोन पंचायती लगल हुए एक राम भैया देखा राजकीय इंटर कॉलेज खैरपुर सोनभद्र व्यायाम शिक्षक महोदय भैया देखा जोन बाकी आज बात बत कही करिये, और हम लोगन भैया देखा उनका जोन भी बात बत कही रही ओके भैया देखा अपने दिनचर्या में शामिल कर भैया।
0: तो हम कुछ कहते कि जैसे ही बात बत कही मन सुनल जाए लेकिन कुछ संदेश भी बा, संदेश सुन करके तभी बात बत कही शुरू कर ले।
1: बिल्कुल भैया
2: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
5: श्रोताओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, योगे नचितस्य पदे नवाचाम मलम शरीरस्य च वैदकेन योपा करोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलिरान पुष्मी। योग से चित्त की, पद से वाणी की, और वैदक से अर्थात औषधि से शरीर की रक्षा

0: जाती है। इसका प्रादुर्भाव करने वाले मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि का मैं हार्दिक अभिवादन करते हुए योगश्चित वृत्ति की बात करना चाहेंगे कि योग से चित्त के विकृति को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज खैरपुर सोनभद्र से श्री अंकित पटेल जी हैं। आप खेल शिक्षक हैं और निश्चित रूप से खेल व्यायाम योग लगभग एक दूसरे के पूरक हैं, तो आज योग और व्यायाम के बारे में बातचीत करेंगे। तो अंकित जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जितने भी तरह के बीमारियां हो रही हैं, चाहे तो शरीर के किसी अंग को पीड़ा पहुंचने से या पाचन संबंधित या मन मस्तिष्क विकृति संबंधित, तो लोग कहता है कि योग करो। तो योग करने के लिए हम कहाँ शुरुआत करें, चूँकि एकाएक कुछ लोग लगते हैं योग करने तो वहाँ पर योग कायदे हो नहीं पाता, शुरू कहाँ से करें?
1: देखिए सर, योग करना है तो सबसे पहले आपको अपना मन को शांत करना पड़ेगा
0: जी।
1: उसके लिए एक अच्छी सी जगह को अपने घर, चाहे घर के बाहर, घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है, आपके छत पे हो सकता है, आपके रूम में हो सकता है, जहाँ भी आपको सुविधा मिल जाए वो वातावरण स्वच्छ होना चाहिए
0: जी। जी,
1: वैसे स्थान का सबसे पहले आप चुनाव कर लीजिए। उस स्थान को चुनाव करने के बाद वहाँ पे अच्छे से एक मैट रख लीजिए जहाँ पे आप योग कर सकते हैं। योग करने से पहले आप अपने बॉडी को स्वच्छ कर लीजिए, जैसे जो नित्य क्रियाएं होती हैं, उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, जितनी भी नित्य क्रियाएं होती हैं उनको पूरा कर लीजिए ताकि आपका बॉडी जो है कि फ्रेश हो सके
0: जी।
1: और योग हमेशा सूर्योदय के समय, सूर्योदय का मतलब कि आप जब सूर्य हल्का निकल रहे हैं उससे पहले, जब बहुत ज्यादा लाइट होती है तब हमें योग नहीं करना चाहिए
0: जी। जी, जी।
1: करने को हम कर सकते हैं, बट हम अगर हम छत पे कर रहे हैं योग
0: जी,
1: तो अगर सूर्य की लाइट बहुत ज्यादा हो गई तो हम उसमें योग करेंगे तो हमारा ध्यान कंसंट्रेशन नहीं बनेगा कभी भी, और क्या होगा कि फिर हमारे बॉडी पर वो हीट आएगा, फिर हमें स्वेटिंग होगा, ये चीजें आएंगी तो हम योग प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाएंगे
0: जी।
1: तो हमें योग क्या करना है कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले जो है कि अपनी नित्य क्रियाएं प्रारंभ करने के बाद हम गए अपने जो हमने स्पेस को चुना हुआ है, वहाँ स्पेस पे जाने के बाद हमें बॉडीज में किस प्रकार की समस्या है या हम बॉडीज में किस प्रकार की आवश्यकता के अनुसार हम योग करना चाहते हैं वो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा
0: जी। जी,
1: उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये कॉमन चीज़ें हैं जो सूर्य नमस्कार बोलते हैं, सब लोग जानते हैं सूर्य नमस्कार के
0: जी, जी, जी।
1: हमें अगर योग प्रारंभ करना है तो उससे पहले हमें सूर्य नमस्कार की क्रियाओं को जो है कि अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए। इन क्रियाओं में जो है कि 12 स्टेप होते हैं जो सूर्य के प्राणायाम से स्टार्ट होता है और प्राणायाम पे आके समाप्त होता है। ये क्रियाएं आपको हर जगह मिल जाएंगी, आप चाहें तो मोबाइल पे, यूट्यूब वगैरह पे इन क्रियाओं को आप देख सकते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए योग को। उसके बाद इन क्रियाओं को कम से कम 5 रिपीटेशंस, 6 रिपीटेशंस, 7 रिपीटेशंस, 8 रिपीटेशंस, 9, 10 ऐसे इस रिपीटेशंस में हमें करना चाहिए।
0: जी।
1: पहले तो हमें कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, वो धीरे धीरे करना चाहिए
0: जी।
1: ऐसा नहीं कि अपने, क्योंकि अगर हम अभी शुरू कर रहे हैं तो हमारी जितनी भी मसल्स होती हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, वो स्थिर होते हैं
0: जी।
1: अचानक से हम करेंगे तो क्या होंगे कि उनमें जो है कि स्ट्रेस आ जाएगा, जिससे लिगामेंट्स प्रॉब्लम हो सकता है, टेंडन प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्लोली स्लोली स्टार्ट करना चाहिए,
0: धीरे धीरे गर्म होकर,
1: जिससे बॉडी हमारी हीट होगी और हमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम जो है कि उसको रिपीटेशंस को बढ़ा सकते हैं और उसमें जो कहते हैं ना लयबद्ध तरीके से, वो लयबद्धता भी हमारे बॉडी के अंदर आना प्रारंभ हो जाएगी। हमें सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है सभी को, सूर्य नमस्कार 10-15 रिपीटेशन या 20 रिपीटेशन अगर वो कर लेता है, रिपीटेशन का मतलब कि वो नंबर 1 से स्टार्ट करता है और नंबर 12 पे आके 1 से लेकर 12 तक करता है, वो एक रिपीटेशन हो गया
0: जी, जी, जी।
1: उसके बाद जो है कि वो उस चीज को कंटिन्यू करते करते 10, 12, 15, 20 कितनी
0: बार कर सकते हैं,
1: लेके जा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड, जितनी बार वो करेगा उसके लिए उतना बेनिफिट होगा। ये सबसे बेस्ट माना गया है
0: सूर्य नमस्कार
1: जी। इसमें बॉडी की टॉप टू बॉटम जो कहते हैं, टॉप टू बॉटम का मतलब ये है कि सर से लेके आपका जो अंगूठा तक का है वो हर एक बॉडी पार्ट उसमें इन्वॉल्व है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए अगर हम सूर्य नमस्कार को अपने डेली लाइफ में लाते हैं तो हर एक तरह के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे।
0: अच्छा, ये योग के क्रम में, एक योग के नियम में अष्टांग योग,
1: पतंजलि के द्वारा ये दिया गया अष्टांग योग है
0: जी।
1: इसमें से 8 उसके पार्ट बताए गए हैं। पहला पार्ट है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा जो है कि धारणा, सातवां ध्यान और आठवां

0: जो है समाधि।
1: जी जी जी,
0: ये आठ भाग में से हमारे जो सामाजिक दायित्व, व्यक्तिगत स्वच्छता, इन सबको ईश्वर की प्राप्ति और जो हमें वैदिक महाकाव्य हैं पुराण, इन सबको पठन पाठन से लेते हुए हर एक पार्ट को जो है कि अच्छे से डिस्क्राइब किया गया
1: जी
0: है।
1: जी,
0: जो ऊपर के चार पांच पार्ट होते हैं जैसे यम हो गया, नियम हो गया, आसन प्राणायाम, ये तो सभी व्यक्ति को करना है।
1: जी जी,
0: उसके बाद प्रत्याहार को भी हम ले सकते हैं कि हमें करना है, वो हर एक व्यक्ति को।
1: तो यम नियम के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में
0: बता। मैं थोड़ा सा धारणा और ध्यान और समाधि के विषय में बोल देता हूँ।
1: जी जी जी,
0: से यम क्या है? यम का मतलब होता है, उसके पांच पार्ट हैं, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
1: जी जी जी,
0: नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान।
1: क्या बात जी।
0: उसके बाद यम नियम हो गया आसन। आसन का मतलब हमारी शरीर की ऐसी अवस्था जहाँ पे हम सुखद अनुभूति करते हैं, उसे हम बोलते हैं आसन। जिस व्यक्ति को लगता है कि हम इस आसन में बैठने पे हमारे शरीर जो है स्थिर है, उसे हम बोलते हैं आसन। उसे ध्यान ये रखना है कि उसकी जो स्पाइनल कार्ड है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमेशा सीधा होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एकदम इरेक्ट होना चाहिए, जिससे आपका बॉडी पोजीशन कभी खराब नहीं होगा।
1: जी जी जी,
0: प्राणायाम का मतलब होता है सांसों पे कंट्रोल करना। जो हम सांस लेते हैं, प्राणधन आयाम, प्राणधन आयाम, प्राण का मतलब जो हम सांस लेते हैं उस पे हमारा कंट्रोल, नियंत्रण चाहिए। जैसे हम सांस लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस को छोड़ देते हैं
1: जल्दी जल्दी।
0: किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि सांस को हम कैसे इनटेक करना है और कैसे उसको रोकना है, कैसे उसको छोड़ना है। हमेशा शास्त्रों में ले लीजिए, चाहे वेदों में ले लीजिए, बोला गया है कि आपको गहरी सांस लेना है।
1: जी,
0: ये नहीं बोला गया कि आपको सांस लेना है और सांस को छोड़ देना है। गहरी सांस की बातें की गई हैं। सांस, गहरी सांस का मतलब कि हमने सांस को लिया और उसी क्रम में रोकना है, और जितने क्रम में हमने सांस को इनटेक किया है
1: उसी
0: क्रम में आपको छोड़ना है।
1: जी,
0: नाक से मुस्कुराते हुए छोड़ दिया। उसके बाद जो है कि ये प्राणायाम हो गया, फिर प्रत्याहार। तो अभी हम यम के विषय में थोड़ा सा ये बता देते हैं कि यम क्या है। उसके पांच बार बताया गया है, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब आपको हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा का मतलब है कि दूसरे जीवों को आपको जो है कि दुख नहीं देना है। वो दुख का मतलब ये हो गया कि आपको शारीरिक दुख भी नहीं देना है और उसको मानसिक दुख
1: भी नहीं देना
0: है। और सत्य मैंने बोला, सत्य का मतलब ये भी नहीं कटु सत्य बोलना है। जैसे किसी गूंगे को आप बोल दीजिए कि तुम गूंगा हो,
1: सत्यम बुरिया,
0: सत्य है लेकिन ये कटु सत्य है, इस सत्य का पालन आपको नहीं करना है। अहिंसा का मतलब जीवों पे आपको दया करना है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं रखना है आपको। और ब्रह्मचर्य का मतलब जो 25 साल का नियम बताया गया है, 25 साल तक पठन पाठन करना है, और जो बताया गया है कि एक विद्यार्थी को कैसे जो है कि पूरा विद्यार्थी जीवन को अपना पालन करना है, उससे ब्रह्मचर्य से मतलब होता है। नियम का मतलब यह है कि जो व्यक्तिगत सफाई, ये तो सामाजिक सफाई की बात हो गया यम में। नियम का मतलब होगा व्यक्तिगत सफाई, जैसे शौच, सुबह उठना है, समय पर उठना है, अपने बॉडीज को जो भी गंदगी आपके मल आपके शरीर में विद्यमान है उसको जो है कि बाहर निकालना है, ब्रश करना है, नहाना, स्नान करना, ये चीजें जो है कि यम में आता है। जो भी कार्य करना है वो समय के अनुसार आपके काम को पूरा कर देना है। शौच हो गया। संतोष का मतलब कि आपके पास जितना भी धन है, जो भी चीजें आपके पास है, आप उसमें जो है कि संतोष रखिए, दूसरे को धन को देख के लालच मत करिए। पहला शौच हो गया, दूसरा संतोष हो गया। तप, तप का मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं उस पे जो है कि आप स्थिर रहिए।
1: जी जी।
0: स्वाध्याय का मतलब ये हो गया कि आप जो है कि ईश्वर, ईश्वर की जो प्राप्ति है, ईश्वर का जो मंत्र है, ईश्वर का जो पूजा पाठ हो रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इनसे मतलब होता है। ईश्वर परिधान का मतलब कि आप किसी न किसी ईश्वर को जो है कि ग्रहण कर लीजिए और उनके जो है कि पूजा पाठ करके आप उसका जो है कि अपने ऊपर धारण कर लीजिए, इससे मतलब होता है। तो ये हमारे यम हो गए और नियम हो गए। ये
1: तो चलते चलाते और कुछ क्या लोगों से कहना चाहेंगे?
0: जो हमारे गांव के जो रूरल एरिया है वो तो जो है कि स्पोर्ट्स के मैदान में जाकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके अपने फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को कर ले, पूरा कर पा रहे हैं। बकर जो सिटी के लोग हैं, जो एक 4x4 के कमरे में आए, 3BHK, 2BHK, 1BHK में रह रहे हैं, तो उन्हें ग्राउंड में जाने का प्रॉपर मौका नहीं मिलता। तो वो चाहे तो योग के माध्यम से अपनी फिजिकल, मेंटल, इस डेवलपमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। ये चाहे स्पोर्ट्स है या फिर योग है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल, ये चार डेवलपमेंट हमारे दोनों से अच्छे ढंग से होते हैं।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, देखें, बातचीत हो रही थी योग के विषय में। कम स्थान में भी हम स्वस्थ रह सकते हैं और नियमितता पर ध्यान देते हुए शेष सभी यम नियम आसन प्राणायाम की बात कही गई जो अष्टांग योग के बारे में हम

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मुराव भैया,
2: हाँ चलो भैया,
1: देखा अभी हम हन जनबा स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत बढ़िया जानकारी हमारे सुनत रही संदेश से पहले कि योगासन में सूर्य नमस्कार का महत्व भाई स्वास्थ्य रखे बदे योग जिसे महत्व होला योग का वैसे ही देखा अपने किसान भाई लोग के खातिर भी जनबा अपन आमदनी बढ़ावल भी बहुत जरूरी होला।
2: बिल्कुल भैया, निश्चित रूप से सही कहा हुआ और हम लोगों के खेती बाड़ी जो बाकी काम हुए करना और ओकरे साथ साथ भी देखा ये देखा जाला कि किसान तो हम लोग है ही जा लेकिन हर लोगन भी देखा अपने दुआरी पे दो मोड़ चार मोड़ पशु चौवा भी
1: रखे लन,
2: और निश्चित रूप से जो बाकी अपने अंचल में भी देखा लगभग लगभग 90% लोग भी देखा अपने घर में जो बाकी पशु चौवा रखल जरा में गाय हो गई भैंस हो गई बकरी हो गई बैल हो गई और जोन बाकी ये आजीविका के भी देखा जोन बाकी साधन हो गए और आर्थिक रूप से
1: मजबूत
2: तभी होलन जब भी देखा जोन बाकी अपने घर में दो मुड़ चार मुड़ पशु चौवा रहला और खेती किसानी संगे पशुपालन भी देखा करे के और जोन बाकी आमदनी भी बढ़ावे के बढ़िया साधन हो गए।
1: बिल्कुल कहे नहीं देखा आमदनी कैसे नहीं बढ़ी देखा जब गाय भैंस रही पालन ओकर पालन कर ले दूध प्राप्त होला जोना के बेच के जनबा अपन किसान भाई लोग जनबा नियमित किसान आमदनी कमा सकेलन। बकरी पालन और मुर्गी पालन भी कम पूंजी में रोजगार के अवसर पैदा करे के में मददगार साबित होला और देखा खेती के संगे पशुपालन अपनावे से न किसान परिवार के आमदनी जनबा एक से अधिक स्रोत तैयार हो जाला उसे।
2: बिल्कुल सही कहा हुआ चलो भैया, फसल खराब होके या मौसम के मार पड़ला पर पशुपालन अतिरिक्त सहारा देवे के साधन रहेला और पशुअन के गोबर से बढ़िया जैविक खाद भी बनेला और जोन भी खेत हुए भैया देखा उपजाऊ जोन बाकी उकरा में बढ़िया वाला डालला
1: बिल्कुल
2: और ऐसने में रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम होकेला और जोन भी जोन बाकी
1: पशुधन का पूरा लाभ उठावे के
2: चाहिए। बिल्कुल, और ओकरे साथ साथ भी देखा जोन भी खान पान हुए पशु पशुगन के ओकरा पर भी हम लोगन के ध्यान देहले के जरूरत हुए और पशु चौवा जब रहेलन तो निश्चित रूप से दूध दही मठा भी होला और अपने घर के लेकर
1: स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेला से तो समय समय पर देखा पशुगन के भी ध्यान रखे के चाहिए। समय समय पर उनका जो टीकाकरण होला ओके समय समय पर करा लेवे के चाहिए। अगर पशु बीमार पड़े तो पशु चिकित्सक से सलाह ले करके ओकर इलाज करावे के चाहिए। पशुअन खातिर जनबा साफ पानी पौष्टिक चारा और सुरक्षित आवास का व्यवस्था भी जरूर करे के चाहिए। इसमें देखा भाई थोड़े दिन बाद ही जनबा देखा जाड़ा पड़े लगी तो ओमेन तो और व्यवस्था करे पड़े
2: एकदम
1: खाली सरकार और पशुपालन विभाग की ओर से ही चले वाला योजना या प्रशिक्षण का सहायता से जानकारी भी जनबा अगर जुटा लिया जाए तो वह बहुत काफी होला।
2: एकदम सही कहा हुआ चलो भैया, और जोन भी हम लोगों के यहाँ किसान हो गए अंचल में वो भैया लोग जोन बाकी बकरी पालन हो गई या अन्य देखा पशुपालन हो गए ऐसे में भैया देखा अगर जोन बाकी समूह बना करके भैया देखा डेयरी फार्म खोलत हुए तो निश्चित रूप से भैया देखा ओकर उत्पादन के बिक्री करके अपन व्यवस्था सुधार सकलन और ओकरे साथ साथ जोन बाकी जोन भी अपन आर्थिक स्रोत होखेला ओकरा भी मजबूत कर सकेलन और बढ़िया जोन बाकी आमदनी प्राप्त
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा हमान भी अपने पशुधन के सही देखभाल करब जा, वैज्ञानिक तरीका से पशुपालन अपनाइब जा और आपका पशुधन आपकी आजीविका का जन मंत्र है उके अपनाए करके जनबा अपने परिवार के खुशहाली और आत्मनिर्भरता के और आगे बढ़ावल जा सकेला। और देखा मुराव भैया हमन का बात बत कही तो हो रही लेकिन अपने पंचायती में पशुपालक हुआ सतीश कुमार यादव भैया वो जुटल बड़ा ना
2: अच्छा अच्छा
1: और मुनाफे वाला व्यवसाय पशुपालन ये विषय पर भोला भैया से अपन बात बात कही करत हुए तो हम तो कहते हैं कि कुछ संदेश बा उस संदेश सुनला के बाद जरूरी जानकारी सुनल जाए।
2: बिल्कुल भैया सुनल
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5000 रुपए लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
2: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: श्रोताओं, यदि हम लोग पशुपालन की बात करें तो पशुपालन कृषि की वह शाखा है जिसमें पालतू पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य और प्रबंधन किया जाता है। यदि इसके प्रकार की बात करें तो दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से कुक्कुट पालन, मछली व मधुमक्खी पालन भी किए जाते हैं। लेकिन दुग्ध उत्पादन के लिए जिन पशुओं का पालन करते हैं उसमें से मुख्य रूप से गाय, भैंस और बकरी होते हैं, जिसमें कि लोगों का कहना भी है कि गाय के दूध पढ़ाई के लिए, बकरी के दूध दवाई के लिए और भैंस का दूध लड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात ताकत की जहाँ बात आती है वहाँ भैंस का दूध काम करता है, बीमारी ठीक करने की जहाँ बात आती है तो बकरी का दूध, और जहाँ बुद्धि के प्रयोग करने के बात आती है वहाँ गाय के दूध काम आते हैं। आज ऐसे ही एक पशुपालक से मुलाकात हो रही है, सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के केवाल से। श्री सतीश कुमार यादव जी हैं, आप पशुपालन किए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय, भैंस, बकरी, ये तीनों प्रजाति का पालन आपने किया है। सतीश कुमार जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और इस उद्देश्य से भी कि जो है कि कृषि सह व्यवसाय के क्रम में जो आप गाय, भैंस, बकरी सबका पालन किए हैं, कैसे इस सबका देख रेख कर पाते हैं, इन विषयों पर बातचीत होगी। तो गाय कौन कौन से प्रजाति हैं आपके यहाँ जो पालन किए हैं?
5: सबसे पहले तो सब पंचम भैया के राम राम।
4: बिल्कुल भैया, धन्यवाद।
5: हमारे यहाँ भैया साहिवाल, देसी, जर्सी गाय हैं।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, और भैंस में?
5: भैंस में मुर्रा।
4: बकरी भी है ना?
5: हाँ, बकरी,
4: देसी बकरी,
5: देसी बकरी हैं
4: जो आमतौर पर घर पे होते हैं
5: जी,
4: दिख रहे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबका देख रेख कैसे करते हैं? इसमें बरसात बहुत हो रहे हैं, फिर कुछ दिन में ठंड भी पड़ने लगेगा, फिर गर्मी, विभिन्न मौसमों में तो अलग अलग तरीके से देख रेख करना।
5: हाँ, अलग अलग तरीके से देख रेख करना पड़ता है इन लोगों का। अभी जैसे बरसात का मौसम है, आप देख पा रहे हैं कि उस तरह का तो शेड नहीं बना है, लेकिन झाला बना करके और प्लास्टिक डाल करके ऊपर से छाया कर दिया गया है ताकि पानी में जानवर ना भीगे।
4: बिल्कुल।
5: और जहां भी पशुओं को रखा जाता है, रात्रि में अलग, दिन में अलग, अलग अलग तरीके से इन लोगों का रख रखाव।
4: अच्छा अच्छा अच्छा,
5: हाँ।
4: ऐसा क्यों?
5: इसलिए कि जहाँ एक साथ रहेंगे तो वहाँ पे गोबर इत्यादि जो पड़ा रहेगा तो कई प्रकार के परेशानियां उत्पन्न होंगी,
4: गंदा हो कीचड़ हो जाएगा
5: जी। इसलिए अलग अलग स्थान पर उन लोगों को हटा दिया जाता है। फिर खाने का स्थान है, उन लोगों का अलग किया जाता है, अलग करके फिर साफ सफाई की जाती है।
4: हाँ, हाँ,
5: फिर साफ सफाई करने के बाद अगर उधर गंदा कर दिए सब तो फिर जहाँ साफ स्थान है उधर ला करके बांध दिया जाता है।
4: ये सब कीचड़ नहीं होता है?
5: कीचड़ तो होता है, लेकिन इसीलिए तो जो है कि अलग अलग रखते हैं ताकि
4: सूख जाए तब तक।
5: हाँ, तब तक सूख जाए,
4: ढालू भी बना देते हैं ताकि जो है कि बाहर करके
5: पानी अलग हो जाए और जो भी मूत्र वगैरह रहे सब अलग चला जाए बाहर करके।
4: हाँ हाँ, ज्यादा किचका चुसीम होता है
5: जी जी।
4: तो गाय के खान पान में क्या ध्यान देना होता है?
5: गाय के खान पान में इन लोगों को हम लोग जैसे पुआल की कटिया बनाते हैं, और पुआल की कटिया के साथ साथ उसमें हरा चारा के रूप में एक बाजार से सुडान आता है, उसको ला करके हम लोग लगा दिए हैं।
4: अच्छा अच्छा,
5: और काट करके मशीन तो नहीं है लेकिन ऐसे ही हाथ से काटने वाला व्यवस्था है, उससे काट करके देखा भूसे के साथ मिला करके खिलाया जाता है इन लोगों को।
4: अच्छा अच्छा अच्छा,
5: और अनाज का मात्रा भी दिया जाता है जो दूध देने वाले जानवर हैं।
4: हाँ, हाँ, हाँ,
5: हाँ। और इस समय तो घास की मात्रा पर्याप्त है, घास को भी हम लोग उसी तरह से काट करके महीन करके भूसे के साथ
4: मिला करके देते हैं। अच्छा, केवल हरा चारा देने से भी नुकसान है?
5: जी, हरा चारा देंगे तो जानवर थोड़ा नुकसान होगा।
4: अच्छा अच्छा, पुखनी रोग
5: जी जी जी।
4: तो इसलिए जो है कि भूसा और
5: दोनों को

0: मिला करके
1: मिला
0: दिया
1: कर
0: जाता है।
1: देते हैं। तो ये जैसे आपके पास 3 प्रजाति की गाय हैं, जो साहिवाल भी है, देसी और जर्सी,
0: जी
1: तीनों का खाने के में कुछ अंतर करना पड़ता है कि एक जैसे है सब?
0: नहीं, लगभग एक जैसे ही है। जैसे देसी वाला है तो अगर उसको अलग जैसे रस्सी इत्यादि के माध्यम से बांध भी दिया है
1: अच्छा,
0: तो वो अपना
1: चरने के
0: चर
1: लिए।
0: हाँ चर
1: हाँ
0: लेते हैं,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन ये
1: हाँ
0: साहिवाल और जर्सी हैं, तीन लोगों को बांधने के बाद ये लोग
1: खुटा पर
0: उतना
1: ही
0: हाँ
1: रहेंगे।
0: खुटे पर ही रहेंगे और वहीं पे इन लोगों का दाना चारा भूसा जो भी देना है वहीं दिया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो दूध की बिक्री भी करना होता है,
0: जी
1: इसी उद्देश्य से रखे हुए
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैंस के देखरेख कैसे करते हैं?
0: भैंस का भी देखरेख लगभग इन्हीं के बराबर, गाय के बराबर इन लोगों को भी देखरेख करना पड़ता है।
1: अच्छा, ये जो है कि इसमें भैंस में चाहे गाय में, ये सब थनैल ओनैल भी होने की बात आती
0: हाँ
1: है।
0: ज्यादा जो है कि जिसे दुधारू जानवर में ज्यादा थनेल होने का चांस रहता है।
1: अजय, इसका क्या कारण समझ में आता है?
0: अब इसे कारण समझ में आता है कि जैसे दूध उसका सही से ना निकाल पाना या
1: हाँ हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: कुछ खान पान या इस तरह से कमी हो
1: चुटेल भी
0: तो
1: हो जाता
0: हाँ
1: होगा।
0: तो चुटिल भी हो जाता है, सूजन हो जाता है।
1: हाँ, तो
0: तो
1: उससे कैसे उसका ठीक कराते हैं फिर जाए?
0: वही डॉक्टर वगैरह को बुला करके दिखाया जाता है, बाकी आकाशवाणी से आप लोग बताते रहते हैं बीच बीच में, तो उस तरह का भी उसके माध्यम से भी जानकारी मिलता रहता है। तो यही सब दवा इलाज होता
1: यानी
0: है
1: कि रेडियो के भी श्रोता हैं।
0: जी, रेडियो के भी श्रोता हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बकरी भी पालन किए हैं,
0: जी, बकरी भी है।
1: ये मतलब इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन कैसे आप कर पाए, गाय भैंस बकरी सब जो है कि? तो बकरी भी अधिक मात्रा में है,
0: जी
1: तो इन लोगों का खान पान, ये तो बहुत शौकीन जाति होते हैं।
0: हाँ, इन लोगों को हर समय सूखा स्थान चाहिए।
1: हाँ, जैसे मान लीजिए इसमें अगर कीचड़ में पड़ जाए, पानी में पड़ जाए, तो इनका बीमारी बहुत तेज
0: हाँ
1: बढ़ता है।
0: बहुत तेज हो जाता
1: तो
0: है।
1: इनका रख रखाव कैसे करते हैं?
0: इन लोगों का रख रखाव भी जैसा दो तीन स्थान इन लोगों का भी है, अलग
1: अच्छा,
0: अलग समय में इन लोगों को हटा दिया जाता है और
1: हाँ,
0: फिर चारा वारा बिला करके वहीं पे दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: मतलब घर पर इनको भी रखना होता
0: जी
1: है,
0: जी घर पे ही रखते
1: तो
0: हैं
1: सूखा स्थान ज्यादा इनका आवश्यक होता है।
0: जी। जैसे खुरपका मुहपका
1: जी
0: और कभी जैसे बरसात का शुरुआत दौर होता है उस समय गलाघोटू इत्यादि का ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है।
1: तो इसे कैसे छुटकारा पाते हैं?
0: टीकाकरण वगैरह
1: अच्छा, पहले ही लगवा
0: हाँ
1: लेते
0: पहले
1: हैं।
0: ही लगवा लिया जाता है
1: तो टीकाकरण ही मैंने इसका ज्यादा निदान है।
0: जी।
1: रोग होने पर तो कोई दवा कराएंगे तो भाई शरीर छिड़ ही होगा।
0: हाँ ज्यादा नुकसान हो जाता है।
1: तो टीका लगता है,
0: हाँ लगता है
1: डॉक्टर साहब लोग आते हैं
0: जी,
1: लगाने?
0: डॉक्टर साहब लोग आते हैं बीच
1: अच्छा
0: बीच में।
1: अच्छा और बकरी का?
0: बकरी का भी उसी तरह से, इस समय जैसे बरसात का मौसम है तो ज्यादा इन लोगों को सर्दी बुखार का समस्या रहता है, तो जब इस तरह का अगर लक्षण दिखता है तो उससे पहले ही डॉक्टर साहब से संपर्क करके दवा इलाज करा लिया जाता है।
1: अच्छा, ये तीनों में, गाय भैंस बकरी में, सबसे फायदा किसमें समझ में आता है?
0: ज्यादा फायदा किसमें कहा जाए, मिला जुला करके तीनों ठीक ही
1: तीनों
0: है
1: ठीक ही
0: जी,
1: हैं।
0: तीनों
1: अब
0: ठीक
1: चूंकि
0: है अपने
1: दूध
0: अपने जगह
1: दूध
0: पर।
1: प्रतिदिन बेचेंगे
0: हाँ
1: तो उसका मुनाफा होगा।
0: जी
1: तो श्रोताओं, देखें, अभी बातचीत हो रही थी सतीश कुमार यादव जी से। आप सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के केवाल गांव से हैं, और आप गाय बकरी भैंस इत्यादि का पालन किए हैं, और इनके फसल के अवशेष को इन्हें खिलाते हैं, और इनके खिलाने के बाद जो गोबर मूत्र होता है उसको ये खेत में डाल करके अच्छा अनाज भी उत्पादन करते हैं। इतना अच्छा काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और देखा इतना अच्छा जानकारी हमारे पशुओं के बारे में सुन लीजा कि
0: बिल्कुल
2: मुनाफे वाला व्यवसाय होता है पशुपालन। ये विषय पर सतीश कुमार जो कि पशुपालक रहन उनसे अपन बोला भैया बतियावत रहन।
0: बिल्कुल
2: और देखा भैया यहाँ पशुपालन के में जो पशुओं के रखे सही रखे बदे का का जरूरी चीज होला वह सामान सुनत रह लीजा।
0: बिल्कुल भैया
2: लेकिन ये मौसम में जो आवे वाला मौसम बा, ये मौसम में और का का जानकारी मतलब गठिया करके अपन अपने पशुओं के सही रखल जा सकेला? तो मौसम के तकनीकी ज्ञान के साथ साथ पशुओं के भी जनबा कैसे सावधानी रखल जाए, एक जरूरी सलाह भी हमन सुन लिया जाए।
0: एकदम भैया सुनल जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगर हम बात करें अगले 3-4 दिनों की तो कहीं कहीं हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और मौसम को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ऐसे में क्योंकि अब मौसम बरसात से ठंड की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए सुबह और शाम जो है

0: ठंडक महसूस हो सकती है। खेती में छोटी छोटी सावधानियां भी बहुत अच्छी उपज पाने की बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम मौसम के साथ साथ अपनी फसलों की भी जरूरत को समझें। तो इसी क्रम में किसान भाइयों, इस समय जो है धान की फसल में दाना भरने से लेकर कहीं कहीं पकने की अवस्था चल रही है, तो ऐसे में खेत में नमी रहना बहुत जरूरी है और खेत में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें, क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई है और आगे 3-4 दिनों तक भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है। इसलिए पर्याप्त नमी बनाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो सिंचाई करें, लेकिन बिना जरूरत की पानी न लगाएं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो इस समय जो सब्जियां तैयार हैं वो तुवाई करने की स्थिति में है, तो नियमित तुवाई करेंगे तो अच्छी गुणवत्ता वाली आपको उपज प्राप्त होगी। और साथ ही पत्ता गोभी, फूल गोभी की फसल में भी तैयार पौधों की पहचान करके उसका समय से कटाई करें, और पत्तियों पर जो है कीटों का, रोगों का लक्षण दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही उसका उपचार करें। और इसी क्रम में अगर हम बोले आपको कि मिर्चा और अरहर की, तो मिर्चा में जो है फल बनना शुरू हो गया है अपने अंचल में, और अगर अरहर की बात करें तो अरहर में फूल और फलियां बनना शुरू हो गई हैं। तो इस समय क्या होता है कि इन दोनों फसलों में पत्तियों, फूलों और फलियों पर कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, तो उसकी सही पहचान करें और जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ की सलाह लें और उसका उचित उपाय करें। और लेकिन ये भी ध्यान दें किसान भाइयों कि फूलों पर अगर मधुमक्खियां आती है तो उनके सक्रिय रहने तक उस पर जो है कीटनाशक का छिड़काव न करें, क्योंकि मधुमक्खियां जो है परागण में काम करती हैं। और अगर हम पशुपालक भाइयों के लिए बताना चाहें तो क्योंकि सुबह और शाम की ठंडक को देखते हुए दुधारू पशुओं के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और इसी क्रम में पशुओं को जो है संतुलित आहार खिलाएं, पर्याप्त हरा चारा, सूखा चारा का उचित मिक्सचर बना के खिलाएं, पशुओं को साफ सूखा स्थान पे रखें और उनके जो आश्रय का स्थान है वहां पीछे के जूट के बोरे इन सब उनसे उन लोगों को घेरे रहें, ताकि उनको जो है सुबह शाम की जो ठंडक है उसका असर न पड़े, क्योंकि अगर स्वस्थ पशु रहेगा तभी वो स्वस्थ दूध देगा। धन्यवाद किसान भाइयों, सुरक्षित खेती करें और स्वस्थ रहें। जय जवान जय किसान।
1: मुराविया,
2: हाँ चलो भैया,
1: ये जानकारी के देत रहल भैया?
2: भैया देखा, ये जानकारी शिव मंगल सिंह देत रहलन, तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक BHU वाराणसी से, और इतना बढ़िया जानकारी देलन भैया। देखा एक गठिया करके हम लोगन भी
1: बिल्कुल बिल्कुल अपने खेती किसानी भी ऐसा करल जाए, पशुवारी भी करल जाए,
2: बिल्कुल
1: जैसे जनबा अच्छा से अच्छा मुनाफा मिल सके। और किसान खातिर देखा मुनाफा कमाए का एगो और साधन होला, वो होला भैया की अपन कैसे उत्पादन अच्छा से अच्छा करल जाए और के बाजार में पहुँचावल जाए।
2: बिल्कुल,
1: जहाँ मंडी अच्छा मिले, बाजार भाव का अच्छा मिले, तो वहीं टेव के निपटावल जाए।
2: एकदम सही कहत हुआ अचलू भैया। और आज जो बाकी बाजार भाव आगे ले हुए
1: कहाँ से,
2: मधुपुर से हुए भैया, और पुनर्वासी चौहान भैया भेजले हुए,
1: तो बिना देर के लिए
2: कुंतल में हुए भैया। आलू लाल वाला 1200 रूपए कुंतल, सफेद 900 रूपए कुंतल, प्याज रहे 4700 रूपए कुंतल, टमाटर 4000 रूपए कुंतल, बोड़ा 3000 रूपए कुंतल, कोहड़ा 1500, अरुई 2500 रूपया, बंडा 2500 रूपया, और लंबा वाला बैगन 1500 रूपया कुंतल, और गोला वाला बैगन 2800, परवल 6000, लौकी 2000, करेला रहले 3000 रूपया, भिंडी 2000 रूपया कुंतल, नेनुआ 2200 रूपया, कुनरू 1800, तुरई 2500, और मूली रहले 4000 रूपया, हरा मिर्चा 5000, लहसुन रहले 11000, धनिया 18000, पालक रहले 3500 रूपया कुंतल, अदरक 10000, सूरन 4000, और खीरा 3000 रूपया, और मक्का रहले 1500 रूपया, और पपीता रहले भैया 2500 रूपया कुंतल, गाजर 2800, शिमला मिर्च 6000, चुकंदर 2800 रूपया, करौंदा 4000 रूपया कुंतल, कच्चा केला 1500 रूपया, और फूल गोभी 3000 रूपया सैकड़ा, और पत्ता गोभी 2500, नींबू रहले 500 रूपया प्रति सैकड़ा।
1: सैकड़ा तो इतना मधुपुर मंडी का बाजार भाव, और सबके धन्यवाद दिए खातिर जनबा। आज राम कृपाल भैया अपने संघाती लोगों के साथ एगो देवी गीत बा, नवरात्र का समय चल रहा है, तो बिल्कुल मौका है, और पचरा के साथ जिनबा हम अपन मन फेर भी करेंगे।

0: मुराओ भैया।
1: हाँ चलो भैया,
0: देखा देवी गीत का समय चलत बा और नवराति नवमी नवरात्र के बारे में जन बा अपन रामकृपाल भी अपने संगाती लोगों के साथ मन फेर भी करावत हुआ।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन देखा थे कि अपने पंचायती भी समेटे का समय हो गए बा, लेकिन काल जब अपने पंचायती में जुटल जाये तो का सुनल जाये।
1: बिल्कुल भैया, देखा जोन बा के हेलो किसान वाड़ी विषय जोन के धान फसल में सामूहिक कृषि कार्य के बारे में।
0: अच्छा, एमएन जोन बा अपन किसान भैया लोग अपन समस्या पूछ सकेल।
1: बिल्कुल पूछ सकेल ना, विशेषज्ञ भैया रही हैं एकरा में डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना,
0: अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी हम गौतम बुद्ध नगर से।
1: बिल्कुल।
0: और देखा खास तौर से ई तो अपन चर्चा सुनबे कर जाये, लेकिन जोन मौसम की बात हो रहा बा और मौसम में खास तौर से अपने स्वास्थ्य की जोन बात हो रहा बा, ऐसे में देखा जोन रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसे बढ़ावल जा सकेला, एक बारे में अगर कुछ चर्चा अगर कर लिया जाए तो अच्छा रहे।
1: एकदम
0: भैया स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे।
1: एकदम बिल्कुल सही कहा था भैया, इसने मौसम में हम लोगों के मौसम के अनुसार भैया देखा जोन बाकी ठंडा गर्म मौसम हुए तो इसने में मौसम के भैया देखा अनदेखी नहीं करे के हुए, भैया देखा अपने मौसम के देख के जोन बाकी खेती किसानी के काम या अन्य काम भैया देखा हम लोगों के करे के चाहिए, जेकरा से शरीर भी स्वस्थ रहे और आगे काम भी होकत रहे।
0: जैसे की आज चर्चा का विषय भी रहा की योग, तो योग से जन बा शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का शांति मिल सकेला, अपन शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी शांत रहे। तो जब मन शांत रहे तो स्वास्थ्य अपने आप सही रहबे करी।
1: बिल्कुल।
0: तो देखा अपन पंचायती का समय भी हो चुकल बा, तो आज हम यही चल जाए, मन में यह आशा बा कि देवी माता अपन जितना भी अपने गांव के जवार के लोग हों सबके स्वास्थ्य के मन के सबके अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, यही आशा के साथ आज अपन पंचायती समेटल जाए। सब पंचन के राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है FM 102.7 पर। अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जय हिंद। सरला बहनी,
1: हरियाज भैया।
0: देखो जब बात आवत है खेती पाती के, तो खेती पाती में कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि वहाँ जो है पैसा की जरूरत जब पड़ता है, अपने हाथ में जब पैसा नहीं रहा था तो ये लागत है कि कहाँ से पैसा आवा है, कैसे अपन काम चले।
1: बिल्कुल सही कहे भैया। और खेती पाती में भैया कबू खेत के जुताई करे का है, कबू बुआई करे का है, बीज खरीदे का है, तो सिंचाई खातिर इन सब की खातिर अगर पैसा नहीं मिलते भैया तो खेती अपन पिछड़ जाते हैं।
0: मोला भी हमें जो है चिंता करे की जरूरत नहीं रहते हम पंचन का, कहे से सरकार तमाम तरीके की योजना चलावा करत है कि हम किसान पंचन का कोनो परेशानी का सामना न करे पड़े। वही में से एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
1: यह योजना की मदद से पात्र किसान जो है बैंक से खेती की जरूरत के हिसाब से कर्जा ले सकते हैं, और ऐसे बीज खाद और कीटनाशक होगा और खेती के अन्य

0: चीजें हैं वो खरीद सकत हैं।
1: और सबसे अच्छी बात यह है, यह हमारा बहुत मामूली ब्याज दिया पड़ता है, कितना रहता है कि हम पंच आसानी से वका वहन कर सके थे।
0: और जैसे आवेदन में कुछ भैया पहचान पत्र जरूरी है ताकि अपन एक प्रमाण रहे।
1: बिल्कुल, ऊ का सबको तो जरूरत पड़ता है, सीधे हम पंच बैंक में जाइए और अपन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए के अपने खेती पाती की जो जरूरत है वह के लिए अपन कर्जा लेके अपन काम निकाला जाए। मूल एक चीज की ध्यान रखा जाए, समय से अगर हम पंच पैसा को वापसी कर दिए थे तो आगे अपन सम्मान बना रहा था, आसानी से अपने सबका कर्जा मिल जाता है। सरला बनी खेती पाती की जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यही लिए और सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए 493 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रदेश के 9,18,091 किसानों के खातों में यह धनराशि भेजी जा रही है। यह सहायता बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने और आपदा के समय उन्हें राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके साथ ही अतिवृष्टि और चक्रवात से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
0: रियल भैया,
1: हाँ सरला बहन,
0: आज की बातन में आज जाना जाए रवि में दलहन उत्पादन के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर लाल बहादुर यादव।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, रवि में जहाँ आपका खेत खाली है और दलहन उत्पादन करना चाहते हैं तो दलहन उत्पादन की क्या कुछ संभावनाएं हैं और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर LB यादव साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां रबी में दलहन उत्पादन की योजना बनाए हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है?
4: किसान भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। दलहनी फसलों का हमारे खाद्यान्न में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
3: तो डॉक्टर साहब, मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी में उगा सकते हैं किसान भाई बहन?
4: इसमें मुख्य रूप से जो है चना, मटर, मसूर की खेती जो है बहुतायत रूप से जो है हमारे बुंदेलखंड के इलाके में किसान भाई बहुत बृहद रूप से जो है इसकी खेती करते हैं।
3: तो इसकी खेती फर्दा भी हो सकती है और सह फसली भी हो सकती है?
4: हाँ, देखिए ट्रेडिशनल में जो है किसान भाई पहले जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग ही करते थे, लेकिन अब जो है सिंगल क्रॉप लेने लगे हैं। दलहनों का काफी कम उत्पादन होता है जो हमें विदेश से आयात करना पड़ता है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो है आत्मनिर्भर दलहन मिशन की जो है इस साल से शुरुआत की गई है। इसमें मुख्य रूप से किसान भाइयों को जो मसूर की जो बीज हैं 100% अनुदान दिया जा रहा है, किसान भाई से एक पैसे नहीं लिया जाएगा, उनको फ्री में बीज बांटा जाएगा। और चना और मटर पर जो है 75% अनुदान जो है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा जो मिलकर के जो है दिया जा रहा है।
3: डॉक्टर साहब, जहाँ किसान भाई बहन चना, मटर, मसूर की तैयारी में हैं, तो खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ करें?
4: क्योंकि दलहनी फसल है इसमें बहुत ज्यादा खेत की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक बार जो है मिट्टी पलटने वाले हर से अगर किसान भाई जुताई कर दें खेत की तैयारी के लिए पर्याप्त होता है।
3: बुआई का उपयुक्त समय क्या है डॉक्टर साहब?
4: मुख्य रूप से दलहनी फसलों की बुआई का समय जो है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक है,
3: यानी समय एकदम उपयुक्त चल रहा है।
4: एकदम उपयुक्त समय चल रहा है, कहीं कहीं रेनफॉल ज्यादा हुई है तो वहाँ पर थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो उसके लिए लेट प्रजातियां जो हमारे पास उपलब्ध है किसान भाई उसका लेट प्रजातियों का भी प्रयोग कर सकते हैं।
3: उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनका चुनाव करें किसान भाई बहन चना, मटर और मसूर में?
4: चना में मुख्य रूप से कंचन है, कुबेर है, अटल है, शिवा है, केशव है और एक पूसा पार्वती, ये जो है बहुत ही लेटेस्ट प्रजातियां जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ईजाद की गई हैं। किसान भाई चना के रूप में इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। अगर मटर की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए अपर्णा, शिखर और हरित, ये मुख्य रूप से ये मटर की प्रजातियां हैं। इसी तरह से मसूर में जो है पूसा श्वेता और कोटा, कोटा 4 और कोटा 5 मसूर की प्रजातियां जो किसान भाई जो इसका प्रयोग कर सकते हैं, एकदम लेटेस्ट प्रजातियां हैं ये। इसके अलावा GNG 2171 है, IPC 2562 है, ये जो चना की प्रजाति है। इसी तरह से मटर में जो है IPFD 18-3 है, IPFD 19-3 है, पंत मटर 347 है,

0: मटर 250 है। इसी तरह से मसूर में भी जो है पंत मसूर है आईपीएल 230 है, आईपीएल 311 है, आईपीएल 315 है, और कोटा मसूर 4 और 5 मैंने पूर्व में ही बता दिया है।
1: डॉक्टर साहब, बीज दर क्या होगी प्रति एकड़ के हिसाब से?
0: चना में जो है 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़,
1: जैसा दाना है उसके हिसाब
0: हाँ
1: से
0: दाने के हिसाब से, क्योंकि अगर दाना छोटा है तो इसकी जो है
1: बीज की मात्रा
0: कम
1: कम
0: हो
1: लगे,
0: जाती है, और दाना बोल्ड है बड़ा है तो बीज की मात्रा थोड़ा 40 किलो हो जाएगी प्रति एकड़।
1: और मटर में?
0: मटर में मुख्य रूप से जो है 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है मटर, इसमें चूंकि यूनिफार्म होती है, इसमें कोई छोटा बड़ा दाना नहीं होता है, तो इसमें 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी
1: और
0: तरह से मसूर में जो है 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है किसान भाई बीज जो है डाल सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बुआई के पहले बीज शोधन और बीज का उपचार भी जरूरी है?
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि हमारे किसान भाइयों को हम लोग सलाह देते हैं। जैसा है, आप जानते हैं कि उर्वरकों का रेट काफी बढ़ गया है, तो हम लोग ऐसे ट्रेडिशनल चीजों को बताते हैं। जैसे जानते हैं वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन हमारे ऊपर उपलब्ध है, इसका मतलब कि 80,000 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है,
1: यानी तैर रही है।
0: हाँ वायुमंडल में, और उसी को हम कैसे अपनी जमीन में फिक्स करने, इसके लिए राइजोबियम कल्चर एक आता है जो 200 ग्राम का पैकेट होता है, 50 ग्राम गुड़ ले लें और 50 लीटर पानी में घोल बना करके इसको मिला लें, और मिलाने के बाद जो है किसान भाई उससे बीज को उपचारित कर लें, और इसको छाए में सुखाना चाहिए, धूप में इसको नहीं सुखाना चाहिए। उसके बाद जब खेत में बुवाई करते हैं तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसके जड़ में जो है बायोमलिन नाइट्रोजन को खींच करके जो है जड़ में स्थिरीकरण करता है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो जीवाणु खाद जैसे राइजोबियम कल्चर और फास्फेटिका कल्चर से बीजोपचार के पहले किसी फफूंदी नाशक से बीज शोधन भी करना होगा?
0: हाँ बीज शोधन करने के लिए जैसे ट्राइकोडर्मा विवेरिया वैश्याना है, कार्बेंडाजिम है, थीरम है, हमारी ये जो बायोपेस्टिसाइड और केमिकल रसायन है, अगर इन केस किसान भाई को इन तीनों से फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम तीनों से अगर प्रयोग करना हो तो इसके लिए FIR एक शब्द आता है, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इस सीक्वेंस में जो है उसका बीज शोधन करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना है?
0: इसके लिए जैसा आप जानते हैं बेसल ड्रेसिंग के रूप में जब खेत में बुआई करते हैं हम बीज की, उसी समय जो है 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम पोटास की मात्रा जो है बेसल ड्रेसिंग के रूप में हम डालते हैं। मुख्य रूप से जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन की जो है जो यूरिया वगैरह जब डालते हैं तो DOC पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को फोलियर रिफ्रेइंग के रूप में भी जो है फ्लावरिंग और पार्डिंग के समय जो है जब इसमें फल आते हैं, फलियां आती है उस समय जो इसका प्रयोग जो है टॉप ड्रेसिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन दलहनी फसलों में कैसे हो, चना मटर मसूर में?
0: जो भी हमारे जमीन में पोषक तत्व उपलब्ध है 33% का प्रयोग जो है खरपतवार करते हैं। बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर जो है अगर हमने खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया तो हमारी उपज कम से कम 50% उपज कम होने की संभावना बनी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, क्या कोई प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी है जिसका प्रयोग चना मटर मसूर में हो जाए?
0: हाँ प्री इमरजेंस के रूप में दवा आती है प्रिटिला क्लोर, बहुत फेमस है और पेंडीमेथ्रिन काफी कॉमन है, किसान भाई इसको भली भांति जानते हैं। इसके बारे में बुआई के 2-3 दिन के अंदर ये कम से कम जो है 1.25 लीटर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में अगर बना करके घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो खरपतवार जो है काफी हद तक जो है कम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे रबी में दलहन उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हाँ मेरा मोबाइल नंबर है 7017736775,
1: हिंदी में
0: 70 17 36 3 बार 7 7 5,
1: जी
0: 7017736775। इसके अलावा भी जैसा आप जानते हैं भारत सरकार का किसान कॉल सेंटर है 1551 1551 नंबर पर भी किसान भाई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर भी जो जानकारी किसान भाइयों को जो है भरपूर मिलती रहती है।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का रबी में दलहन उत्पादन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाई दलहन फसलों का अधिक से अधिक बुआई करें और इसका उत्पादन लें, क्योंकि इस बार MSP भी भारत सरकार ने जो है काफी बढ़ा दिया है, खाद्य पदार्थों में भी जो दलहन का बहुत महत्व है।
1: और खेत की सेहत भी बढ़ानी है तो रबी में दलहन उत्पादन करना पड़ेगा। डॉक्टर लाल बहादुर यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और रबी में दलहन उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी।

0: एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: सरला बहनी,
4: हाँ रे अजबिया,
3: देखो नवरात चल रहा है और हर आदमी जो है देवी की स्तुति में मगन है, तो कहे ना देवी की स्तुति में एक बढ़िया साजा पचरा गीत सुन लीन जाए। सुनाए रहे हैं विवेकानंद व्यास, तो आओ सुना जाए।

0: सरला बहनी,
1: भैया
0: देखो रबी के मौसम आ रहा है और इमा हम पंच आलू के जोन उत्पादन करी थे वह के बारे में एक जानकारी ले ली जाए।
1: बिल्कुल भैया, तो आज के किसान हैं बता रहे हैं आलू बीज उत्पादन के बारे में, भंवर पाल सिंह भैया।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं कानपुर नगर जनपद के सरसौल ब्लॉक के महुआ गांव, जहां आलू बीज उत्पादन से जुड़े भंवरपाल सिंह भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। भंवरपाल सिंह भैया नमस्कार।
3: नमस्ते डॉक्टर साहब।
2: भैया, आप आलू बीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस बार क्या योजना है आपकी आलू उत्पादन की?
3: तो सब आलू उत्पादन की जो योजना जो पूर्ववत रही है वही है, और अब हमारी खेतों की तैयारी हो गई है, गोबर की खाद और जिप्सम वगैरह पड़ गए हैं और गहरी जुताई हो गई है, और उसके बाद हम करीब 20-21 तारीख से जब हमारा टेम्परेचर अनुकूल आ जाएगा तब हम आलू बीज की बुआई करेंगे।
2: आप चूंकि लगातार कई दशकों से आलू उत्पादन से जुड़े हैं, आलू की बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या मानते हैं?
3: देखिए, आलू का जो उपयुक्त समय है ना सर, वो 20 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक, और हमारा जो टेम्परेचर है उस समय ये होना चाहिए 22 से और 32 के बीच में, जो दिन का तापमान है वो 32 के आसपास होना चाहिए और रात का तापमान 22 के आसपास होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर है वो ना सर हमारा 24-25 होना चाहिए दिन रात का मिला करके।
2: इस साल कितने पैमाने पर आपकी बीज उत्पादन की योजना है?
3: हमारी बीज उत्पादन की योजना 80 से 100 एकड़ के बीच में लमसम नफा वही रहेगी।
2: यानी अपने साथ साथ आप लीज पर लेकर के बीज उत्पादन कर रहे हैं?
3: जी, अपने ना साहब जो हमारी खुद घर की जमीन है वो करीब 40 एकड़ के आसपास है, और करीब 40 से 60 एकड़ के बीच में ना साहब हम जमीन लीज पे लिए हुए हैं।
2: यानी संपूर्ण परिवार और लीज मिला करके
3: हाँ,
2: आपका
3: 100 एकड़ के आसपास है हमारा एरिया।
2: कौन कौन सी प्रजातियां चुन रहे हैं इस बार?
3: अगेती आलू का भी काम करते हैं, उसके लिए हम पुखराज है, मोहन है, ख्याति है, सुख्याति है, इन प्रजातियों को पसंद करते हैं। और अब जब हम टेबल पे आ जाते हैं तो टेबल में हमारी बहार है, ज्योति है, चंद्रमुखी है, हिमालयनी है, आनंद है, इन वरायटियों का बोते हैं। और प्रोसेसिंग में चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, चिप्सोना 5 अभी नई नई आ गई है, और ट्राइसोना है, और कुछ जैव संवर्धित वैरायटियां हैं जैसे आपकी मानिक है, कुफरी नीलकंठ है, कुफरी जमुनिया है, ये कुछ वैरायटियों का भी बीज उत्पादन करते हैं। इसके अलावा कुछ ही टैलेंट्स की वैरायटियां हैं जैसे किरण है, और अभी बहुत लेटेस्ट आई है तेजस है, ये 2-3 वैरायटियां जो है जो ही टैलेंट्स वाली, इनका भी सीड उत्पादन करते हैं।
2: तो जिन प्रजातियों का आपने जिक्र किया, इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं?
3: जैसे जैसे हम अगर अगेती में जाएंगे तो जो हमारी पुखराज है ये बहुत कम समय में 60 दिन में 60-70 क्विंटल का एकड़ दे देती है, और उसमें किसान को अच्छे रेट मिल जाते हैं। अगर हम मीडियम वैरायटियों में चले तो हम बाहर सब हमको हमारे यहाँ से जो कानपुर, आगरा, आपका अलीगढ़ का जो मंडल है उनमें पहाड़ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। साउथ में इसकी बहुत डिमांड है, बहुत कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए उसको हम लोग इसलिए पसंद करते हैं। अब प्रोसेसिंग में चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, चिप्सोना 5 और बायो 45 जैसे कुफरी नीलकंठ है, कुफरी मानिक है, कुफरी जमुनिया है, इनको भी कर रहे हैं।
2: तो खेत की तैयारी में क्या कुछ खास कर रहे हैं?
3: खेत की तैयारी में जैसा हम तो दलहनी फसल का समावेश करते हैं फसल चक्र में, हम आलू के बाद उड़द मूंग करते हैं, उड़द मूंग के बाद ठेचा करते हैं, और गोबर की सड़ी खाद साल में या 2 साल 3 साल में एक बार जो है सब सॉइलर से गहरी जुताई कर देते हैं, और गहरी जुताई करके खेत को हम तैयार कर लेते हैं।
2: बुआई में कौन कौन सी बारीकी है और बुआई की तकनीक क्या अपनाते हैं, अंतरण क्या रखते हैं?
3: देखिए दरअसल बुआई में सबसे तो अच्छा है सीड, चाहे आप सीड के लिए बोल रहे हैं, कहने की कोई बात ही नहीं है, आप टेबल के लिए भी बोल रहे हैं तो आपका सीड जो है थोड़ा गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। हो सके तो आप उद्यान विभाग या आलू अनुसंधान केंद्र या जो पंजीकृत सीड उत्पादक हैं आलू के वहां से आप बीज लें। दूसरी एक कि आप अगर सीड में हैं या हम सीड का काम करते हैं तो हम आलू बीज को काटते नहीं हैं, आलू बीज काटने में वायरस फैलने की, स्प्रेड होने की बहुत संभावना रहती है। अगर एक चाकू में एक आलू में हमारे वायरस है तो वो अपने आलू में चला जाएगा, वो वायरस फैलता चला जाएगा।

0: यानी
1: तो
0: संक्रमण का खतरा रहता है।
1: हाँ, अगर हम नसा अग्रेसिव बुवाई कर रहे हैं पुखराज की, मोहन की, छाती की, तो हमारा नसा डेंसिटी का रेशियो रहेगा 180 नाइट्रोजन, 50 फास्फोरस और 100 नसा पोटास।
0: ये 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर की मात्रा है।
1: हाँ, ये नसा 1 हेक्टेयर की मात्रा है। अगर हम टेबल के लिए कर रहे हैं तो नसा हमारा 180 80 120 रहता है। और
0: नाइट्रोजन
1: अगर
0: फास्फोरस पोटास
1: हाँ, जैसे अगर सीट के लिए भी हम कर रहे हैं, जैसे हम सीट के लिए करते हैं तो हमारा नसा रेशियो रहता है 180 50 100, जो हम अगेती आलू के लिए करते हैं।
0: जी
1: जैसा प्रोसेसिंग में हमको थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स बढ़ाना होता है, उसमें खास करके हमको जो नाइट्रोजन है वो 270 तक हम ले जाते हैं नसा तत्व के रूप में,
0: जी
1: और फास्फोरस 80 रहेगा, और हमारा जो कैल्शियम है पोटास 150 रहेगा प्रति हेक्टेयर।
0: मोरपाल भैया, बुआई के पहले बीज शोधन भी महत्वपूर्ण है।
1: बीज शोधन नसा बहुत महत्वपूर्ण, 10 दिन पहले बीज को निकाल करके छाया में सुखा लेते हैं, उसकी स्टार्टिंग ग्रेडिंग कर लेते हैं, जो आलू डैमेज है या जिसमें आंखें नहीं है उनको निकाल करके सुखा करके उसमें जो है एक अच्छे कवकनाशी फंगिसाइड का हम जो है एक बार पहले तो पॉलिथीन सीट बिछाते हैं, तो उस पर डाल देते हैं एक बार मशीन से, फिर तो उसको पलट करके दोबारा डाल देते हैं, और उसको छाया में सुखा करके 1 हफ्ते रखे रहते हैं। जब उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है तो उसकी हम नसा बुआई करते हैं।
0: तो आप बुआई पोटैटो प्लांटर से करते होंगे?
1: जी हाँ साहब, हमारे पास ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है जो कि एक प्रिसीजन टाइप है, बिल्कुल एक सटीक गहराई पे सटीक दूरी पे जो है, जैसे कि नसब हमको 40 से 50 ग्राम का आलू बोना है तो उसकी नसब दूरी भी ज्यादा रहेगी, लाइन से लाइन की दूरी हमारी 60 से 65 सेंटीमीटर रहती है सीड की और आपकी जो है अगेती आलू की।
0: और पौध से पौध?
1: पौध से पौध नसब जो है 5 से हमारी रहती है 10 सेंटीमीटर। ये सीड हमारा 25 से 30 ग्राम का है, अगर सीड हमारा 40 से 50 ग्राम का है तो वो दूरी नसब 10 से 15 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी,
0: जी
1: और यही रेशियो नसब गहराई पे रहता है। छोटा सीड है तो उसकी गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर होगी, अगर बड़ा बीज है तो उसकी गहराई 8 से 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रहेगी।
0: कुल मिला जुला करके आलू बीज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं?
1: जी हम खुशहाल हैं, और हमारे हर आलू उत्पादक किसान को सलाह है कि कभी भी रेट में आकर के घबराए ना कि रेट इस साल बहुत कम है या बहुत नुकसान हो रहा है। रेट कभी कम होते हैं और रेट कभी ज्यादा होते हैं, ये कम ही रेट कभी ज्यादा होंगे, इसलिए आप अपना आलू उत्पादन अच्छे ढंग से करते रहे, जरूर आगे भविष्य में आपको लाभ होगा।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 94-157-23-975, 94-157-23-975, 94-157-23-975।
0: भोरपाल सिंह भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप 100 एकड़ आलू बीज का उत्पादन कर रहे हैं और उसकी सारी तैयारी है और बुआई शुरू करने वाले हैं, जो आपका तजुर्बा था उससे और किसान भाई बहन सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: रियाज भैया।
7: हाँ सरला बहन,
6: अब जान लीजिए मौसम के हाल।
7: बिल्कुल, तो सुना दियो कि मौसम के काम इजाज है।
6: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से जो प्राप्त जानकारी है वह के अनुसार आज यानी 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहूँ कहूँ गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और 17, 18, 19 तारीख में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए भैया तो 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मौसम शुष्क, और बीच में 16 तारीख में कहूँ कहूँ बरसात होने की संभावना है।
7: अब अपने पंचन की बताई दी कि अपन कार्यक्रम कैसे

0: स्वागत है, इसके बारे में अवगत जरूर करावें। तो उके लिए कार्यक्रम के पता है, कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड 226001। ईमेल आईडी बता दी जाए,
1: farmandhome@lko@gmail.com।
0: यही के साथ माँ घड़ी इशारा कर रही है कि अपने कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। तो पंचन से लीन जाए आज्ञा, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का मानदेय ₹1,000 बढ़ाने की घोषणा। परिवारों को भी मिलेगा ₹5,00,000 सालाना कैशलेस इलाज। दीपावली के बाद लागू होगा यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का अहम फैसला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मंत्री पद और राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए लिया फैसला। और शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है आराधना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली से प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का मानदेय ₹1,000 बढ़ाने और उनके परिवारों को ₹5,00,000 सालाना कैशलेस इलाज की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी किया। मानदेय में एक मुश्त 40% की वृद्धि से अब ग्राम प्रहरियों को 2500 की बजाय ₹3,500 प्रतिमाह मिलेंगे। ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों और लगभग 1,00,000 राजस्व गांवों में ग्राम प्रहरियों की सजगता महत्वपूर्ण है। गांव सुरक्षित होंगे तो विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा।
1: जब भी आप सजग होंगे, सचेत होंगे, गांव सुरक्षित होगा। गांव सुरक्षित होगा तो गांव आत्मनिर्भर होगा। गांव आत्मनिर्भर होगा तो आपका जनपद भी आत्मनिर्भर भी होगा और विकसित भी होगा। और जनपद अगर हमारा आत्मनिर्भर और विकसित हो जाएगा तो यूपी को आत्मनिर्भर और विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। यूपी आगे बढ़ेगा और यूपी आगे बढ़ गया तो भारत विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको पूरा करने में सफल हो सकता।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच ₹2,000 से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय और राज्यसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया है। श्री मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने इस्तीफे में कहा है कि वह तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत माता और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प निर्यात IHGF दिल्ली फेयर 2026 का उद्घाटन किया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से आयोजित इस 5 दिवसीय मेले का उद्देश्य देश के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश के हस्तशिल्प कारोबार को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है।
2: पूरी दुनिया में की लड़ाई भी छिड़ी हुई है, आवाजाही में दिक्कत है, फिर भी भारत के अंदर 125 देशों से लोग आए, 23% 24% नए लोग आए और 26-27 अप्रैल से जुलाई मेरा एक्सपोर्ट भी लगभग 25% बढ़ा है और हमारा टारगेट है कि हैंडीक्राफ्ट का $1 बिलियन तक ले जाने का।
0: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री जैन ने आकाशवाणी के श्रोताओं की संख्या बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर राजस्व बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आकाशवाणी से जुड़ सकें।
3: आज रिव्यू करने की कोशिश की कि हमारी दशा और दिशा, हम केंद्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं, केंद्र कहाँ पर है, किस तरह के प्रोग्राम्स हों, कैसे लोगों से और जुड़ाव करने की कोशिश की जाए और किस तरह से इंजीनियरिंग सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि FDI नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का

0: रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
1: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
0: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
2: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है। और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है।
0: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में आज सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। गोरखपुर के बुढ़िया माई मंदिर, तरकुलहा देवी और झारखंडी मंदिर, बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ तथा मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में देवी भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां विशालाक्षी को श्रृंगार सामग्री अर्पित की गई। सीतापुर के नैमिषारण्य में स्थित शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में कई जिलों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: नैमिषारण्य में शारदीय नवरात्रि के मौके पर मां भगवती के दर्शन पूजन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंडला आरती के साथ ही श्रद्धालुओं ने चुनरी, नारियल, फल फूल और मिष्ठान अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि महोत्सव को लेकर मंदिर को आकर्षक झालरों से सजाया गया है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा है। संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के खास इंतजाम किए हैं। दीपक श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, सीतापुर।
3: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 1-7-5 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को समाप्त होंगी। और अंत में एक बार फिर मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा। परिवारों को भी मिलेगा 5,00,000 रुपये सालाना कैशलेस इलाज। दीपावली के बाद लागू होगा UPI मर्चेंट डिस्काउंट। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का अहम फैसला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने मंत्री पद और राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए लिया फैसला। और शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की हो रही है आराधना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:31 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम है चाहत। शब्द रचना जमीर काजमी के और संगीत है श्याम सुरेंद्र का।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

0: बंटी और बबली इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय को। और साथ ही साथ इस गीत को गाया था जावेद अली और शंकर महादेवन अली शचिनोय ने। गुलजार के बोल थे और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं सुरेश भोसले और आशा क्षमा कीजिएगा अलका याग्निक की आवाजों में। शब्द रचना समीर के हैं और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।
1: मेरी

बागबान। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले और अलका याग्निक को। समीर के बोल थे और संगीत था आदेश श्रीवास्तव का। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये उबरा केंद्र है एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज आइए करते हैं मिताली सिंह की आवाज के साथ और शब्द रचना नसीम अजमेरी के हैं।

0: नसीम अजमेरी के इस कलाम को आप सुन रहे थे मिताली सिंह की आवाज में। रात्रि के 8:07 और 30 सेकंड हो रहे हैं। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY। Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI।

इब्राहिम अश्क के लिखे इस कलाम को अभी आप सुन रहे थे चंदन दास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनाते हैं अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। एक दूजे के लिए इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अनूप जलोटा को।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब आइए फिल्म चादरी में सुनते हैं बाबला और लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी के बोल है और संगीत है शिव हरि का।

आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था शिव हरी का। चांदनी इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और बाबला को, और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं साधना सरगम को, शब्द रचना गुलजार के हैं।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: रात्रि के 8:35 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फाल्गुनी पाठक को।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत को, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लू

0: कुटुंबा के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर ना दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृह मंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एन मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ. मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू

0: कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
1: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
2: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
1: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।

0: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
1: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
2: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
3: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
4: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
2: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में

0: प्रयास नहीं किया।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक की लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया है कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।

0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 पर बंद हुआ।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम।
3: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney agree to deepen strategic partnership in trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Union Minister L. Murugan resigns from Council of Ministers and
4: New Delhi reaffirms Ladakh is an integral part of the country, says no denial by China can change this fact. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. Domestic stock markets rally over 1.5%. Sensex closes at 73,034. And Anand Kumar Velkumar wins bronze in 500-meter sprint at the World Skate Games 2026 in Paraguay. Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation today. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Terming the chemistry between Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Carney as excellent, Canadian High Commissioner to India Christopher Kuta said that the two nations never had as good a relationship as it is right now. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand will be on a two-day visit to India from today. Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in his governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said country's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavours to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well.
5: Today, technology is power, data is power, knowledge is power, innovation is power. लेकिन साथियों, असली सवाल यह नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि सवाल यह है कि इसका यूज कैसे हो रहा है। यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू

0: शब्द रचना मीर तकी मीर के थे और संगीत दिया था खय्याम ने। बाजार इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

चरस इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। शब्द रचना आनंद बख्शी के थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण के थे और संगीत दिया था जय किशन ने। धरती इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपके लिए। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में। फिल्म का नाम है जुदाई। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

गुंडाराज इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलीशा चिनॉय को। जफर गोरखपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था अनु मलिक ने। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम है हद कर दिया आपने। शब्द रचना आनंद बख्शी के है और संगीत है आनंद राज आनंद का।

आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 10 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण।

0: धड़कन देश की। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण।
2: कार्यक्रम खेल दर्पण में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तराखंड में फुटबॉल परिदृश्य की। उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए जो आधारभूत संरचना है उसमें किए गए एक बड़े प्रयास यानी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, और इस कॉलेज के क्या प्रयास है जो उत्तराखंड में खेलों को और मजबूत करेंगे। इसके लिए आकाशवाणी आपको ले चलेगा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, जो कि देहरादून के रायपुर में स्थित है। और ये संस्थान अपने आप में सरकार का अनूठा प्रयास है कि कैसे हम अपने राज्य के भावी खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करें। ये संस्थान उन प्रतिभावान भावी खिलाड़ियों के लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है जो आर्थिक कारणों से खेल को एक करियर के रूप में नहीं चुन पाते हैं। संस्थान में पहुंचते ही सबसे पहले हमने बात की स्पोर्ट्स कॉलेज में ही पढ़ रहे एक उभरते हुए खिलाड़ी अनु कुमार से, जिन्होंने एथलेटिक्स में बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अनु ने 600 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है, वहीं जूनियर नेशनल रिकॉर्ड भी अनु के नाम है। अनु ने स्कूल गेम्स फेडरेशन यानी SGFI गेम्स में सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है। तो इस होनहार खिलाड़ी से हमने बात की और जानना चाहा कि ये संस्थान कैसा बदलाव ला सकता है एक खिलाड़ी की जिंदगी में। अनु जी, आपको कहां से इस खेल के लिए प्रेरणा मिली?
3: मुझे लक्सर रोड फिरपुर धनपुरा, वहां से मैं इंटर कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। फिर भारत भूषण सर ने मुझे बोला कि स्पोर्ट्स कॉलेज चले जा, फिर मुझे यहाँ के लोकेशन ने ट्रेनिंग कराई। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग बहुत हार्ड की, तो धीरे धीरे कई परिस्थिति भी आई और अनिश्चिति भी, जो कि कुछ मेहनत की और कुछ कारण ऐसे है कि जिसमें कि मैं बीमार भी हुआ, फिर भी मैंने हौसला नहीं छोड़ा और अपना मुकाम हासिल किया।
2: अच्छा, एथलेटिक्स ही क्यों और कोई खेल क्यों नहीं?
3: एथलेटिक्स मैं उस टाइम पढ़ाई करता था जिस टाइम मुझे पता चला। फिर धीरे धीरे मेरे जो जीजा जी हैं अर्जुन कुमार बन्नाला, उन्होंने मुझे बोला कि गेम कर, कुछ कर लेगा। फिर मैं धीरे धीरे, मुझे ये नहीं पता कि एथलेटिक क्या होता है, उन्होंने बताया कि रनिंग करनी है। मैं रनिंग तो करता था, मुझे ये नहीं पता था कि रनिंग में क्या होता है, इवेंट कितने होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता उस टाइम। फिर धीरे धीरे जब स्पोर्ट्स कॉलेज आया सब पता चल गया।
2: अच्छा, घर पर भी आप पहले प्रैक्टिस करते रहे होंगे और यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक मंच मिल गया है जहाँ पर आप तराश सकते हैं अपने आप को। कितना फर्क है घर से और यहाँ पर?
3: घर तो मतलब कि 100 काम होते हैं और यहाँ सिर्फ सुबह ट्रेनिंग, शाम को ट्रेनिंग और स्कूल, और टाइम पे खाना खाना होता है और सब कुछ बहुत अच्छे से है। और स्पोर्ट्स कॉलेज के सभी परिवार ने मुझे बहुत हौसला बढ़ाया है, जैसे कि मैच मैनेजर सर मुझे खाने के लिए जुटा रहते थे कि खाना खा, और सर सभी कोचेज और स्टाफ बहुत मेरे साथ काम करते थे कि कुछ कर लेगा, और मैडम में बहुत कुछ मतलब बोलती थी कि कहाँ कुछ कर लेगा।
2: अच्छा, ये बताइए कि कितना जरूरी है आपके लिए जो खाना है, पोषण युक्त खाना कितना जरूरी है खिलाड़ी के लिए?
3: खिलाड़ी के लिए जैसे कि बहुत जरूरी होता है, सबसे प्रोटीन होता है दाल में, दाल सब्जी हरी सब्जी, सबसे ज्यादा हमें ये चीज खानी चाहिए कि

0: में कि वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल, इंजरी के कारण ब्रॉन्ज मेडल। फिर उसके बाद मैंने SGFI में 400 भी इवेंट करता हूँ मैं, लेकिन 800-1500 किया। वहाँ मेरा नेशनल रिकॉर्ड, मीट रिकॉर्ड, और 1500 मीटर में मीट रिकॉर्ड, 800 मीटर में गोल्ड रिकॉर्ड। 800 मीटर में रिकॉर्ड से मैं 20 माइक्रोसेकंड से रहा था।
1: इसी तरीके से आप रिकॉर्ड तोड़ते रहें और हमारी ये शुभकामनाएं कि आगे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। अच्छा ये बताइए, सबसे ज़रूरी बात जो है पढ़ाई और खेल के बीच में कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं?
0: पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इंटरनेशनल खेल के आया हूँ, वहाँ इंग्लिश बहुत बहुत ही मतलब फास्ट बोलते हैं, और हमारे हम स्पोर्ट्स करते हैं हमारे मतलब हम इंग्लिश समझ भी नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स करने के साथ साथ।
1: तो जितने भी श्रोता हमारे जो भावी खिलाड़ी हैं, अगर अनु जी को सुन रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी उन्होंने बात बताई कि स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई का एक बैलेंस होना चाहिए, है ना?
0: यस हाँ।
1: और कोई बात आप हमारे साथी खिलाड़ियों को बताना चाहेंगे?
0: और बस यही कहूंगा कि मेहनत करो, मेरे से भी ऊपर निकलो, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करो।
1: पोषण युक्त भोजन का एक खिलाड़ी के जीवन में क्या महत्व होता है, इस बारे में हमने बात की महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के मेस मैनेजर प्रदीप कुमार जी से। इस समय हम पहुंचे हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के मेस में, जहां पर हमारी मुलाकात हो रही है इस समय प्रदीप कुमार जी से, जो कि मेस मैनेजर हैं। तो प्रदीप कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है अच्छा भोजन एक अच्छे खिलाड़ी के लिए?
2: हमारे यहाँ जो भोजन दिया जाता है वो कम से कम 5000 कैलोरी पर डे के हिसाब से मिनिमम बच्चे के लिए, और हर बच्चे की रिक्वायरमेंट जो है गेम वाइज अलग अलग होती है वैसे तो, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ एक फिक्स मेन्यू होता है जिसमें कि जैसे हम बच्चे को सुबह बैटरी देते हैं, उसके संग 4 ग्लूकोज बिस्किट देते हैं, और ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ 8 बजे शुरू होता है जिसमें बच्चे एक्टिविटी के बाद ग्राउंड से आते हैं वापस, उसके बाद उनको जो है 250 ml दूध होता है, 50 ग्राम स्प्राउट होते हैं, और क्या नाम, 2 अंडे उबले हुए दिए जाते हैं, 2 फ्रूट्स दिए जाते हैं, दलिया दिया जाता है 200 ग्राम, 4 ब्रेड या 6 स्लाइस दिए जाते हैं, 20 ग्राम बटर है, 10 ग्राम जैम है। ये हमारा ब्रेकफास्ट का मेन्यू है। और अपना बच्चा, जैसे जो छोटा बच्चा, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग ले लेते हैं, जैसे वेट कैटेगरी के अनुसार, मतलब कि उसके वर्क लोड के अनुसार, वैसे सबके लिए फिक्स मेन्यू है ये। डे टाइम में हम एक बैलेंस डाइट देते हैं हर एक बच्चे को, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी सलाद रायता स्वीट डिश आदि आदि जो है फल वगैरह सब कुछ दिया जाता है। फिर इवनिंग में जब बच्चे शाम को एक्टिविटी करके आते हैं, उस टाइम बच्चों को 250 ml दूध बॉर्नविटा के संग या बूस्ट के संग डाल के दिया जाता है, और उसमें 50 ग्राम हमारे पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और उसके संग हम लोग जो है 4 ग्लूकोज बिस्किट भी देते हैं। इवनिंग में जो है बच्चों का जो है वेज बच्चों का अलग है, नॉन वेज बच्चों के लिए अलग है। कुछ चीज़ें जो है सबकी कॉमन है, जैसे सब्जी चावल रोटी दाल सलाद और स्वीट डिश, ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन जो है जो नॉन वेज बच्चे हैं उनको कम से कम 150 ग्राम एक बच्चे को चिकन मीट वगैरह जो कुछ भी दिया जाता है डे वाइज, वो उसको अलग अलग दिया जाता है। और शाकाहारी बच्चे को अलग अलग, जैसे कढ़ाई पनीर छोला पनीर इस तरीके की चीज दी जाती है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं क्या नाम मैक्सिमम उनको जो है, एक बच्चे का फिक्स जैसे डाइट में जो है 100 ग्राम पनीर है, कि उसको 100 ग्राम पनीर ही दिया जाए। तो ये हमारा डे का पूरे दिन का एक मतलब पूरे दिन का कैलोरी डाइट है, डे बाय डे बदलता रहता है, लेकिन यह है कि क्या नाम जनरली जो है ये एक फिक्स मेन्यू है खिलाड़ी छात्र।
1: अच्छा श्रोताओं को ये बताए, खेलों के हिसाब से क्या आप डाइट चार्ट अलग अलग फॉलो करते हैं?
2: नहीं, खेलों के हिसाब से तो डाइट चार्ट अलग अलग है ही, मतलब सबको जो ये बैलेंस डाइट बनाई गई है, ये जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के अकॉर्डिंग जो है बनाई गई है, जिसमें कि बच्चों को जनरली क्या होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबके लिए जैसे निर्धारित है, मतलब कि उसमें एक्सेस ही हमारे यहाँ बच्चा ले लेता होगा, क्योंकि उसमें दाल भी है स्प्राउट्स भी हैं और क्या नाम एग्स भी हैं, सब कुछ है, मतलब कि हमारे जो भी दी जाती है हर खिलाड़ी को, हर गेम वाले बच्चे को एक बैलेंस डाइट अलग से दी जाती है।
1: बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे एक अच्छे पोषण युक्त आहार के बारे में?
2: पोषण युक्त आहार खिलाड़ी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं पोषक तत्व के आधार पर होती हैं, पोषक आहार के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारा कहना तो यह है कि आज के ज़माने में जितना मतलब कि हमारी सरकारें वगैरह खेल के प्रति कर रही हैं, खेल में जैसे बच्चा अपना इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाता है, MBBS वगैरह डॉक्टरी करने के लिए कैरियर बनाता है, उसी प्रकार से वो खेल में भी अपना जो है कैरियर बना सकता है, क्योंकि खेल में जो है एक तो आदमी को हाईलाइट बहुत मिलता है, और एक खेल में आज के समय में पैसा भी बहुत ज्यादा है, आदमी जो है जनरली उसमें

0: जो है इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना कि वो खेल के क्षेत्र में एक ही समय में एक ही एक मेडल लाने पर कमा सकता है। अतः हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जितने भी कोचेस वगैरह होते हैं उनको हमेशा ये प्रोत्साहित करते रहते हैं ग्राउंड में भी कि आपको एक अच्छा खिलाड़ी यहां से बनकर निकलना है, जिससे कि स्टेट का नाम तो रोशन हो ही हो और देश का भी नाम रोशन हो। जिससे कि अतः हम लोग कोशिश ये करा जाता है कि जो चार्ट को हम यहाँ फॉलो करते हैं वही जिंदगी भर वो फॉलो करें। और आजकल के जमाने में इंटरनेट वगैरह का जमाना है तो वो उस पर भी सर्च करके देखते रहते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर की क्लासेस चलती हैं जिसमें कि हम डाइट के बारे में बताते रहते हैं अलग अलग गेमों के बारे में कि छात्रों तुम्हारा खेल ये है कि तुम्हें इस खेल के अनुसार ये डाइट चार्ट जो है फॉलो करना चाहिए। इस तरीके से हम बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं।
1: एक खेल संस्थान के रूप में संस्थान की उपलब्धियां, इसकी सार्थकता के बारे में संस्थान के प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा से आकाशवाणी की ओर से बात करते हुए अनिल भारती।
0: एक ऐसा अवसर है जब देश में खेलों के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं हमारे जो खिलाड़ी हैं। क्रिकेट की बात छोड़ दें, बैडमिंटन की बात करें, टेनिस की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ी जो परचम लहरा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समय आप?
2: भारत में अभी खेलों का जो माहौल बना है वो काफ़ी अच्छा है और हम लोग जो आपने चर्चा करी एथलेटिक्स, टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी, फुटबॉल में मैं विशेष कहना चाहूँगा कि फुटबॉल में इस टाइम बहुत एकदम से राइज किया है इंडिया में और बहुत पॉपुलर हो रहा है फुटबॉल। ग्रास रूट पे काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इन सब एंगल से देखा जाए तो खेलों में काफ़ी तरक्की की जा रही है।
0: थोड़ा बताएं कि किस तरह की सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं?
2: स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेग्राउंड्स हैं, जैसे कि हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड है, सिंथेटिक ट्रैक एथलेटिक्स के लिए है, इंडोर फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। हमारे जो बच्चों को भोजन दिया जाता है वो बिल्कुल कैलोरी बेस्ड है और बच्चों की खुराक जो है वो डॉक्टर और अन्य जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको उनसे डिस्कस करके ही तैयार की जाती है और जो भी रिक्वायरमेंट हमें खिलाड़ियों को देनी है वो पूर्ण है। इक्विपमेंट्स भी हैं हमारे पास लेटेस्ट और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जो यहाँ पर एक सेंटर डेवलप हुआ है ये और बहुत सारे खेल होने हैं यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ आने वाले एक दो साल में और भी आधुनिक स्तर की सुविधाएं जुट जाएंगी।
0: जी, आपका जो स्पोर्ट्स कॉलेज है यहाँ पर बहुत छोटी उम्र से आप बच्चों को लेते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि अभिभावकों में खेलों के प्रति प्रेम जागा है, उनको भी लगा है कि उनके बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा बताएं कि किस स्तर पर यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को लेते हैं, प्रवेश परीक्षा क्या है और किस तरह का शुल्क आप लेते हैं, ताकि हमारे जो अभिभावक इस समय कार्यक्रमों को सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाने के लिए प्रेरित हों। क्योंकि जो पारंपरिक व्यवसाय थे, पारंपरिक रोजगार थे, उससे हटकर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा कुछ नया करे और खेल इसके लिए एक बहुत अच्छा क्षेत्र है।
2: मैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में, प्रवेश के बारे में बताना चाहूँगा कि मार्च में 15 तारीख के बाद हम प्रॉस्पेक्टस अपने निकालते हैं और उसके बाद अप्रैल में हम जिला स्तर पर एक ट्रायल का आयोजन करते हैं। जगह जगह 20-25 सेंटर हमारे उत्तराखंड में हैं, हमारी टीम जाती है वहाँ पर और सभी बच्चों का वहाँ एक टेस्ट लेती है। टेस्ट में जो पास बच्चे होते हैं वो फिर मंथ ऑफ मई में देहरादून में बुलाए जाते हैं और वहाँ पर उनका फाइनल टेस्ट होता है। जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पर हम शारीरिक परीक्षा, खेल परीक्षा, लिखित परीक्षा, मेडिकल और इंटरव्यू के माध्यम से हम इनका चयन करते हैं।
0: जी
2: हाँ, हमारे पास 7 खेल हैं फिलहाल, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, बॉक्सिंग, ये 7 खेल हैं और 2 खेल हम टेबल टेनिस और जूडो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस साल हमने प्रयास किया लेकिन पर्याप्त रिस्पांस नहीं आया, नेक्स्ट ईयर हम जरूर इसको शामिल करेंगे।
0: हम ये जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड के जो बच्चे आपके पास आते हैं, मतलब उनकी जो शारीरिक बनावट है किस तरह की है, किन खेलों के प्रति वो मतलब उनका नेचुरल इंटरेस्ट रहता है, जैसे फुटबॉल है, उस तरह का स्टैमिना जो नेचुरल होना चाहिए वो क्या नज़र आता है आपको?
2: हाँ, जहाँ तक हम जिन गेमों में हम रन कर रहे हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज में, जैसे कि फुटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं हमारे बच्चे और अच्छा टैलेंट है उत्तराखंड में। थोड़ा सा हाइट की वजह से हमारे पास वॉलीबॉल वगैरह जूनियर लेवल पे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमेशा

0: पहले तीन पदकों में रहते हैं हम लोग, लेकिन सीनियर स्टेज पे हम थोड़ा सा जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें थोड़े लंबे लोग चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं हमें। बाकी खेलों में जहाँ तक क्रिकेट की बात है, वहाँ भी हम अच्छा प्रदर्शन करने लग गए हैं। वर्ष 14-15 में राष्ट्रीय स्कूल खेलों में हमने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 17 क्रिकेट में, 15-16 में है रजत पदक जीता है, और 16-17 में भी रजत पदक जीता है उत्तराखंड की टीम ने क्रिकेट में। फुटबॉल में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गए हैं हमारे पास, और काफ़ी जो फेमस क्लब हैं उनमें खेल रहे हैं हमारे बच्चे। बॉक्सिंग में भी हमारे काफ़ी इंटरनेशनल बच्चे हैं, वहाँ पर भी अच्छा टैलेंट है उत्तराखंड का। और एथलेटिक्स का तो पूर्व में मैंने आपको बता दिया, मध्यम लंबी दौड़ों में और स्प्रिंट्स और अन्य इक्का दुक्का और भी हमारे मेडल्स थ्रोज वगैरह में आते रहते हैं। तो हॉकी में क्योंकि अभी लास्ट ईयर हमारा एस्ट्रोटर्फ लगा है, अभी एक बच्चा इंडिया कैंप में गया है, हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही उसके रिजल्ट आने लगेंगे।
1: और अब बात फुटबॉल की। उत्तराखंड में जो लोकप्रिय खेल है उनमें फुटबॉल का नाम सबसे ऊपर है। प्रदेश ने अनेक सुप्रसिद्ध फुटबॉलर भारत को दिए हैं। वीरेंद्र सिंह रावत भी प्रदेश के एक जाने माने फुटबॉलर, रेफरी और कोच हैं। फिलहाल वे देहरादून में अपनी एक फुटबॉल अकादमी चला रहे हैं। हमने आकाशवाणी के लिए उनसे बातचीत रिकॉर्ड की।
2: मेरा जन्म पौड़ी गढ़वाल के कुलासू गांव में हुआ था, और मेरे दादाजी ब्रिटिश गढ़वाल में बेहतरीन गोलकीपर रहे, क्योंकि मैं 5 साल का था तब वो इस दुनिया से विदा हो चुके थे, और बड़े प्रख्यात थे। उनका नाम था स्वर्गीय शेर सिंह रावत जी। उसके बाद मेरे पिताजी आए श्री स्वर्गीय चंद्र सिंह रावत जी, वो फर्स्ट गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए। उन्होंने भी अपने मिडफील्डर की भूमिका में बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई गढ़वाल राइफल में खेलते हुए। सन 1970 में हम लोगों ने वहां से प्लान किया, उसके बाद देहरादून आए थे। उसके बाद बड़ा भाई को भी शौक रहा खेलने का, तो कहीं ना कहीं गुण आए, वो भी 86 में इंडिया खेला। मैं छोटा था तो मैं उसके बैग लेकर जाता था खेलने के लिए, तो मैं उसको देख के प्रेरित होता रहा। तो मेरा बड़ा भाई कमल सिंह रावत जी, उनको देखते देखते फिर मैं 1986 में मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, उसके बाद मैंने 10th भी किया उसमें, फिर मैं नेशनल खेला, उसके बाद 88 में फिर मैं अंडर 19 नेशनल खेला। तो इस तरीके से वहां से एक दौर शुरू हुआ। जब मैं 8th क्लास में था तो मुझे फुटबॉल का एक ब्रेक मिला। देहरादून लीग होती है, बहुत ऐतिहासिक लीग है, उसको हम आज भी खेल रहे हैं। जब मैं 8th क्लास में था, 4 की बात है, देरैंक्स में मैंने शुरुआत की थी, तो सभी खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हो चुके थे और लीग का सेमीफाइनल मैच चल रहा था। तो उसी दौरान मुझे मौका मिला 10-15 मिनट का, और उसी मौके में आश्चर्यजनक गोल मारा और उसमें मैं प्रख्यात हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, खेलता रहा, यूपी में खेला, फिर वहां से 98 में मैं यूपी से रेफरी बना, उसके बाद 98 में मैं कोच बना, उसके बाद धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य अलग बना, तो कई उम्मीदें जगी कि उत्तराखंड बनेगा, उत्तराखंड बनने के बाद हमारा अच्छा विकास होगा, उसके लिए हम संघर्ष करते रहे। उसके बाद मैं नेशनल कोच बना, धीरे धीरे क्लास 1 रेफरी बना, तो इस तरीके से मेरे जीवन का शुरुआत हुई।
1: जब आप खेलते थे और आज के समय में जो फुटबॉल है उसमें किस तरह का आप अंतर देखते हैं?
2: बहुत सर, बहुत ज्यादा अंतर है। एक टाइम पे तो व्हील पावर होती थी, स्टेमिना होता था, और एक चमड़े की बॉल होती थी, अटती थी, बहुत हैवी होती थी। उसमें जूते भी बहुत बड़े होते थे। देहरादून में अगर मैं बात बताऊं, देहरादून के जो भगवान दास जी के जूते बनाते थे, फुटबॉल के शूज बनाते थे, वो बड़े फेमस थे, कलकत्ता तक उनके शूज जाते थे। वो जूता इतना भारी होता था, और जूते, सिंक पैड, और आपको अगर देखे तो बॉल भी इतनी भारी, तो उसमें शरीर में दम कम चाहिए होता था उस जमाने में। अब जमाना बदल चुका है, अब जमाना टेक्निक का, टेक्टिकल का बदल चुका है, टेक्निक्स का बदल चुका है, स्किल का बदल चुका है, क्योंकि अब बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर वो टेक्निक और गेम सेंस, मतलब आपको माइंड विद इन सेकंड में आपको डिसीजन चेंज करना है। पहले तो लॉन्ग पासेस खेलो, पावरफुल से खेलो, ताकत से खेलो। अब ताकत का गेम नहीं, अब सेंस का गेम है। ताकत तो है ही, ताकत के साथ सेंस का गेम भी है, स्किल का गेम भी है। तो टेक्निक बदल चुके हैं, ग्राउंड अच्छे हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। शायद उम्मीद भी है कि आने वाले 8 साल में इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करेगा।
1: अगर आप विश्व फुटबॉल को देखें और फिर इंडिया के फुटबॉल को देखें, इतना डिफरेंस विश्व के स्तर पर और इंडिया के स्तर पर क्यों है फुटबॉल?
2: देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा देश गुलाम रहा, इंग्लैंड ने हमारे इंडियन को एक विरासत में क्रिकेट दे दिया गया, क्रिकेट की वजह से फुटबॉल दब गया। आज इंडिया 106 रैंकिंग में फुटबॉल में, और गर्ल्स में 56 में। सबसे बड़ी चीज़ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ग्रास रूट पे जब तक हम कोचिंग सेंटर नहीं खोलेंगे, अपनी एकेडमी नहीं खोलेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, सबसे बड़ी चीज़ ग्राउंड, कोच, क्वालिफाइड कोच, क्वालिफाइड रेफरीज, क्वालिफाइड प्लेयर, मतलब ये कि उनके लिए टेक्निक और टेक्टिकल चीज़ें, स्किल और क्वालिफिकेशन, उनको एडाइट, अगर उनको खिलाड़ी को डाइट अच्छी मिलेगी, एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा और उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो क्यों नहीं वो इंडिया ग्रो करेगी। और इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर आप उठा के देखें तो इंडियन सुपर लीग हो रही है इस समय और बहुत अच्छा पॉपुलर हो रही है, उसमें इंडियन प्लेयर के साथ फॉरेन प्लेयर भी खेल रहे हैं, तो उससे एक खिलाड़ी को पैसा मिल रहा है क्योंकि खिलाड़ी प्रोफेशनल हो चुके हैं। हमारे उत्तराखंड के कई पांच खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं जिसमें अनुरोध थापा है, रोहित दानू है, साहिल पवार है, आपका दीपेंद्र नेगी है, अभी हाल में ही अंजना थापा है, महिला है, अनिता रावत है, तो ऐसे कई लड़के अभी खेल रहे हैं इंडियन टीम में। तो ये बड़े खुशी की बात है कि

0: इंडियन फुटबॉल ग्रो कर रहा है, पर लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग बेसिक पे शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं मैनचेस्टर गया था 2014 में और मैंने वहां पूरा एक हफ्ता देखा। मैं फीफा एज ए डेलीगेट बन के गया उत्तराखंड का, और मैंने वहां जाके देखा तो वहां फॉरन में क्या 5 साल के बच्चों को अडोप्ट कर लेते हैं। दूसरी बात है, वहां हर ग्राउंड में, हर घर में, हर गांव में, हर जिले में, मतलब आप देखिए फुटबॉल फुटबॉल का जुनून है। सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, जो स्पॉन्सर वाली कंपनी है वो इनिशिएटिव लेती है कि उनको कहीं ना कहीं भाई रहने की, खाने की व्यवस्था, उनको एजुकेशन की व्यवस्था, अच्छी एटमोसफेयर की व्यवस्था। आज कमी यह है, उत्तराखंड हो या पूरे इंडिया हो, हमें बेसिक में फोकस देना पड़ेगा। हमें 5 साल के जो बच्चे हैं हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा और उनको ग्रो करना पड़ेगा। जब वो 10 साल या 15 साल के होते हैं तब जाके वो रिजल्ट देंगे इंडियन टीम को। तो उसके लिए खाना, रहना, एजुकेशन ये जरूरी है, क्योंकि आज इंडिया में एकेडमी तो चल रही है, कई क्लब भी चल रहे हैं, पर लेकिन वो बेसिक पे फोकस नहीं है जो इंडिया आज ग्रो करेगा। डाइट और बिल्ड सब कुछ है, लेकिन उनको एक एटमोस्फेयर, एक प्लेटफॉर्म और अधिक से अधिक टूर्नामेंट, अधिक से अधिक लेवल के नेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट यहाँ पे हो और बच्चों को तराशा जाए, निखारा जाए।
1: क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ कोचेस की और अच्छे कोचेस की भी कमी है?
0: देखिए, एक तो एटमोस्फेयर की कमी है, अच्छे कोचेस की कमी है, दूसरी बात है ट्रेनिंग। मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो 70% फुटबॉल उत्तराखंड में होता है और राज्य खेल हमारा फुटबॉल है। आज कोचेस के प्रशिक्षण होने चाहिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। इंडियन कोचेस जो है टाइम के पंक्चुअल नहीं है। सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आप फॉरनर कोच को हम देखें, टाइम के पंक्चुअल है, आधे एक घंटे पहले ग्राउंड में खुद पहले होंगे, प्लेयर बाद में आएगा, पर वो एक घंटे पहले आके अपना पूरा स्ट्रक्चर करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे, पूरे थ्योरिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, फिजिकली करेंगे, देखेंगे, इंडिविजुअल इंट्रैक्शन करेंगे। जब तक इंट्रैक्शन और अटेंशन नहीं करेंगे हम इंडिविजुअल एक प्लेयर को, तब तक हम उस प्लेयर को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ज्यादा इंडिया, आज हमारे इंडिया में इतने स्टेट हैं और इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, पर वो हम लोग वो खिलाड़ी नहीं दे पा रहे हैं कि जो इंडिया के फर्स्ट 11 में आ जाए और इंडिया को एक अच्छा मुकाम दे पाए, तो उसके लिए हमें सर्च करना पड़ता है।
1: लीग की बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है, और तो क्या ये आप मानते हैं कि इस तरह की लीग होनी चाहिए और लीग से ही खेलों का विकास हो सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, लीग से क्या होता है, एक तो लीग में खिलाड़ी को मैक्सिमम मैचेस खेलने को मिलते हैं, दूसरी बात है कि जो प्रोफेशनल लीग होती है उसमें आपके साथ फॉरेन प्लेयर भी खेलेंगे, आपके इंडियन प्लेयर भी खेलेंगे, आपके लोकल भी खेलेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड सुपर लीग हमने 2016 में कराई थी, तो उसमें हमने उत्तराखंड के अंडर 21 वाले लिए थे, फिर 5 फॉरेनर प्लेयर लिए थे, 10-15 हमने ऑल ओवर इंडिया से नेशनल प्लेयर लिए थे। तो उसमें वो मैच खेलेंगे आपस में, अब तो कई स्टेडियम में होने भी लगी है, और जितनी लीग होगी, मैक्सिमम लीग होगी, खिलाड़ी को पैसा भी मिलेगा, उनको नेम भी मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट को ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स कोटा, देखिए आज हरियाणा देख लीजिए, अगर आप कलकत्ता देख लीजिए, आप गोवा देख लीजिए, स्पोर्ट्स कोटे होने से क्या होता है कि फ्यूचर, जब बच्चा 21-22 साल का होता है, वो चाहता है कि मेरा भी भविष्य बने, उसे जॉब चाहिए, तो 10 से 15 साल उसकी लाइफ होती है खेलने की, तो वो चाहता है कि मेरा भविष्य भी बने। अच्छी लीग होगी तो क्यों नहीं वो आगे खेलेगा, क्यों नहीं आगे बढ़ेगा, तो ये डेफिनेटली होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि साल में 2 बार तो लीग होनी चाहिए।
1: क्या आप किसी लीग को और किसी क्लब को आप फॉलो करते हैं?
0: मुझे जो सबसे बेस्ट टीम लगती है मोहन बगान, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेम खेलती है, और आज से नहीं, वो तो उसका इतिहास ही रहा है, 1800 कुछ की वो क्लब है और उसमें खिलाड़ी, कई खिलाड़ी दिए, और खिलाड़ी की बात रहे तो जो हम इंस्पायर हुए थे, आयन विजयन थे इंडिया में और भाईचिंग भूटिया थे, इनसे हम थोड़ा सा इंस्पायर हुए हैं। अभी हाल में अगर आप देखें तो सुनील छेत्री हैं उत्तराखंड से, अनुरुद थापा हमारे इस लेवल पर पहुंचा है, तो कई लड़के ऐसा खेल रहे हैं।
1: कौन से बड़े कारण हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड में और हमारे देश में विकास नहीं हो पा रहा, आप कमी मानते हैं, और उनके दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
0: सबसे पहली चीज है, उत्तराखंड हो या पूरे इंडिया में अगर फुटबॉल बढ़ानी है तो ग्रास रूट पे फोकस देना पड़ेगा। उनके लिए ग्राउंड हर ब्लॉक स्तर में, गांव में, जिले में एक ग्राउंड उनको प्रोवाइड किया जाए, वहां पे उनको रहने की, खाने की व्यवस्था दी जाए, उनको अच्छा कोचिंग दी जाए, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, जिससे कि वो आगे ग्रो करें, उनका फोकस ही फुटबॉल पे हो। दूसरा यह है कि को अच्छे से अच्छे मैक्सिमम मैचेस खिलाएं, उनको टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराएं, जिससे कि उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग अच्छी होगी, मैचेस अच्छे मिलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 ये है कि उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। देखिए कहीं अगर वो जाते हैं तो उनसे मीडिया रूबरू हो, उनका नाम विख्यात हो, उनको फेमस, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि मेरी पॉपुलरिटी हो, ये चीजें होना बहुत जरूरी है।
1: अंत में जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं और फुटबॉल को आगे ले जाना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं?
0: देखिए हार के बाद ही जीत है, और मैं लास्ट में, अंत में यही कहना चाहूंगा, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: बहुत खूब वीरेंद्र सिंह जी, आज बॉल को लेकर, चाहे वो उत्तराखंड की फुटबॉल हो, चाहे वो हमारे देश की फुटबॉल हो, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, खेल पत्रिका के आज के इस अंक को संपन्न करने का अब वक्त हो चुका है, और इस वादे के साथ कि अगले

0: अंत में खेल जगत की ताजा हलचल के साथ खेल के क्षेत्र में राज्य में नए नए अनूठे प्रयासों को हम आप तक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मैं संकल्प मिश्रा आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, ये आकाशवाणी देहरादून की प्रस्तुति थी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी बात। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म डॉन से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना अनजान के हैं और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

दूध का कर्ज इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था अनु मलिक का। और इसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात अब समाप्त होता है।

एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को एसआईआर से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश,